0: लिए बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर फॉर स्पिरिचुअल सूफी एंड कव्वाली नाइट। Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at Law and Personal Injury Lawyer. At Alam Law Office, no fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9582800009 9058280009। यू लॉग इन हो alkaramjewelers.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। अपने

0: आईसीसी इमिग्रेशन के आरडी एमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर ले 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। आईसीसी
1: इमिग्रेशन। लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही।
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
4: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले, अपने लॉयर के साथ आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी या मेरी बेटी बैठी हुई थी या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, ये कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, پلیز مجھے کال کریں, میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
4: بہت شکریہ انجم قریشی صاحبہ, اور منڈے انشاءاللہ آپ سے بھی بات کرتے. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا کہ 90% ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते, तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: तलावट्टी को कॉल मिला।
1: तलावट 6472957861 Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तलावट 6472957861
0: तलावट
1: 6472957861
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में। ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 416-746-5550-746-5550।
6: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रबते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। कर्ज इंसान का जहनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 416-671-0577। जीटी भर में 4 लोकेशन से आपको सर्व करते हैं। मुकम्मल राजदारी और फीस आपके केस के सेटल होने के बाद लेते हैं। केस देखने के बाद मुकम्मल गारंटी के साथ आपको बताएंगे कि कितने फीसद तक कर्ज माफ हो सकता है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
7: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, 2 dipping sauce, 3 cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
8: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
6: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राबता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922।
9: जी हाँ, 905-783-1922 अहमद मलिक साहब के रबते का नंबर है। मोर देन 2 डेकेड का इनका तजर्बा है। खुदा न खास्ता आप कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, इन्हें कॉल कर लीजिए। मैक्सिमम कर्ज आपका माफ़ करवा देंगे, आसान इकसाद बनवा देंगे। बैंकरप्सी करना है आपने या कॉरपोरेशन के कुछ मसले चल रहे हैं तब भी आप इनसे रबता कीजिए। सीबा लोन का मसला है, हर तरह का कर्ज जो है आपका माफ़ करवा देंगे। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन भी हमसे लिया करते हैं, कुछ ओवरऑल सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदेद कहेंगे। मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम।
0: بہت بہت شکریہ ارشد بھائی آپ کو اور ریڈیو پاکستان سن رہے تمام لسنرز کو. جی میری طرف سے السلام علیکم.
9: ملک صاحب آپ نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا جو رپورٹ آئی ہے برامپٹن میں ہائیسٹ ریٹ آف مارٹگیج ڈیلنکوینسیز ہے کہ مطلب کیا اس سے مراد کیا ہے کہ مارٹگیج نہیں دے پا رہے ہیں, کچھ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں, اور یہ کریڈٹ پہ کیا افیکٹ کرتی ہے؟
0: بہت شکریہ ارشد بھائی. بالکل جی, یہ ریسنٹ رپورٹ ابھی آئی ہے ہمارے سامنے کہ برامپٹن از دا ہائیسٹ جو شہر ہے جس میں ہائیسٹ نمبر آف ڈیلیکوینسیز ہیں مارگیج کی. مین ٹو سے کہ مارگیجز جو ہیں وہ ٹائم پہ پے نہیں ہو پا رہی, اور برمپٹن کے جو ریزیڈینٹ

0: अकोमोडेशन चाहिए, और अगर मॉर्गेज डेलिक्वेंसीज में आनी शुरू हो गई हैं, तो अर्शद भाई क्या होता है, देखिए अगर मेरी मॉर्गेज की पेमेंट है $5,500 और मैंने उसको बिहाइंड कर दिया, मेरी पेमेंट NSF चली गई है, तो ये $5,500 पहले तो ऑटोमेटिकली ये 5700 बन जाने हैं, और अगर ये 3 महीने तक मुसलसल ये काम चलता रहता है तो 5500 में तकरीबन इतनी अमाउंट ही मेरे लेंडर ने वकील की फीस की तगा लगा देनी है कि अब आप 3 महीने की मॉर्गेज बिहाइंड हो गई है, मैं आपकी प्रॉपर्टी फोर क्लोजर के लिए लेके जा रहा हूँ, अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो ये वकील की फीस पे करें, यानी कि वो एक छोटी सी अमाउंट आपको काफी ज्यादा पेनलाइज कर सकती है, और मॉर्गेज आपको बाहर सूरत पे करनी है। अब इसका क्रेडिट पे कैसे इफेक्ट पड़ता है कि अर्शद भाई 2013-2014 तक ऐसे होता था कि मॉर्गेजेस जो हैं ये क्रेडिट रिपोर्ट पे शो नहीं करती थी।
1: अच्छा।
0: लेकिन अब ऐसी सूरत हाल है कि चाहे आपकी ए लेंडर से मॉर्गेज है, बी लेंडर से मॉर्गेज है, या सी लेंडर से मॉर्गेज है, आपकी मॉर्गेज आपके क्रेडिट रिपोर्ट पे रिफ्लेक्ट करती है, शो करती है।
1: अच्छा।
0: पहले ऐसा होता था कि अगर मेरी मॉर्गेज की पेमेंट बिहाइंड हो भी गई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बैंक को पता चलता था कि मैंने मॉर्गेज बिहाइंड चल रहा हूँ मैं। अब क्या है कि मेरे क्रेडिट रिपोर्ट पे ये 100% रिफ्लेक्ट करती है, और मॉर्गेज रिन्यूअल के वक्त या मॉर्गेज रीफाइनेंस करते वक्त ये चीज आपको बहुत ज्यादा ट्रबल कर सकती है कि आपकी मॉर्गेज इस टाइम पे नहीं जा रही। तो बहरहाल सिचुएशन जो है अर्शद भाई इस टाइम काफी ज्यादा खराब हो रही है, खराब हो चुकी है, लेकिन बहरहाल हमें अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हमारा ऐसा ही कोई लिस्टनर है, अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड यूज किए हुए हैं, कंज्यूम किए हुए हैं, आपसे पेमेंट नहीं की जा रही, आपको किसी तरह के भी लीगल एक्शन के नोटिसेज आ रहे हैं, तो फिर ये जो लीगल ऑप्शन हम एडवर्टाइज कर रहे हैं, आप इस ऑप्शन के मुतालिक डेफिनेटली सोच सकते हैं। आपका कर्जा 75-80% तक हम प्रपोजल में माफ करवा सकते हैं। अगर सिचुएशन बिल्कुल खराब हो चुकी है, आपने बैंक्रप्सी फाइल करनी है, तो बैंक्रप्सी फाइल करने से लेकर बैंक्रप्सी के डिस्चार्ज होने तक आपको मुकम्मल सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है, और हर इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखने की जी हम गारंटी करते हैं। अर्शद भाई मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9057831922 है, 9057831922। इसके साथ साथ हमारे तमाम वो दोस्त जिन्होंने अभी तक सीपा के पैसे नहीं दिए, वो आप ये बात याद रखें कि जिस दिसंबर में इसकी डेडलाइन आ रही है, और गवर्नमेंट काफी ज्यादा इसको रिकवर करने के लिए डिफरेंट एंगल्स पे इस टाइम काम कर रही है, तो अगर आप सीपा के लोन से ये जो आपके सर पे लटकती हुई तलवार है इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आपके क्रेडिट को अफेक्ट किए बगैर आपकी इससे जान छुड़ाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नंबर अगेन इज एब्सोल्युटली द सेम अर्शद भाई, 9057831922 पर मेरे से कॉन्टेक्ट किया जा सकता।
1: थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत
0: शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
1: नंबर नोट कर लीजिए, अहमद मलिक साहब को अभी कॉल कर लीजिए, अगर कर्ज के बोझ तले अगर आप आ गए हैं, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कर्ज आपको माफ करवा देंगे। 9057831922 PSL 11 के एलिमिनेटर में सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन जो पहली दफ़ा इस लीग में शिरकत कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो 3 दफ़ा टूर्नामेंट जीत चुके हैं 2 रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इतवार को पेशावर जलमी और हैदराबाद के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, 4 ओवर्स में 37 रन दिए, 2 खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन आखिरी जो उनका ओवर था जिसमें 6 रन चाहिए थे उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए हैं, और ये मुकाबला जो है लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ। हैदराबाद किंग्स मैन ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 186 रन स्कोर किए, उनके भी आखिरी 4 ओवर्स में सबसे ज़्यादा स्कोर बना था, और 4 ओवर्स तक मुकाबला तकरीबन तकरीबन बराबर था। आखिरी ओवर्स में तो लग रहा था कि इजीली जीत जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की और उन्होंने 6 की बजाय 4 रन दिए, और यूँ 2 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये मैच हार गई। फाइनल पेशावर और जहाँ हैदराबाद जो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, जो 7वीं और 8वीं टीम जो शामिल हुई थी उनमें से एक टीम जो अब फाइनल में जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है।

0: Chip is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
2: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स
3: ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं IATA अप्रूव्ड एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
4: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो इनसे رابطہ कीजिए तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं इसके अलावा उमरे और हज के स्पेशल पैकेजेस इनके होते हैं साथ-साथ मनी ट्रांसफर के सर्विसेज इमिग्रेशन के सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं और कमल रशीद साहब रोहे रवा हैं CEO हैं तमाम ऑपरेशंस को और खास तौर पे हज के हवाले से और उमरे के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं वहां जाकर चीजों को देखते हैं और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है खुशामदीद कहेंगे कमल भाई अस्सलाम वालेकुम
5: जी वालेकुम सलाम बहुत बहुत शुक्रिया शेपटी साहब और आपकी वसासत से मैं अपने तमाम सामेईन को भी बहुत सलाम पेश
4: थैंक यू वेरी मच पहले मुबारकबाद बहुत जबरदस्त हज सेमिनार था आपका इस पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह आगे बात करेंगे मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए
5: जी मैं शेपटी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे जी हाँ PIA ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिली जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मैं एंड में मुश्किल है तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रेवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है टाइम आपके पास है अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है आप अभी 24 जून को जा रहे हैं आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं तो और ये भी बताता चलो कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है उमरा के वीजे खुल जाते हैं तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदी का उमरे का ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
4: पे कॉल कर लीजिए एक तो 15% सेल है प्लस आप उमरा भी कर सकते हैं उसी दौरान में तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं चाहे दो लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों आप इनसे रब्ता कर लीजिए अच्छा हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी वहाँ मैं मौजूद था लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए
5: जी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला शक विशक नहीं और कुछ खसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया एहराम अपनी तरफ से मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मोहब्बत हमारे लिए एक बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है अल्लाह ताला इसमें बरकत दे अर्शद भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं। उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए तो यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें। और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं। और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर आज आपको दावत दे रहा हूँ, आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर, 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें, आए मिलके बैठें और इसको डिस्कस करें।
4: 905-275-3555 रابطے کے نمبر ہے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کامران صاحب؟
5: جی میں بتاتا چلوں کہ اس میں حج کے لیے 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن مختلف دنوں کے پیکج ہوتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو کہا آئیں بیٹھیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو کہا کہ اس کو کسٹمائز کریں، اور پاکستانی کانسٹنٹ کی تمام آن لائن سروسز جس میں آپ کا ضروری ہے کہ پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہو وہ ضرور رکھیں، نائکو کارڈ کو دیکھیں وہ ایکسپائر نہ ہو، کبھی بھی ایمرجنسی میں سفر کرنا ہو تو مشکل نہ ہو، کیونکہ آج کل پاکستانی ویزا لینے میں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اپنا ریکویسٹ ہے بینگ پاکستانی، اگر آپ کے پاس اپنے پاکستانی ڈاکومنٹس ہیں تو ان کو ایکسپائر مت ہونے دیجیے گا، اس کو ہمیشہ اپنی ضرورت کے لیے ریڈی رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا ٹائم آنے والا ہے، اپنے پیاروں کو پاکستان رقم بھیجنی ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے سے منگوانی ہو، اعتماد کے ساتھ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ریٹ کے لیے نمبر ہے 905-275-3555
4: تھینک یو ویری مچ کمران صاحب، بہت شکریہ، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔
5: تھینک یو سر۔
4: نمبر نوٹ کر لیجیے 905-275-3555 905-275-3555۔ اچھا جناب، ایک ریسٹورینٹ کی آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، رجوے پلازا میں ہی ہے، چائے خانہ، یہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے، فائن اوریجنل پاکستانی سٹائل چائنیز فوڈ آپ کو ملے گا، ایک بار آپ وزٹ ضرور کیجیے گا، اور یہ تمام کوالیفائڈ شیف ہیں پاکستان میں، پی سی لاہور میں یہ شیف تھے اور 14 سال سے ان کا تجربہ ہے، اور رجوے پلازا میں گریٹ ایڈیشن ہے جناب فوڈ لورس کے لیے، اسپیشلی چائنیز کھانے والوں کے لیے، 100% حلال، فریش اینڈ اوتھینٹک فوڈ ہے، نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ، نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، اپنے مسالے ہیں اور ویری ریزنیبل پرائز بھی بہت زبردست ہیں، اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے، ریڈیو پاکستان کا والا دیں گے تو فار شیور ڈسکاؤنٹ آپ کو دیں گے، اور 4 سے 12 بجے ویک ڈیز میں اور 2 سے 12 بجے رات تک ویکینڈس پہ آپ کے لیے اوپن ہیں۔ 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30 ہے اس کا رجوے پلازا میں، اور اس ویکینڈ پہ چائنیز پاکستانی اوریجنل پاکستانی چائنیز کھانے کھانے ہیں تو آپ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین پہ چلے جائیے، نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایڈوانس بک کروا لیجیے 905-514-7877 905-514-7877 چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔
6: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3، اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 4165930003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔

0: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC. Or visit mwcanada.org.
1: Unigrover Advisory Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175। इट्स 437-264-3175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए। शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंक्वेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई मरसद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी बेटी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना, तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही हैं, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे राब्ता करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप राब्ता कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरी डे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरी डे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल्स हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शाम्स भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है।
3: थैंक यू
2: जनाब। अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से

0: गोल्ड का प्राइस आपके लिए आएगा, और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है, और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान ले चलेंगे। दो तीन छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए, 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में, और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिज़ाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी, और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम, या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ़ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ़ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज़ खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल ज़मान साहब। स्टे ट्यून।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही, तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं, लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhaniswits.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matana Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East, Lawrence Richmond ka intersection 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho, aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain. Insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur retreatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East, Bloor aur Dixie ke intersection 905-232-5678.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: अगर आपकी कॉर्पोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922।
5: SSR ऑटो सर्विस 921 एप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे।
6: करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 905-828-0009। You log in ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari।

0: फ्री हैंड दे दे कि हम कम से कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले ले, तो मैं समझता हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि इंडिया में भी पढ़ने के बड़े चांसेस हो गए, खबरों में आया था और पूरी दुनिया ही, यानी कि यहाँ तो खैर जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस और इवन अमेरिका का भी, यानी कि डॉलर पर गैलन, तो ये तो बहुत
1: बड़ा
0: है।
1: ठीक, थैंक यू। 7997 सर, आप ऑन एयर हैं। 7997
2: कैसे हैं आप? ठीक
1: जी, शुक्रिया सर, थैंक यू।
2: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिसी का सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता है, वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है और किसी डिसीजन पे लाती है।
1: जी।
2: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है कि इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हमने काफी, हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। अभी ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने भी दिन इस्लामाबाद बंद रहा है, ये तो बाकी वाली जानते हैं कि उनके साथ क्या होगा। बाकी जो ये गैस वैस का जो मामला है, अभी जो बता रहे हैं कि 15 या 13 डॉलर का ये रुपए का लेते हैं और 40 रुपए का देते हैं, तो क्या ये स्टेट पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी ये मजदूरों का दिन मनाने लगे ये, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मुल्क में इंसाफ और अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए ईमानदार उनके साथ नहीं है, तो आप बाहर जाके लोगों की नेगोशिएशन कराते फिर रहे हो। पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लो। एक तो बात ये थी। दूसरी आखिरी बात में जो कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं इसमें, ये जो अभी जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है, इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या फौज है? अगर कुछ नहीं होता प्रॉब्लम, मैंने अब ये सवाल पूछा है, मैंने जवाब दे,
1: किसी को वो एक का शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। 5794 सर, आप ऑन एयर हैं। 5794
3: अस्सलाम वालेकुम जनाब। बट्टी साहब, ये देखें, जब तक ये जंग लगी है ना, इसमें मसाइल तो होंगे, और इन मसाइल में अल्टीमेटली मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा भाई उनको रिलीफ देना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां हैं, IMF भी है, और सबसे बड़ी बात जो है, देखिये पाकिस्तान के कम अज कम कहने पे चले सीज फायर तो हुआ है ना, भट्टी साहब दुनिया तो तस्लीम कर दी है ना कि चले सालसी, अब ये सालसी देखे, शायद ईरान को तो हम मना ले, अब अमेरिका को मनाना तो बड़ी मुश्किल बात है।
1: जी जी।
3: तो बात वही होगी जो आपस में बैठ के इन लोगों ने अपनी शरायत तय करनी है, और पाकिस्तान का मसला है कि वो हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी और हमायती करेगा ईरान की। तो बाकी रह की बात भट्टी साहब, इसमें हम ये कभी भी नहीं कहते कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों के साथ, लेकिन अब यहाँ देख ले, अब यहाँ नहीं, कल भी आपने बताया तकरीबन 400 रुपए के मुतरादब हमारा भी पेट्रोल हो गया, अब हमारा क्रूड ऑयल भी है, हमें क्या गवर्नमेंट कैनेडा ने दिया है? कुछ नहीं। ये देखें, ये सरमायादार जागीरदार, इनका नुकता नजर और इनका लूटने का वारदात तरीका एक ही होता है। बाकी रह गई भट्टी साहब, हाँ साहब ने तमाम पते अपने जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए हुए हैं, अब एक ही बात है, अब वो भीख मांग रहे हैं अदालत से, यार कभी मुझे जमानत दे दे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाऊं। भट्टी साहब, कब से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिशियन वही होता है जो अपने आप को बचाता है, अपनी पार्टी को बचाता है। नवाज शरीफ आपके सामने मिसाल है, 3 दफा क्या उसके साथ इससे ज्यादा नहीं ज्यादती की गई? यार जिस वक्त 2 रुपए की रोटी और 5 रुपए का जनाब आपको मुफ्त चीजें मिल रही थी, 30 रुपए 40 रुपए 50 रुपए आपको चीनी मिल रही थी, उसके साथ मुल्क के साथ बगाड़ किया गया ना, और जिन लोगों ने किया आज वो उसी पे परेशान है और पिशेमान है। तो इसलिए सियासत करनी चाहिए, मुल्क के खिलाफ जो लोगों का, इंडिया हो जाए, इसराइल हो जाए या अफगानिस्तान, जो उनका नक्शा नजर है उससे हट के सियासत करें, सियासत में वापस आए और अपने आप को बचाएं, अपने फॉलोअर्स को बचाएं,
1: सब थैंक यू,
3: इतना ना करें।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर, आप ऑन एयर हैं। 5415 वालेकुम सलाम सर। जी वालेकुम सलाम जनाब, میں آپ ڈس

0: डिस्कनेक्ट हो गया। चॉइस साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कॉल कर लें। अच्छा हमारे पास 3 00 10 आप बात करना चाहेंगे? 0010 लास्ट 4 डिजिट 0010।
1: सर मेरा आपके सामीन से और आपसे ये सवाल है और बिलाल साहब से कि सब लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आईपीपी के मालिक कौन है? कभी आपके किसी सामीन ने ये
0: बताया तो है
1: कि,
0: सर बताया तो वो सारे वही बड़े लोग ही हैं सर, आईपीपी के मालकान भी
1: उनके नाम, बड़े के नाम तो पता लगने
0: बिलाल साहब के जिम्मे लगाते हैं सर कि वो उनके नाम बताएं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 6141 सर आप ऑन है, 6141। अच्छा 5415 वापस आ गए सर, आप बात कीजिए 5415। आज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। 5415।
2: मैं सिर्फ दो बातें करूंगा।
0: जी जी,
2: पहली बात तो ये है कि हमारी तरह उन मुल्कों में गवर्नमेंटों पर प्रेशर होता है। बट्टी साहब आप मुझे बताएं कि कनाडा में कितने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकले हैं, कितने मदारे हुए हैं? आप मुझे बताएं अमेरिका में कितने मदारे हो रहे हैं, लोग कितने सड़कों पर बैठे हुए हैं दिन रात? और डोनाल्ड ट्रंप तो वो बंदा है जिसकी उम्र 87 ईयर है और उसने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, वो उस पर क्या आवामी सोशल मीडिया का दबाव होगा भाई?
0: ठीक
2: यार, ये बातें मैं कहता हूँ ना, जब मैं भट्टी साहब कहता हूँ कि नियत का फतूर है तो फिर ये नियत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाला हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ बात।
0: जी जी
2: भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात, आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात करूं कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
0: मुझे कह रहे हैं
2: और आपका भी कद बड़ा होगा।
0: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं
2: नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई आप तो सवाल करते हैं।
0: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप ऑन ले रहे हैं, 8156।
3: हेलो,
0: जी जी आप बात जल्दी बात कीजिए।
3: देखिए आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं, 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% तो नए दलों के, पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है, मियां मंशा के चार हैं, शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी एक है।
0: अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।
3: जांगी
0: तरीन भी, अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं इधर बाकी कॉल दे। 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं, 6141।
4: अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
0: जी वाले सलाम सर।
4: पंडित साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े, जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया, फिर जंगे आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखें, दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन? तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558, 9558। अच्छा चलिए, आप सुन रहे हैं बिलाल साहब। मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाजी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप?
5: नहीं नहीं, वो तो जो है ना, क्या कहते हैं, अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज करने की, देखें एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर से जो है ना वो गुजर जाता है,
0: ठीक।
5: तो अभी जो है ना वो देखेंगे वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हकूमत की भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामलात हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ आवाम के ऊपर ही डाल देती है, तो फिर जो है ना वो बहरहाल एक जो है ना सवाल जो है ना वहां
0: जरूर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है, आप भी 2 दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया,
5: जरूर, थैंक यू।
0: एंड लिसनर्स आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआ में रखिएगा, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी खोने की चीज़ है, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम, पर मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट।

अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नईम तारिक यानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच आपका लास्ट वीक का प्रोग्राम पसंद करने का, और बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो अब मेड हो रहा है बेस्ड ऑन जो मार्केट अब आगे जा रही है। दो तीन हफ्ते पहले हमने जो है बहुत ज्यादा डिस्कस किया था बेस्ड ऑन जो ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है उसकी वजह से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी जो है वो हमें डिफरेंस देखने में आया था। इनफैक्ट अब जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, चीज़ें जो है वो इट्स गेटिंग इन टू द प्रॉपर डायरेक्शन, नाउ वी आर सीइंग दैट स्टॉक मार्केट इज गेटिंग ऑन द स्टेबल साइड एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। इंटरेस्ट रेट कैनेडा में भी और यूएस में भी जो है वो स्टेबल रहा है, और उसकी वजह से जो रियल इस्टेट मार्केट है दैट इज गेटिंग इन टू अवर नेक्स्ट मोमेंटम। और हमने रियल एस्टेट मार्केट की जो है वो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था हमने, दैट फॉर ऑल द न्यू डेवलपमेंट यू आर एग्जेम्प्ट फॉर HST इफ यू बाय इट फ्रॉम और इफ यू बुक इट फ्रॉम अप्रैल 1 अंटिल मार्च 31 नेक्स्ट ईयर। सो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई हैं ओवरऑल दैट इज फॉर टू बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल ही मार्केट ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन क्या हुआ। सो नैसडैक वॉज अप और नैसडैक रहा 24,800 पर। बिग टेक अर्निंग्स इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दे आर बूमिंग राइट नाउ। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नई इनोवेशंस की हैं अभी, एक इनोवेशन इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके साथ अगले वीक भी शेयर करूंगा। दे हैव स्टार्ट मेकिंग अप अ ग्लास विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन, और इंस्टा आपका डेटा जो है जितना वो उस ग्लास में अब स्टोर होगा इंस्टेड ऑफ USB और instead of जो है वो हार्ड ड्राइव में। सो दे हैव मेड इट, नॉट मेड इट टू पब्लिक एट येट, बट दिस इज कमिंग इन एंड दैट वुड बी अ मेजर चेंज फॉर माइक्रोसॉफ्ट। S&P 500 दे हैव हिटिंग रिकॉर्ड्स बट स्ट्रगलिंग विद द बैंकिंग वीकनेसेस। ये हमें पता है क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट US में भी जो स्टडी आपके पास इंटरेस्ट रेट रहा जिसकी वजह से बैंक थोड़े से जो है वो वीकर हो रहे हैं US में। कैनेडा का बैंकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, विच इज वाई वी आर वेरी efficient in that way. TSX jo hai 33,900 raha, which is lower and weighed down by sticky inflation data, and that's exactly what we have seen. Inflation is jo hai wo bahut zyada different chal raha hai Canada mein, and along with jo prices hai grocery or food prices hai, they are kind of jacking up. So that's what we have seen. Crude is jo hai is week 107 pe aa gaya, right, और 7% upar aaya Wednesday ko as the Strait of Hormuz remains blocked. Ab wapas Strait of Hormuz block ho gayi hai, which is why क्रूड इज कमिंग अप। अच्छा जी, जो हमने इंट्रो में डिस्कस किया कि मार्केट इज गेटिंग स्टेबलाइज एंड विद सेलेक्टिव स्ट्रेंथ इमर्जिंग, मार्केट कोई अब पैनिक मोड में नहीं रही है, कूल डाउन हो रही है और अब जो है वो स्टेबलाइजेशन और इवेल्युएशन मोड में मार्केट चल रही है। US मार्केट का ओवरऑल क्या रहा, जो मार्केट बिहेवियर था दैट्स मेजर इंडेसेस राइट जो मूव साइडवेज ओवरऑल, और स्मॉल गेन्स लॉसेज जो है वो देखने में आए कंसोलिडेशन फेज आफ्टर रिसेंट वोलेटिलिटी, और यही पिछले 4-5 वीक से मार्केट बहुत वोलेटाइल थी एंड दैट्स रीजन नाउ वी आर सीइंग इन अ डिफरेंट फेज। मैक्रो ड्राइवर्स जो US मार्केट के लिए रहे वो ऑयल स्टेबलाइजेशन है, इट्स बीन सेटल्ड आफ्टर प्रायर स्पाइक्स, और ऑयल जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है अभी भी, जो हमने जैसे जिक्र किया 107 बैरल था लास्ट वीक, इट वॉज लाइक 94 बैरल एंड दैट्स हाउ वी आर सीइंग इट। सो एनर्जी प्राइस जो है वो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और टोरंटो में बढ़ी है एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन। इन्फ्लेशन स्टिल इन फोकस US में, इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग बट स्टिल नॉट फॉलिंग फास्ट। इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन जो थी वो वैसी रही जैसी है, वी आर नॉट आउट ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क है, तो इन्फ्लेशन है US में और वहां का रिस्क जो है वो है भी वहां पर। इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी ये थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज जो इस वीक जो न्यूज आई है इसकी वजह से वो स्टेबल रहा है, सेम रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर रिमेन्स कॉशियस, और इम्पैक्ट क्या हुआ है कि लिमिट्स अपसाइड इन द ग्रोथ स्टॉक। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ पे रही है राइट, रोटेटिंग इनटू रियल मनी सेक्टर, इंडस्ट्रियल जो है वो वहां पे पैसा मूव हो रहा है वहां पे। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इकोनॉमिक आउटलुक और कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपकी बाइंग पावर होगी तो आप जो है वो स्पेंड करोगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इन द US मार्केट। अच्छा, एनर्जी नो लॉन्गर लीडिंग, टेक जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया US में, और ऑयल स्टेबलाइजेशन लेस अपसाइड, ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ऑयल की मार्केट जो है वो अगर स्टेबलाइज होती है तो
यूएस में वो इम्पैक्ट आता है उसकी नीचे जाने का। अगर ऑयल स्टेबलाइज होती है तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज या एनर्जी सेक्टर टोरंटो में कनाडा में ऊपर जाता है, क्योंकि हम हमारे पास एनर्जी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है स्टॉक मार्केट के हवाले से। ओके जी, टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग, नो मेजर सेल ऑफ दिस वीक और रिकवरिंग आफ्टर प्रायर वॉलिटैलिटी और टेक इज होल्डिंग ग्राउंड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल फ्लो, पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ, रोटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल और स्टेबल टेक में रही और मार्केट इज स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैटलिस्ट कि नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर क्या होगा और उसमें मार्केट मूव करेगी। अच्छा जी, यूएस सेगमेंट में जो बड़ी चीज रही, एक तो फेड डिसीजन, फेडरल डिसीजन रहा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टडी रहेंगे 3.5 to 3.75%, नहीं मूव हो रहे वहां से। और जो अर्निंग हैवी वेट है इस वीक वो इंटेल रहा, उनकी मैसिव Q1 जो है वो रिपोर्ट आई है, और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड एज सेफ हेवन क्योंकि AI के बहुत ज्यादा काम होने की वजह से दे आर गेटिंग इनटू अ प्रॉपर टेक स्टॉक एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इट। बैंकिंग क्रैक जो है वो रेयर आर पब्लिक डिवाइड विद इन द सेंट्रल बैंक, द अनसर्टिनिटी इज कॉजिंग ऑल सेल ऑफ द रीजनल US बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर में कुछ डिफरेंस रहा US के मार्केट में, क्योंकि जो है वो अगेन बाइंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन दैट साइड। टोरंटो मार्केट को डिस्कस करते हैं, TSX जो है वो स्लाइटली मोर स्टेबल देन US जो हम देख रहे हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रही है, बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं रही है, लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स दैट। की ड्राइवर्स कौन से रहे, अगेन ऑयल स्टेबलाइजेशन, ऑयल स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी सेक्टर ने लूज किया थोड़ा सा अपना जो है वो पॉइंट, लेकिन टेक TSX बिकम्स मोर बैलेंस क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा जो है वो डायनामिक्स नहीं है इस तरह US में है। सो वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर ऑयल, वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर एनर्जी इन ऑयल एंड हैविली रिलाय ऑन टेक, और जो भी हमारा इम्पैक्ट आता है वो US के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, विच इज वाई वी आर सींग इट। कमोडिटी बैलेंस, मेटल जो है स्टेबल रहा और मटेरियल सेक्टर दे आर एट द न्यूट्रल लेवल। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी जो इस वक्त चल रही है कैनेडा की, दे आर इन टू अ डिफरेंट शेप क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट आता है एंड दैट्स वॉट उसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो उस इम्पैक्ट से गुजरती है। अच्छा जी, क्या रहा कैनेडियन में, कैनेडियन ऑडियंस जो है वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जंप हुआ 2.4% अप फ्रॉम 1.8%। देर आर लॉट ऑफ ले ऑफ, प्रॉब्ली यू हैव हर्ड अबाउट, रॉजर्स ने अपने 10,000 जो है वो एम्प्लॉयज को उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट देने का जो है वो ऑप्शन निकाला है, और मेजॉरिटी जो जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, दे प्रॉब्ली आर टेकिंग इट। दूसरा जो है वो डिफरेंट टेक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। तो कैनेडियन मार्केट फ्रॉम जॉब परस्पेक्टिव और फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इज नॉट दैट बिग राइट नाउ एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ गैप्स इन द मार्केट। अच्छा जी, TSX में रोटेशन क्या रहा, विनर्स जो है वो एनर्जी रही, सनकोर, CNRL और मटेरियल्स में बैरिक गोल्ड रहा, ऑयल जो है 107 पे रहा और गोल्ड जो है वो नियरली स्टेइंग नियर रिकॉर्ड्स। कैनेडाज डर्ट्स एंड पाइप्स आर ओनली थिंग दैट कीपिंग द TSX इन द डीपर साइड। लूजर्स कौन रहे, टेलीकॉम और यूटिलिटीज, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की वजह से दे आर लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन। स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट की क्या रही कि इस वक्त ऑटवा रिसेंटली टेबल इट्स अपडेट शोइंग अ डेफिसिट ऑफ $66.9 billion और ये फिस्कल एक्सपेंशन जो है ये हाई एनर्जी कॉस्ट पे एंड इज पुटिंग कैनेडियन डॉलर ऑन प्रेशर। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इस वक्त। जो ट्रेड चल रही है US वर्सेस कनाडा इज 0.73 और ये जो है वो अब प्रेशर आ रहा है कैनेडियन डॉलर पे। अगर हम US टू कैनेडियन मार्केट का कंपैरिजन करें इस वक्त, सो वोलेटिलिटी में मार्केट फेस कंसोलिडेशन US की है और स्टेबलाइजेशन जो है TSX की है। वोलेटिलिटी मॉडरेट वर्सेस लोअर, लीडरशिप एक वीक है, रोटेटिंग है, लीडरशिप चेंज हो रही है, सेक्टर चेंज हो रहे हैं वहाँ पे। कैनेडा में बैलेंस हो रहा है, राइट, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर लीड ले रहा था एंड देन टेक वॉज गेटिंग डाउन, बट नाउ इट्स बैलेंसिंग इट आउट। की ड्राइवर्स क्या रहे, US में इन्फ्लेशन और रेट्स रहे, यहाँ पे ऑयल एंड स्टेबिलिटी रही की ड्राइवर्स। स्ट्रॉन्ग सेक्टर इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल्स और वीक सेक्टर एनर्जी एंड एनर्जी ऑन द बोथ साइड।
अच्छा जी, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू शो यू गोल्ड प्राइस, जो कि हम हर वीक देखते हैं। इस वक्त आज की जो गोल्ड शेयर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये इस वक्त की प्राइस है, अगर ये लोड हो जाए, 423.68। ये थोड़ा सा नीचे आया है, और इसको आप बिल्कुल जो है वो देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड की प्राइस से। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी सो यू विल सी इंक्रीज इन दिस चार्ट एज वेल। ETF हम देखते हैं आई शेयर का, जो है ETF, एक सेकेंड, हाँ जी, ETF हम देखते हैं यहाँ पे, और ETF की प्राइस इस वक्त है 53.42। ये इसी रेंज में फ्रॉम 49 टिल 55, दैट इज मूविंग मूविंग हियर एंड देयर, लेकिन इट्स गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इट विल गिव यू रिटर्न इन द लॉन्ग रन। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, दैट्स वेयर यू विल गेट मेजर रिटर्न आउट ऑफ इट। So this was it, folks. Thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Kiani. Inshallah, next week, we'll see you with the different market. Hopefully, सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएं. और जो मैंने शुरू में माइक्रोसॉफ्ट की जो नई प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया था, उसको जरूर उसके ऊपर रिसर्च करें. It's called Microsoft Silicon. And that is going to change a lot of things. और उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टॉक है वो भी आगे बढ़ेगा. तो keep watching The Art of Investing. I'll see you inshallah in the next week.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
8: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
9: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
4: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
10: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
11: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
12: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: चाहिए। Then let Talha Bhatti serve you the best. 6472957861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. Talha Bhatti. 6472957861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca.

0: ये महमूद और अयाज है जो रोटी कमाने के लिए भाग रहे हैं, और ये है करीम सेठ, इन्होंने ज्यादा रोटी खा ली और अब भाग रहे हैं। बेचारे गुलखान के पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो एक बनियान खरीद सके। और ये है स्वीट टी, इनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी बनियान ही खरीदते हैं। अमजद सुबह से एडमिशन की लाइन में खड़ा है और शहरी जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सकीना आपा आज बहुत खुश है, उन्हें राशन की पर्ची जो मिली है। पर्ची तो हमें भी मिली थी लेकिन भत्ते की। हमें लगता था इस शहर में पैसे का ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे आने के बाद की प्रॉब्लम्स का हमें कोई आइडिया नहीं था।
1: फरहान यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतनी शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस महीने की दूसरी पर्ची है, दूसरी।
2: मैं भी तो कब से कह रहा हूँ आपसे कि सब कुछ बेचते हो, निकलते किसी दूसरे मुल्क।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं ये फैक्ट्री नहीं बेचूंगा। क्षमा गया, आखिरी निशानी है यार, आखिरी।
2: अभी की आखिरी निशानी अचार है शकील भाई, वो तो हम किसी मुल्क में भी बेच सकते हैं।
3: हेलो, पैसे मिलते ही एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर।
1: जी पप्पी भाई, जी पप्पी। मेरे लाल, देख मैं तो कहता हूँ कि ये सब कुछ बेच के यहाँ से निकल जाते हैं यार।
2: वाह शकील भाई, आप तो पर्ची से ज्यादा पप्पी से डर गए।
1: क्या करूँ यार, शरीफ वादी हूँ ना यार।

0: हेलो।
1: समझ रही है, समझ रही है।

0: कुछ काम मिला?
1: नहीं, मेरे कैलिबर की कहीं कोई जगह खाली नहीं। सुबह बिल्डिंग का ठेकेदार मिला था, उसको मजदूरों की जरूरत थी, मैंने तो अपना नाम लिखवा दिया भाई।
2: क्या क्या कह रहे हो शकील भाई, पागल हो गए हो क्या? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे हैं?
3: समाचार के सीईओ का साला बजरी उठा रहा।
1: अबे जहां का तुम सीईओ था ना, वहां का मैं एमडी था।
0: अब तो जाग जाओ फरहान, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम इस साल में।
2: मेरी हरकतें और तुम ये देखो, इन हालात में भी ब्रांडेड जॉगर्स पहन के घूम रही है ये औरत।
0: मिट्टी देखी है तुमने? मेरा पेडीक्योर खराब होगा तो दोबारा कराने के पैसे तुम दोगे?
2: पैसे तुमने छोड़े कहाँ ना, छोड़े कहाँ पैसे, लाखों रुपयों के तो ब्रांडेड बैग खरीद लेती थी तुम। आज उन बैग में रखने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं हमारे पास।
0: अच्छा, और खुद को भूल गए हैं? गाड़ियाँ ऐसे बदल रहे थे जैसे फोन बदल रहे हो, और फोन ऐसे जैसे कपड़े बदल रहे हो।
2: कपड़ों का नाम लेके तपाना नहीं मुझे, कपड़ों का नाम लेके नहीं तपाना। ये तुम्हारे फैशन के चक्कर में ना सारा दिवालिया निकल गया हमारा। और किधर गई तुम्हारी वो सारी सहेलियाँ, गर्ली गैंग, जिनके चक्कर में वो तुम लॉन की एग्जीबिशन लूट लेती थी? अरे इतने तो आसमान में तारे नहीं है नैना, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारे फोन में हैं।
0: देखो
1: यार, बस करो यार। शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था।
2: हमारी किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत शकील भाई। अरे क्रिकेट से लेके घोड़ों की रेस तक आज तक कभी कुछ जीता है तुमने? अरे 25 करोड़ डुबा दिए तुम्हारे भाईजान ने, 25 करोड़।
4: चले थे शाहरुख खान बनने,
2: क्रिकेट टीम खरीदूंगा। किसने कहा था कराची प्रिंस खरीदने को, किसने कहा था?
1: अरे माफ कर दो भाई, माफ कर दो, सारा कसूर मेरा है यार।
2: क्या हुआ?
1: मिलावट वाली दाल खा के ना पथरी हो गई है यार।
2: ऐसे हालात में ना शकील भाई लोग फाके करते हैं। हाँ। आपको किस गधे ने कहा था दाल खाने के लिए?
1: अबे ओ खाबों के शहंशाह, कल को दाल भी नहीं मिलेगी।
0: क्या हो गया हम लोगों को? पहले भी तो गरीब थे, ऐसे लड़ते तो नहीं थे ना। वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा।

0: तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मेरी शॉपिंग से प्रॉब्लम थी?
1: छोड़ो ना इन बातों को। वो देखो चांद कितना खूबसूरत लग रहा है।
0: हाँ, आज फुल मून है ना?
1: हाँ, ये मून कहाँ है?
0: वो तो रहा आसमान पे।
1: अरे ये नहीं, अपना मून।
0: आज इतने सालों बाद उसकी याद कैसे आ गई?
1: अच्छे वक्तों में किसी की याद नहीं आती, बुरे वक्त में ही दोस्त याद आते हैं। अरे मून की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। अरे तू कॉल कर रहा है?
2: ओए कैसा है यार तू?
1: मून
2: है किधर?
1: मैं ठीक साइड पे हूँ ना।
2: साइड पे? साइड पे? कौन सी साइड पे?
1: हाँ साइड पे, साइड पे ही तो हूँ। वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया ना, बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग
2: है रात में?
1: दिन में टाइम कहाँ मिलता है यार, क्लाइंट्स, मीटिंग्स, शोरूम्स। और नैना, नैना भी तो है, उसको भी तो टाइम देना पड़ता है। शादीशुदा जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है दोस्त।
2: ओ तो सुन फिर, मैं भी अपनी जिंदगी मुश्किल करने जा रहा हूँ।
1: क्या?
2: और शादी कर रहा हूँ मैं, शादी।
1: क्या कह रहा है यार?
2: और तुम सबने आना ही आना है।
1: कहाँ?
2: साउथ अफ्रीका।
1: साउथ अफ्रीका? अरे नहीं यार मून, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, वो काम बहुत फैल गया यार।
2: और तू फैलना बंद कर, मैंने टिकट करा दिया और तुम सब लोगों ने आना है। अब केप टाउन में मुलाकात होगी। ओके फिर
1: मून,
2: टीसी टीसी आना है। बाय
1: शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई, हम साउथ।

0: सोचा खुशी का मौका है, एक एक बजाय आज फिर है।
1: शकील भाई आप लो ना। नहीं यार पहले तुम पियो ना।
0: ओ कमाल करते हो, पकड़ो यार शकील भाई, ओ पकड़। चीयर्स भाई।
1: हाँ ये है ना, बैठो।
2: अरे चीयर्स शकील भाई, चीयर्स।
0: चीयर्स। यार अच्छा किया तुम लोग यहाँ पे आ गए, और यू गाइस आर द ओनली फैमिली आई हैव यार।
1: ये क्या कह रहा है? अरे कह रहा है कि
0: मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन है।
2: अच्छा तू ये बता, तू यहाँ पहुंचा कैसे?
0: भाई पैसे आने के बाद मैंने सोचा वर्ल्ड टूर करना चाहिए, और यार पाकिस्तान से आगे कभी गया ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं गया दुबई, उसके बाद मैं आ गया साउथ अफ्रीका।
1: अच्छा
0: फिर यहाँ से आगे कहीं जा नहीं सका।
2: क्या पासपोर्ट खो गया तेरा?
0: ओ नहीं यार, यहाँ एक पार्टी में ना परी दिख गई।
1: फरहान मैं पहले ही कह रहा था कि इसके पास परी है, तभी तो इसके पास इतना पैसा आ गया।
0: और नहीं यार शकील भाई, परी फियांसे मेरी।
1: पा, पा, पा, पा, पा, पा, मंगेतर।
0: हाँ?
1: मंगेतर।
0: हाँ, हाँ। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि यहाँ से आगे तो नहीं जाता।
2: पर तू करता क्या यहाँ पे?
0: और म्यूजिक के अलावा आता ही क्या था? तो आज यहाँ का सबसे बड़ा डीजे कौन है?
2: कौन?
0: आपका भाई। ओह ब्रदर्सको है यहाँ पे।
1: क्या बात है,
0: इसी बात में चीयर्स भाई। चीयर्स शकील भाई। चलो हो जाए। ये शकील भाई शावा, और कर जाओ मोटर, और चल, और रुक।
2: शकील भाई कचरा कर रहे हो,
0: शकील भाई शावा
2: गंद कर रहे हो यार। अरे शकील भाई शावा, भाभी की कसम बस कर दो शकील भाई।
0: अच्छा मेरी छोड़ो, तुम लोग तो बताओ क्या किया इतने पैसों का है?
1: ओए यार हमारे पैसे तो
2: स्टॉक्स में डाल दिए।
1: हाँ, हाँ,
2: एक रात में
1: डबल
2: डबल।
1: हाँ
2: फिर वहां से निकाले तो प्रॉपर्टी में डाल दिए।
0: डाल दिए।
2: एक महीने में
1: ट्रिपल
2: ट्रिपल। तो मल्टीपल बिजनेस है हमारे।
0: क्या बात है,
2: पानी से लेके
1: पेट्रोल तक
2: सब बेच रहे। अभी शकील भाई कंस्ट्रक्शन का काम भी तो शुरू किया हमने। वो बना रहे, वो लंबा सा नहीं होता, लंबा सा
0: घंटा घर।
2: वो घंटा नहीं यार, वो बुर्ज खलीफा बना रहे कराची में।
1: कटी पहाड़ी पे
2: बीचों बीच।
0: क्या कहने, बड़ा लोकेशन घुट चुके
2: हैं। अपनी तो किस्मत ही चमकेगी।
0: और रोने की क्या बात है इसमें
1: समझ में नहीं आएगा पगले, तरक्की बहुत हो रही है। हमारी खुशी के आंसू है।
0: कमाल हो गया, जब भी दे मैं तो भी।
3: उनकी तो किस्मत ही चमक गई। घर कितना अच्छा है और परी भी कितनी अच्छी है। वैसे पता चला करता क्या है?
4: बड़ा मशहूर डीजे है।
1: हाँ, और उसका यहाँ पे अपना डिस्को भी है।
3: वाह, काम का काम, पार्टी की पार्टी।
4: पार्टी तो हम भी कर सकते थे अगर तुम्हारे भाईजान मान जाते तो। कब से कह रहा था सब कुछ बेच बाज के दूसरे मुल्क चलते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो पाकिस्तान में अचार बेचना था। अब हो गया ना सब चट।
1: अपना मुल्क अपना होता है फरहान।
4: तो अपना मुल्क अपना होता है ना, लेकिन अपने मुल्क में अपना पैसा कौन रखता है? सारे पाकिस्तानी रईस अपना पैसा मुल्क से बाहर रखते हैं, और एक हम है पर्चियों के हाथ डाले बैठे।
0: हाँ जी, किस सार की बातें हो रही हैं भाई?
3: गुड मॉर्निंग।
0: दूल्हा तो इधर है। मॉर्निंग जी।
4: वो शकील भाई कह रहे थे कि तेरी शादी है ना, तो दूल्हे को नोटों के हार डालेंगे।
0: कमाल है यार शकील भाई, और इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो, और हार नोटों का, हीरों का, हार पहनों का बता रहा हूँ मैं।
2: क्यों नहीं, क्यों नहीं।
5: The famous Prince Sheikh Sultan Al Baklava has graced Cape Town. His Highness ki tashreef aavri kisi mulk ke liye sirf fakhr ka baais hi nahi hoti balki betahasha zar-e mubadla bhi saath lati hai. Khawateen o hazra, jaise ki aap apni screens par dekh sakte hain ki is waqt Sheikh Sultan Al Baklava Cape Town pahunch chuke hain aur unke saath aaya hai nihayat hi beshkeemat o nayab unka ye golden kamo.
6: जी हाँ, ये पॉट सिर्फ सुनहरे रंग का ही नहीं है खवातीन हजरात, बल्कि ये बना है 24 कैरेट खालिस सोने से। इसकी मालियत का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस पॉट की एक खास बात ये भी है,
4: कमाल है, ये पॉट शेख सुल्तान हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ये सोने पे अगर
1: लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ये पीछे सोने का कमोट लेकर पैदा हुआ।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: पहले हम कस्टमर को ढूंढते हैं, कस्टमर ने हमें ढूंढ लिया।
1: अच्छा है ना, फालतू की लुक्का छुप्पी से बच गए। अब उसका पॉट उसी को बेचेंगे।
0: एक दफा तो मूतूंगा।
2: घर आई लक्ष्मी पे मूते नहीं है रे।
1: ए सिंगाड़े उठा, इसे अंदर रख, फालतू में दोबारा पैक करना पड़ेगा।
3: ओ यार,
4: हेलो बेबी, और तुम्हारा ड्रेस मैं इधर ही ले आया हूँ घर पे। अब ये यहाँ के ट्राई कर लेना, ताकि सबसे पहले दुल्हन को दुल्हा जी देखें, हैं?
5: Moon, listen to me. There's been a situation. शेख का पॉट चोरी हो गया, पूरे स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
6: वो सोने का कमोड?
5: हाँ, मेरा फोन बंद रहेगा, घर आने में थोड़ी देर हो जाए, तो घर पे बता देना प्लीज।
6: हाँ बता दूंगा।
4: अच्छा सुनो, ओ फरहान, ओ सुन तो सही।
0: अरे
4: ओए, वो शेखल बकलावा था ना, उसका सोने का पॉट और चोरी हो गया।

0: नैना ने कहा था ड्रेस देखना, हमने खोला तो ये निकला।
1: ये क्या है मून?
2: परी ने तो ड्रेस ही दिया होगा, ये कहां से आ गया? कोई कंफ्यूजन है।
1: सोना
0: सोना
1: सोना
2: फोन पे कह रही थी कि पॉट चोरी हो गया है, पुलिस आई हुई है, अब उसका फोन बंद जा रहा है। हाँ? पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है?
3: मैं न्यूज में देखती हूँ, शायद कुछ आ रहा हो।
1: गुड आइडिया, लगाओ जल्दी।
4: कहा जा रहा है कि मालियत के एतबार से ये दुनिया की पांचवी बड़ी चोरी है, और इस नौयत की चोरी के पीछे किसी बहुत ही बड़े और खतरनाक गैंग का हाथ है। ये वाकया रोनमा हुआ है जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में, जहाँ शेख सुल्तान अल बकलावा ने ऐलान किया है कि जब तक उनका एक अमाउंट मिल नहीं जाता वो बाथरूम नहीं जाएंगे।
0: ठाकरे जल्दी से फोन लगा बेचारे को, कहीं प्रेशर से फट ही ना जाए।
5: ए, तेरे हगने का बंदोबस्त हो गया है।
6: What?
5: I mean, we found your pot.
6: Good job.
0: एक, एक घंटे के अंदर अंदर नेल्सन बुलेवर्ड पहुंच, पैसों के साथ।
4: गोल्डन कमोड चोरी हो गया है।
3: लगा फोन?
2: नहीं, उसका फोन अभी तक ऑफ जा रहा है। परी किसी मुश्किल में ना हो यार। सुनो, मैं पुलिस को फोन करने लगा हूँ, उनको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये बॉटम तक कैसे पहुंचा।
1: मरवाएगा, पागल हो गया क्या तू?
2: क्यों?
1: तू पुलिस को फोन करके सब कुछ बताएगा और वो मान लेगी? अरे पॉट के साथ साथ हमें भी उठा के ले जाएंगे।
2: और ये पाकिस्तानी पुलिस थोड़ी है।
1: वही तो, पुलिस पाकिस्तानी नहीं है, हम तो पाकिस्तानी हैं। और ऊपर से मुसलमान भी, चोरी के साथ साथ दहशतगर्दी का केस भी डाल देंगे। दुनिया में सबसे पतली गर्दन किसकी शकील भाई है? सारे फंदे हमें ही फिट आते हैं। दुनिया में जब भी कुछ बुरा होता है सबसे पहले हमें ही तो उठा के ले जाते हैं। देखो हम सब परेशान हैं, मिलके कोई हल निकालते हैं।
0: ओए, ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसको समंदर में फेंक देते हैं, ओसामा बिन लादिन की तरह।
3: नहीं, और... नहीं, नहीं, एक सेकंड, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। हम इसको गार्डन में दफना देते हैं, फिल्मों में वैसे भी यही होता है।
0: वो लाश को दफनाते हैं नैना, ये कमोड है।
2: यार क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसा करने से क्या होगा? और पुलिस तो फिर भी ढूंढ लेगी इसको, और कुत्ते लेके पहुंच जाएंगे वो इसको तलाश करते। देखो हमें ये पॉट किसी भी तरह पुलिस तक पहुंचाना ही होगा।
1: एक आइडिया है, एक आइडिया है इस पॉट को पुलिस तक पहुंचाने का।
0: क्या?

0: वार्ड पुलिस को मिल तो जाएगा ना।
1: हाँ
0: चलो चल।
1: शक्ति भाई उधर।

0: अरे कौन थे, कौन, अरे कौन थे,
1: ये लो पांच,
0: अरे पाकिस्तानी नहीं चाहिए यार। हेलो
2: हेलो,
0: पॉट नेल्सन बुलेवर्ड में है, आके ले जाओ।
2: व्हाट,
3: अबे अंग्रेजी में
0: गोल्डन पॉट इज एट नेल्सन बुलेवर्ड, कम कम जल्दी जल्दी,
3: गेट इट गेट इट,
0: कम कम गेट इट।
2: हु इज दिस?
0: नाम मालूम अफराद,
2: व्हाट,
3: चलो गया।

0: Şeyh.
1: करने के लिए तो ये भी ठीक है, फिर साले शेख को सोने का पॉट क्यों चाहिए? इतने सारे सोने से कितने लोगों की जिंदगी बन सकती है यार? बन तो हमारी भी सकती है। शनि भाई उठो, शनि भाई
2: कौन?
1: चलो चलो उठो। अरे उठ जाओ ना।
2: कार लेके जा रहा है यार।
3: Hold it, buddy. Not so fast. I want to see what's inside.

0: लगेगा क्या?
1: What the fuck's this? Where's the pot?
2: पॉट तो इसी में था, कोई गड़बड़ है।
1: लारी चीरेस,
3: शेख हमारी बात सुनो शेख।
4: You call the police, bastard Kulwarami.
5: क्या कर रहे हैं यार, पुलिस आ जाएगी।
2: किस्मत दूसरा मौका दे रही है भाई, हम तब दिल्ली आ सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। चलो चलो, हिम्मत करो।

0: Good morning, ladies and gentlemen. I understand and appreciate that you've all been extremely anxious about this case. So it is my pleasure to announce that after a grueling investigation, we have managed to recover the pot.
1: After a day or two with our forensics team gathering evidence, it will be returned to Prince Sultan immediately. I would also like to take this opportunity to make mention of our detectives.
2: Oh, yaar, shukr hai, yaar. Oh, mil gaya pot police ko. Bada. Oh, tera idea kaam kar gaya, Farhan, meri. John. Oh, Shakil bhai, mubarka. Oh, chuppiya. Hey, chuppiya. Bhai, bhaji ba. Oh, kya kya.
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
4: सुने आप लोग नाश्ता तो कर लें।
3: हाँ हाँ
2: और नाश्ते ही बाहर करते हैं।
4: मैकडॉनल्ड्स चलते हैं।
2: ओए ओके हो गया फिर तो। कौन है
3: ये क्या हो गया? शक्ल में चुप हो जाओ।
4: पता चला पॉट मिल गया।
2: पता तुझे क्या लग रहा है? मैं अपनी शादी की खुशी में नाच रहा हूँ।
3: शक्ल में ज्यादा खुश हूँ। शक्ल में मैंने खुद रखा था। पुलिस कैसे लगी?
4: हाय गाइस। हाय
3: हाय हाय हाय हाय
4: Nana, how are you? मुझे बताओ अब अगर जेट लैग उतर गया तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ भी क्या कर रही हो? ये तुम क्या कर रही हो? हेल्प करा रही हूँ, पर हम तो नाश्ता करने के लिए बाहर जा रहे हैं।
2: ओ,
4: तो पहले क्यों नहीं बताया? I'm also starving. चलो, चलो,
2: चलो, चलो, एपिया सेब, आओ जाओ, आओ बेबी, can't wait. चलो, आओ शकील भाई आओ, प्राण जल्दी
4: चलो,
3: चलो, चलो, चलो.
4: नैना मेरे साथ चलो, तुम वहीं से घर चले जाएंगे, ठीक है?
2: See you there, take care.
5: पॉट पुलिस तक कैसे पहुंचा?
6: बॉस कसम से मुझे कुछ नहीं पता। बॉस
5: पता तो तुझे है और तू बताएगा भी।
6: नो बॉस, नो, नो बॉस, नो।
7: मुकतलुल नदाल आर रईसल कुरूफ अल बला।
8: ये क्या बोल रहा है शेख?
7: यू ब्लडी खराबी।
8: गाली नहीं शेख, देखे सब में कुछ लोचा है, अपने को सेटल करने दे।
7: सेटल तो तुम किया जो पॉट पुलिस को दिया।
8: शेख, पॉट पुलिस को हमने नहीं दिया, वैसे भी तुझे पॉट चाहिए था ना, वो हम देते या पुलिस, क्या फर्क पड़ता है?
7: फर्क पड़ता है, पॉट में डायमंड्स थे।
8: डायमंड? अबे कौन से डायमंड्स?
7: बिग डायमंड्स जो मैंने तुझसे खरीदा और पॉट में रखा।
8: शेख चूतिया मत बना यार, पहले तेरा पॉट चोरी हुआ, उसमें हीरे आ गए, थोड़ी देर बाद तू कहेगा कि तेरी 150 बीवियां और 500 बच्चे भी उसमें थे, हम मान लेंगे क्या? अबे तेरा पॉट है या पोतने का कान जो हर चीज उसमें घुसे जा रही है?
7: घुसे का तो पुलिस वाला, अगर पॉट से हीरे निकले, अगर नहीं निकले तो मैं ऐसा घुसाऊंगा कि हीरे तुझसे निकलेंगे। समझा?

0: और तुम्हें हीरे थे और हमें पता ही नहीं था तेरी।
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल।
0: क्या?
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल, क्योंकि उसी ने हमें बताया है कि पॉट में हीरे हैं। अब ना उसे हीरे मिलेंगे और ना पॉट। फिर देखते हैं कौन किसके अंदर घुसता है।
2: क्या हुआ?
3: वो यार मून, हमने तुझसे कुछ छुपाया है।
2: ओ, क्या छुपाया है? क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है?
3: अब हम अमीर नहीं रहे यार। हमने तुझसे झूठ बोला था।
4: हाँ यार, हमारे साथ वही हुआ है जो हमने बैंक के साथ किया था।
3: फैक्ट्री चल गई यार मून, फैक्ट्री चल गई।
4: हाँ यार, हमारे तो दिवालिया निकल गया यार। फैक्ट्री के जलते ही हम

0: क्यों नहीं बताई?
1: क्या बताते तुझे यार, क्या बताते? हमने सोचा तू इतना खुश है, अपना दुख बता के तेरे तेरे रंग में भंग क्यों डाले हम?
2: हमारे पास तो तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है यार। तू इंसान नहीं है, फरिश्ता है, फरिश्ता।
1: हाँ फरिश्ता।
0: ओ यार तुम लोग परेशान नहीं हो यार, हम दोस्त हैं, वी आर लाइक ए फैमिली। और तुम लोगों का जब तक दिल करता है मेरे पास रहो, यहाँ पे मैं हूँ ना, सब देख लेंगे। हैं, ऐशकिल भाई
2: क्या बात की है यार।

0: çekil bey.
1: Ha. Gel. Hadi.
0: Moon.
1: Ha?
0: हमने तुझसे कुछ और भी छुपाया है.
1: अब क्या छुपाया है वो भी बता दे.
0: वो पॉट पॉट था ना.
1: हाँ.
0: वो सोने का था.
1: और ये बात पूरे साउथ अफ्रीका को पता है फरहान. चल आजा.
0: वो पॉट हम रात को वापस ले आए थे.
2: हाँ, मगर अब वो पुलिस ले गई है.
0: हाँ.
1: कहाँ से?
2: मेरा ख्याल है गाड़ी में से निकाल के.
1: वो गाड़ी में से?
0: फक.
1: अबे साले यार तीन के साथ तेरी में क्या बोले थे? क्या बोले थे? ओ फरिश्ता, ओ फरिश्ता, ओ साले चूतिया बना दे गाड़ी के तुमसे. तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? कह दो ना, कह दो मजाक कर रहे हैं. कौन सी मनहूस गली थी जब मैं तुम लोगों को यहां ले आया और डायन भी सारी घर छोड़ देती है. जल के है ना, जल के मेरी खुशियों से जल के.
0: अरे
1: झाड़ के किया तूने, तूने झाड़.
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं.
1: तू क्या कह रहा था?
0: क्या
1: तू क्या कह रहा था? हैं, रंग में भागी डालना चाहता और डाल दिया. और तूने रंग में भागी डाल दिया यार. और कीड़े पड़े तुम दोनों को.
3: क्या कर रहे हो? आ जाओ.
1: आ रही.

0: कितनी अच्छी जगह है ना। जगह अच्छी है। यू ओके?
1: या
2: थैंक यू।
3: कांग्रेट्स
2: फॉर व्हाट?
3: दे फाउंड द पॉट। आई कैन सी यू वर्क एट द ग्रैंड हेरिटेज होटल।
2: ओह या थैंक्स।
3: यू वेलकम। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट।
2: पूरे केप टाउन को पता है यार, होटल की रेपुटेशन तो गई। पता है कितनी पुलिस आई थी?
0: अच्छा?
2: पूरे स्टाफ को रोक लिया था। सारी रात इन्वेस्टिगेशन की है। लग रहा था जैसे हम ही चोर हैं।
0: उल्लू के पट्टे।
2: बट यू गाइस हैव नो आइडिया यहाँ की पुलिस का। बहुत ही तेज है। कैन यू इमेजिन? एक रात में पॉट ढूंढ लिया।
4: वाओ।
2: आई एम टेलिंग यू, नेक्स्ट 24 आवर्स में तो चोर को भी पकड़ लेंगे। फिर देखना कैसा जूस निकालते हैं उसका।
4: निकालना भी चाहिए।
5: Please help us! We are Pakistani!
6: Currently the most wanted criminals by the police.
4: क्या कर रहे हो फरहान?
0: Sorry.
2: You okay?
0: Sorry.
3: Hope you're enjoying your breakfast.
2: I'm loving it. Moon, bye!
7: Okay.
8: अरे
9: अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे अरे

0: मेरा
1: यार गलती हो गई, माफ कर दे। हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं।
2: हम आज ही चले
3: जाते हैं। सही बात है, बहुत अच्छे। और सारा कचरा करके है? और मेरे पीछे पुलसे लगा के अब कट्टे के चक्कर में हो? एक इंच नहीं ले दूंगा तुम लोगों को यहाँ से।
2: ओके, आई एम फॉलोइंग।
3: और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ना, तुम दोनों
2: तुम्हारी खुशियाँ बांटने आए थे।
3: कौन सा ड्रेस?
4: मेरा वेडिंग ड्रेस।
3: वो शादी वाला।
1: अबे ये तो गंदी फिल्मों का हीरो लग रहा है।
2: Your tire is flat. Your tire is flat.
0: Oh, thank God.
2: What?
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Thank you.
2: Have a nice day.
0: You too.
3: वो सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी। हाथ ना लगाई गाड़ी को। तेरी खराब है।
0: फरहान शकील भाई।
3: तो फिर पुलिस को क्या मिला?
5: सर, एक्सक्यूज मी सर, सो व्हाट इज योर नेम दैट वी हैव द पॉट
6: टू कंफ्यूज द थीव्स, गेट देम रिलैक्स्ड, गेट द कंप्लेसेंट, एंड देन वी गो आफ्टर देम हार्ड. They think they're so smart. They don't know who they're dealing with.
5: Hello?
7: शकील, पुलिस को जो पॉट मिला है वो अपना है, बता किधर है?
8: साला लगता है तुम लोग का भी कोई बाप निकला है। पुलिस को कोई पॉट नहीं मिला। It's a trap.
1: अगर पॉट पुलिस को नहीं मिला और अपने पास भी नहीं है तो ये पॉट है कहां?
0: बॉस, गिव मी वन चांस बॉस, मैं पता लगा लूंगा बॉस कि पॉट कहां है।
5: पॉट यहां है और पुलिस को जो भी मिला है हमें एक और मौका मिला है। सोच मून, इतना सारा सोना हमेशा के लिए गलाजत का ढेर बना रहेगा, लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो सैकड़ों लोगों की किस्मत चमक सकती है।
1: क्या?
5: अगर हम ये पॉट रख लें, हम इसे बेच के दोबारा फैक्ट्री ले सकते हैं। उसमें हजारों लोग काम करेंगे यार, उनके घरों के चूल्हे जलेंगे, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। अरे लोगों के पास खाने को नहीं है यार, खाना तो क्या पीने का पानी तक खरीदते हैं यार लोग, और ये सलेच्चे, इनको हगने के लिए अरबों रुपए चाहिए। अबे जब लगेगी तो ना जंगल देखेंगे ना बिस्तर, कहीं भी पूत लेंगे यार। देख, ये अमीर लोग, ये लोग अगर आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी यार। मून सोच,
2: मून फरहान ठीक कह रहा है यार।
5: कुछ बोल यार।
3: इसको रखेंगे कहां पे?

0: कोई यार ये तो लग ही नहीं रहा कि सोने का है ना।
1: शकील भाई ओ हग दे यार।
2: अरे उर्दू वाला नहीं शकील भाई, अंग्रेजी वाला हग दे।

0: कौन है?
1: बहुत चील लोग है। आई हैवन्ट सीन देम बिफोर। डीसी लगते हैं।
0: एक काम कर, उठा ला। हम भी तो देखें ये नामालूम अफराद कौन है जिन्हें हम नहीं जानते।
1: ओके।
2: ये पत्थर पता नहीं कब जान छोड़ी। आए फरान उठना यार, उठो यार, मेरे पेट में पथरी नहीं है।
3: लाउड वाली दाल नहीं खाई भाई।
2: अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, पथरी नहीं है, हीरे हीरे असली।
3: किस सटिया क्यों क्या शकील भाई सुबह सुबह?
2: अरे चल के देख लो,
3: क्या बकवास है यार शकील भाई, यार छोड़े दो यार, चलो भाई, क्या चल यार, मुंह समझाओ यार, क्या है
2: ये देखो, अबे देख
4: मुंह, ये देख।
3: शकील भाई क्या खाया था?
2: अरे यार तुम लोग ही बुफेट में ले गए थे, सब कुछ ही खा लिया था मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा था।
3: लग तो असली रहे।
2: हाँ
3: तू निकाल ना।
5: थैली लेके आता हूँ, थैली लाता हूँ, ठहरो जरा।
3: थैली
5: थैली थैली थैली थैली थैली थैली थैली कहाँ थैली कहाँ
3: है? किधर रहता है? यहाँ देख ली, यहाँ पे, इधर तो नहीं है। चाहिए भी आपको मिली?
2: अबे छड़ों के घर में थैलियाँ कहाँ मिलेंगी? अरे वो तो अम्मियाँ होती हैं जो थैलियाँ छुपा के रखती हैं।
3: अरे चाहिए भी बातें कम करो यार, ढूंढो यार।
2: अबे ढूंढो। अरे कराची होता तो सड़क से उठा लेते। अबे
5: ओके ओके चलो
3: चलो चलो चलो चलो निकल।
6: अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था,
7: हीरे देने वाला बुड्ढा पहली बार देखा है।
2: ओ अच्छा हुआ ऑपरेशन नहीं करवाया, वरना सारे हीरे डॉक्टर ले जाता।
3: शकील भाई फिर आएगी क्या?
2: अरे खिलाओगे तो आएगी ना, तेज गांव की तरह आएगी। इसमें क्या मसला है, ये क्या कोई रॉकेट साइंस है?
3: मैं पकाता हूँ, मैं पकाता हूँ।
5: शुक्रिया भैया, बैठो आराम से।
3: मैं पकाऊंगा आपके लिए।
5: तो ओके,
3: चावल चावल तो खाओगे ना?
5: चावल खा रहे
2: हैं। ए ए खिलाओ।
3: क्या खाओ? शुक्रिया भैया केला खाओगे? केला?
2: अबे एक से आना बंद हो जाएगी, दो खिला।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये लो दो खा, दो खा।

0: तुम्हारी शक्ल भाई, तुम्हारा पेट है पॉलिटिशियन, सब कुछ खा के भी कुछ नहीं कर रहा।
1: नहीं यार, मिस कॉल थी।
2: माश की दाल है तेरे पास? अब अबे चने पड़े हैं तेरे पास?
3: और शकील भाई एक बार जमाल को डका लो, सारे ही रेबार आ जाएंगे। हैं?
4: आ गई
0: शकील भाई, कर ली?
1: अबे कर रहा है यार, करो।
0: हाँ करो करो, आराम से खुल के। हाँ
5: पता है क्या मुन, ये हीरे ना तूने बड़ी मेहनत से निकाले, ये सारे तू रख ले, अब जो भी निकलेगा।

0: Then let Talhawar Tea serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhawar Tea. 647-295-7861. Then let Talhawar Tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: वो मैं रख लूंगा।
1: पागल समझा तूने मुझे है? और इस दफा ज्यादा खाना खाया उसने, इतना ही रह निकलेंगे, सारा राशन भी खत्म कर दिया ऊपर से उसने।
2: शकील भाई कर ली।
3: शकील भाई क्या हुआ? हुई
2: शकील भाई हुई
1: ओई।
4: अबे लगता है जितने थे वो पहले ही निकल गए।
3: अच्छा झूठ बोल रहे हो, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, इसने छुपा लिया
1: सही।
3: खोलो दरवाजा, खोलो खोलो, मुझे देखना है अभी, खोलो। अबे तू क्या कर रहा है? देख रहे
1: खोलो दरवाजा,
3: तू छुपा लिया सच्ची भाई। ए चली भाई ये क्या?
5: ओ ओ ओ ओ
1: क्या बोल रहा था तू? इस बार जो भी निकला वो तेरा।
6: ले ले ले ले ले ले।
1: ओए रे ओए ओए रे,
3: ये तो चले गए।
1: ओ पाइप पे आ जाओ।

0: तो गटर कितने साफ हैं।
1: हाँ यार, मैं भी पहली बार ही अंदर आया हूँ। कोई इनमें से हमारा भाई कौन सा, ये कैसे पता चलेगा?
0: शकील भाई, आप सुन के बताओ ना, आपको तो अपनी का आइडिया होगा।
2: अबे मैं क्या कुत्ता हूँ जो सुन के बताऊंगा, क्या मैं निंजा टर्टल हूँ जो गटर।
0: अच्छा, लड़ो हीरे ढूंढो, चल पाइप ढूंढते हैं।

0: There's nobody. पर पॉट मिल गया बॉस।
1: उनको छोड़, पॉट लेकर आ।

0: क्या मिल गया?
1: ओ, पाइप मिल गया हमारा।
0: अबे मिल गया शकील भाई, पाइप मिल गया। निकल निकल निकल, जल्दी निकल, जल्दी निकल। देखे हाँ देखे
2: शकील भाई,
3: क्या क्या हुआ?
0: देख रहे कि नहीं? अबे क्या हुआ
2: यार शकील भाई?
0: हाँ
2: यार लगता ही रहे तो आगे निकल गए।
0: कैसे आगे निकल गए? ठीक से देख।
1: तू देख ले आगे यार, तू अपने नाक को साले।
2: पहले इतनी बदबू है यार,
0: हट यहाँ से। बदबू है यहाँ पे,

0: तो शकीब भाई हाँ
1: अच्छा बेटा इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा बरी बना ली तुमने हाँ
0: वो अपनी खुशी से लाए भाई पूरे खानदान के लिए गिफ्ट होंगे ना सिर्फ बरी थोड़ी होगी है ना
2: देना अब बरी में तो सिर्फ ये ज्वेलरी आंटी जी अगली
0: ओके
1: अच्छा
3: और ये भूल गया ये कौन देगा
2: ये भी ये बड़ा कीमती आंटी जी तो संभाल के
0: प्लीज
1: उफ इट्स वेरी ब्यूटीफुल
2: है ना
1: डोंट वरी बेटा I'll put it in my safe.
0: Oh, very good. Very good. और इनका सेफ तो इतना सेफ है कि उसका कोड आज तक मुझे भी नहीं पता
2: लो कर लो बात वादी बात
0: शेख भाई
4: यही रहने बोलो ना बताओ ना
0: वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं
4: जी हम तो आ रहे हैं
0: हाँ हाँ कहाँ से
5: इसका मतलब है कि हम आपके आ रहे हैं
1: लेकिन आप लोग तो आ चुके
5: यही तो हम आपको बता रहे हैं आंटी कि हम आ गए हैं
0: मैं समझा ना
5: दरअसल हमारे यहाँ रस्म है कि शादी से दो दिन पहले लड़के वाले लड़की के यहाँ रहने के लिए आ रहे हैं
1: मून बेटा
2: जी
1: ऐसी किसी रस्म के बारे में आपने पहले तो नहीं बताया
2: होता क्या ना कि लड़का जब
3: आता है तो रस्म है आंटी ये भी तो रस्म है बताना नहीं होता नहीं होता आंटी अगर बता देते हैं तो दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक बहुत बुरे तरीके से बीमार हो जाता है आंटी और कभी कभी तो तौबा
1: नहीं बेटा बताओ
3: आंटी ऐसे मुंह से निकली हुई बात भी तो कभी कभी सच हो जाती है ना वैसे पहले आंटी मैं इनमें से किसी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था बिल्कुल नहीं लेकिन जब मैंने नहीं माना था याद है आपको एन रुखसती वाले दिन नैना को चिकन पॉक्स
1: अच्छा क्या तुम लोगों ने बता दिया यू ऑल मस्ट स्टे हियर मस्ट आई इंसिस्ट
6: क्या बात करी आंटी पॉप इनकी बात तुम्हें आ गई इनकी आई डोंट बिलीव ऑल दिस नो
1: क्या
0: मून बेटा बड़ों की बात को मानना चाहिए और फिर आंटी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो फिर यू मस्ट स्टे हियर यस
6: एग्जैक्टली
5: हां मून एग्जैक्टली देख ले फिर चिकन पॉक्स हां
3: आंटी चाय बहुत अच्छी बनाती है आंटी
1: ओके
2: जी बड़ी
1: ये खाए ना आप लोग बिस्किट
5: हां वन बिस्किट
1: ये ले
5: ओह वन ओनली
1: चिकन पॉक्स
2: हां जी
7: क्या हुआ ठाकरे
8: हाँ बॉस बॉस पूरी सस्ते के तो पार्ट
7: साले सिंघाड़े हीरे कहाँ हैं हीरे कहाँ हैं
8: बॉस हीरे तो पार्ट में होंगे
9: हीरे पार्ट में नहीं है
10: Where the fucking diamonds?
7: पहले तू कह रहा था हीरे पॉट में अब कह रहा है कि पॉट में नहीं है खेल रहा है क्या तू जानता है कि हीरे हमारे पास नहीं है
10: तो ढूंढो या तो मैं हीरे लूंगा या तेरी जान 24 घंटे तेरे पास अदरवाइज खलास

0: चलो ना,
1: जा रही हूँ नैना,
0: पहले मेरी बात सुनो।
1: अच्छा देखो तो सारे,
0: नहीं ना इधर आओ।
1: क्या हुआ?
0: सुनो तो सही, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या नई नई कहानियाँ बना रहे हो तुम? कब हुए थे मुझे चिकन पॉक्स? चल क्या रहा है फरहान?
1: नैना तुम्हें नहीं पता, बहुत मसला हो गया।
0: कैसा मसला?
1: अरे ये मोहन के हालात तो बहुत ही खराब है, हमसे भी ज्यादा फुकड़ है।
0: क्या?
1: हाँ तुम्हें पता है उसने हमें यहाँ टिकट देके क्यों बुलाया?
0: क्यों?
1: क्योंकि उसको लगा हमारे पास पैसे हैं, हम कर्जा चुकाएंगे उसका।
0: है?
1: हाँ बहुत खतरनाक लोगों से कर्जा लिया हुआ उसने। वो तो घर पे आ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकले। अब कहाँ जाते, होटल के पैसे तो है नहीं ना, तो दो तीन दिन यहीं गुजार लेते हैं, शादी हो जाएगी फिर निकल जाएंगे, फिर मुंह जाने। और वो लोग
0: बिचारी परी।
1: क्या बिचारी परी, हमें अपनी पड़ी है बिचारी परी, बताना नहीं किसी को। चलो चलो सब देख।
0: फरहान नहीं मुझे ये तो बता।
1: रहने दो ना, वो देखो सब। हाँ बहुत आ रहा, अरे हमारे नाचो नाचो।
2: अगर हीरे पॉट में होते तो पुलिस शेख को नहीं छोड़ती, इसका मतलब है जिसने हमसे पॉट उड़ाया हीरे उसी के पास है।

0: तुम क्या कर रही हो इधर?
1: एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी।
2: करो बेबी।
1: ज़्यादा चिपको नहीं।
0: तू शादी से इनकार तो नहीं कर रही? वो क्या होती है वो लास्ट मिनट एंग्जायटी, वो तो नहीं हो रही ना बेबी?
1: अरे नहीं यार, इम्पोर्टेंट बात है। वो शेखल बकलावा है ना, उसको मैंने फोन पे बात करते हुए सुना है।
0: क्या कह रहा था वो?
1: वो किसी को कह रहा था कि जो पॉट है ना, उसमें हीरे थे। और अब हीरे नहीं है।
0: ये बात तुमने पुलिस को तो नहीं बताई ना बेबी?
1: नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बता देनी चाहिए।
0: क्या पुलिस को थोड़ी बता रही है? पुलिस को नहीं बताते बेबी? ये शेख लोग जो होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, हैं? तो तुमने ये बात तो नहीं बताई ना किसी और को?
1: नहीं।
0: भूल जाओ, हैं? बिल्कुल ही भूल जाओ। और दो दिन में शादी है हमारी, तो क्यों बिला वजह हम हीरो के चक्कर में पड़े?
1: लेकिन मैं सोच रही थी
0: कि नहीं सोचो ना, तुम ना सोचो। अब तुम जाके वो लो, वो ब्यूटी स्लीप लो, हैं? वो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे आपको। जाओ शाबाश।
1: Okay.
0: सो जो जाके। गुड नाइट, बाय।
1: आर यू श्योर कि नहीं बताना चाहिए?
0: ओ यार, मैं करता हूँ हीरो का कुछ। हैं? अब सो जो जाके। ओके
1: ओके ओके।

0: मैं तो कहता हूँ हीरे बेच देते हैं।
1: और बेचेंगे तो तब ना जब हमारे पास होंगे। हीरे तो आंटी के पास रखवा दिए थे।
2: तू तो ऐसे कह रहा है यार जैसे 10 साल बाद शादी। अरे कल शादी है, कल मिल जाएंगे हीरे, परसों भेज देंगे।
1: एक काम करते, उधर नुक्कड़ पे खड़े होते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई हीरे ले लो, हीरे ले लो हमसे।
0: अरे
1: और हीरे है खीरे नहीं है जो एमी बिक जाएंगे। करोड़ों का पॉट है शेख का, करोड़ों का, तो हीरे कितने के होंगे? एमी चलते फिरते कस्टमर मिल जाएगा। मेरी बात मानो, चुप करके ना शेख को हीरे वापस कर देते हैं। जान भी बच जाएगी और इज्जत भी, सुकून की जिंदगी गुजारते आगे। क्यों बहुत हो गया यार एडवेंचर बस। अब
3: मून सही कह रहा फरमान, बहुत हो गया एडवेंचर।
0: ठीक है यार, हीरे शेख को वापस कर देते।
1: हाँ।
0: लेकिन मुफ्त में नहीं।
4: तुम मून को कब से जानती हो?
5: इट सीम्स लाइक आई हैव नोन हिम फॉरएवर।
4: तो तुम मून के बारे में सब कुछ जानती हो?
5: ऑफ कोर्स यार, और वो भी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन हाँ एक बात नहीं जानता।
4: वो क्या?
5: तरा,
4: ये क्या है?
5: उसके घर की चाबी। एक नंबर का भुलक्कड़ है वो। मैं कब से कह रही हूँ मुझे मेरा शादी का जोड़ा ला दो, मेरा ड्रेस ला दो, लेकिन ला के नहीं दे रहा। अब क्या मैं शादी का ड्रेस शादी के बाद पहनूंगी?
4: परी, हम मून के घर नहीं जा सकते।
5: हम मून के घर आ गए हैं। बस ड्रेस उठाएंगे और हम अभी चले जाएंगे।
4: परी
5: बस 2 मिनट यार, 2 मिनट लेंगे। चलो चलो
4: परी मेरी बात तो सुनो।
5: अरे यार अभी हम निकल जाएंगे, बस 2 मिनट
4: हम बाद में। मैंने बोला था ना कि बाद में आ जाते हैं।
3: सोना और हीरे दोनों एक साथ थे, औरत ने तो हाथ मारना था।
6: साला, लगता है लाइफ लॉन्ग ज्वेलरी बनाने का प्लान था।
3: चले
4: जी।
0: अपने कपड़े और जेवर ठीक कर लो।
3: प्लान क्या है?
0: पता नहीं। सोचा नहीं ना
1: प्लान के आगे पागल।
0: अरे रिसेप्शन पे चल के शेख का रूम नंबर किसी तरह निकालना है। अपना सारा जनान अपन इस्तेमाल करो। ठीक है चल।
7: Hello, beautiful.
8: I'm here to see Sheikh Baklava. Could you please tell me where the prince is staying?
0: Selfie.
8: Sheikh Baklava. Oh, don't shoot, please. I'm just a big fan. You're so gorgeous. Can I take a selfie with you, please? Just one. Please make a bout. You're so lovely. I can't believe this.
9: Mr. Baklava, you're so handsome.
8: He's right. Oh, she's right.
9: And so big.
10: Too big. You are too what?
8: Hot.
3: Shukran. Shukran.
8: Naughty Sheikh.
3: Why don't you come to my room?
8: No.
3: I will treat you with some baklava. It make your life more flavorful.
10: I love all kind of flavor.
9: And I love baklava.
8: You're so sweet.
3: Okay, come with me.
8: Let's go.
3: खली
8: so sweet. Oh, oh, no. Don't do this. Oh, come on.
11: You come on.
1: Oye, it's poison. Chup, chup. Shor mein jayega na, to dba denge andar.
11: If you want your diamonds, call on this phone. Okay?
8: Tezabi puppy le raha hamari.
9: Bye, Bakku.
11: साले का फोन भी सोने का यार। चलो चलो।
4: हम किडनैप हो गए हैं परी, और अब हमें रेप होने से बचना होगा। हाँ?
5: तुमने यूट्यूब पे सेल्फ डिफेंस वीडियोस देखी है ना?
4: हाँ, नहीं।
5: Just follow me.
4: थोड़ी सी पता है क्या, आप लोग इतने डिसेंट लोग लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि किसी लड़की को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना? पता है क्या, आप लोग हमें प्लीज जाने दें, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, है ना? मून आपके सारे पैसे वापस कर देगा, इजी सिंपल, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन।
6: अरे चौपाटी की पानी पूरी, पर हमें तो पैसे चाहिए ही नहीं, छिपकली।
3: हीरे कहाँ?
2: साला नाम बकलावा और इतना कड़वा, दिल कर रहा तेजाब से कुल्ली कर लूं।
1: तू एक काम कर, तू हार्पिक पी ले।
3: यार मैं तो कह रहा हूं कि यार इसको चार्ज करो, बकलावा फोन करेगा तो ये बंद।
2: अरे जानबूझ के बंद किया शकील भाई, जानबूझ के बंद किया है, रस्ते तड़पने दो, थोड़े रेट बढ़ाते हैं। कितने पैसे मांगे?
3: नहीं, मैं कहता हूँ पैसे वैसे छोड़ो, एक दो तेल के कुएं मांग लेते,
1: एक तो जहाज भी मांग लेते,
2: दो चार महल भी मांग लेते, 70-80 टन सोना भी मांग लेते। ये शेख है आमिर लाकर, सिर्फ कैश की ऑप्शन है हमारे पास, कैश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों उनसे ही कह रहा हूँ, तू बता।
1: देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी से जो भी देगा ना, चुप करके रख लेंगे, वैसे भी टाइम कम है हमारे पास।
2: अबे हीरे बेच रहे हैं सिग्नल पे फूल, जितने खुशी से दे देगा रख लेंगे। अरे भाई रहने दे यार तू, मैं खुद ही कर लूंगा, इस डील के बीच में तू मत पड़, तेरे जितने पैसे होंगे ना तेरे मुंह पे मारेंगे एंड में।
3: हाँ तेरे मुंह पे मारेंगे गरीब लोग।
1: हेलो,
12: कल सुबह 10 बजे अटलांटिस फैक्ट्री आ जाना।
1: कौन बात कर रहा है, कहाँ जाना?
6: क्योंकि हीरे तुम्हारे पास हैं।
2: नैना,
8: नैना,
2: नैना,
3: और लड़कियां हमारे पास। अब जल्दी से गूगल खोल और यहां पहुंच।
6: ले आ लौंडियां।

0: वहां से कैसे निकलवाएंगे चोर?
1: तुझे तो पता होगा ना कि आंटी लॉकर कहाँ रखती है। मैं सोच रहा था कि
2: अबे जेम्स बॉन्ड, तू अपनी प्लानिंग बंद कर दे यार, तेरी मेहरबानी। बच्चा अगवा करवा दी यार तूने। मून तू सोच यार, मैं भी सोचता हूँ।

0: अब मैं कुछ कहूं, नैना भी उन लोगों के पास है शकील भाई।
1: इन्हें ऊपर रख देना ठीक है, और फिर रूम की कीज मुझे दे देना। थैंक यू।
2: गाइस हर फोन स्विच्ड ऑफ।
3: कोई आंटी को देखा कहीं? आंटी जी कब से ढूंढ रहा हूँ आपको।
1: और मैं परी को कब से ढूंढ रही हूँ। परी परी
3: हाँ परी परी ने ये भेजी आपके लिए, डायमंड की रिंग है, संभाल के रखना सेफ के अंदर।
1: लेकिन ये लोग खुद कहाँ हैं? फोन भी बंद आ रहा है उसका।
3: वही आंटी जी, वो लड़कियों की लास्ट मिनट शॉपिंग यू नो, आ रही है, आ जाएगी
0: बस। तो
1: उसे कहो मुझे फोन करे।
3: हाँ जी।
0: आंटी को पता लगने से पहले परी को घर लाना होगा।
3: रुक, इसको बंद कर।
1: कौन है?
4: रिंग रख दी सर पे आपने?
1: बस दो मिनट देना बेटा।
4: टेक योर टाइम जी।

0: इसके तो फेफड़े जल जाएंगे।
1: हाय, सुबह से सिगरेट तक पीने का टाइम नहीं मिला। कल शादी है, फिर परी चली जाएगी। इतनी मुश्किल से पाल कर बड़ा करो और फिर कोई उल्लू का पट्ठा आता है, दो दिन में आई लव यू बोलता है और आपकी बेटी को ले जाता है। लुक एट हिम एंड लुक एट हर, जैसे हूर के साथ लंगूर। पता नहीं परी ने क्या देखा उसमें, क्या पता दिल का अच्छा हो।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: तूने कौन नहीं मिलाया वीडियो भी बना है यार
1: अब क्या करें मुझे लगता है लॉकर ही उठा लेते
0: अरे कोर्ट का क्या करेंगे
1: लॉकर तो उठा लेना फिर कोर्ट को भी देख लेना
0: कोई
1: जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी ज

ना ये तो कपड़े उतार शर्ट में टैटू भी है इसका देखो सूरज बना हुआ टैटू कितने बाल है इसके अबे जाना

0: 가요. 아주 저기 봐. 아주 잘하게 잘하게. 할 말이 많겠어. 할 말이 많겠어.
1: 저 오빠 안 잘리가 리 아저씨 와피스 미라 가면 왜 간다 잘리 가루 꼴이 니 받아 또 또래 वीडियो 니 बनाई थी तुझे किसने कहा था पीछे से आवाज देने के लिए आंटी सामने आ गई कद्दू कुछ नजर नहीं आया तू तू 000 ट्राई कर अबे 111 000 999 सारी ट्रिपल ट्राई कर ली नहीं खुल रहा
2: हां सारे ट्रिपल ट्राई किए
1: अबे तू रोक मूड मैं इसको तोड़ के खोलूंगा शकील भाई रोक गाड़ी रोक जल्दी रोक रोक अबे रोक दे
3: अबे हां
1: पत्थर पत्थर पत्थर पत्थर अरे मूड पत्थर ढूंढ अरे शकील भाई पत्थर ढूंढो
2: अरे संजय करेगा क्या
1: अरे चुप शकील भाई अबे तेरी मैं तो
3: अब तो इसका कोड आंटी बताएगी
1: हो गया हो गया ठीक हो ना
3: चुप कर
4: आपा है ना कितना मजा आ रहा है सब लोग एंजॉय कर रहे हैं देखें डांस हो रहा है
5: भाभी कहाँ बैठी हैं आए ना बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हैं
6: हाँ मैं आती हूँ आप जाओ
5: अरे मून बेटा कैसे हो
1: जी आज ही बैठो बैठो
3: आंटी जी वो परी ने रिंग वापस मांगी थी वो कोई और डिजाइन पसंद आ गया उसको
6: दिस गर्ल इज सो कंफ्यूज्ड और उससे जरा पूछना बारात से पहले घर आ जाएगी लेट मी गो गेट द रिंग
7: सोनिया रिलैक्स लिसन लॉकर प्रोटेक्टेड है कोड लगा हुआ है और वो सिर्फ आपको मालूम है राइट वो कहीं भी खुलवाने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा रिलैक्स और वैसे भी अलार्म है उसमें तुम देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा मुझे बताइए था ही क्या उसमें ज्वेलरी थी ना ज्वेलरी जान का सबका संग रिलैक्स सोनिया रिलैक्स देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा प्लीज फोन लो आ गया उठाओ ना
6: हेलो
8: तुम्हारी बेटी और लॉकर दोनों हमारे पास है कोड बताओ और बेटी ले जाओ कोड बताओ
6: परी
8: बताओ कोड
6: परी किडनैप
8: बताओ ना
1: क्या
6: परी
1: इधर देख हेलो सॉरी आप कौन बात कर रहे हैं हेलो मून अबे अबे आंटी को फोन
8: अबे आंटी को फोन दे मून
1: सोनिया अबे क्या कर रहा है मून अबे भेड़ के आंटी को फोन हेलो अरे ये किधर फंस गए शकील भाई क्या बकवास
3: अंकल आप आंटी को संभालिए
1: ठीक है
3: परी को मैं वापस लेके आता हूं
1: ये सब माओ का दिल इतना कमजोर क्यों होता है कोर्ट बताकर बेहोश हो जाती बुट्ठी
2: आए मैं तो कहता हूं ये कोर्ट वोट का चक्कर छोड़ो ऐसे ही दे देते हैं देखो ना इतने बड़े गुंडे

0: लड़कियां उठाई हैं, इसको भी खोल लेंगे।
1: सही कह रहे शकील भाई, सही सही कह रहे ना मोहन।
2: यार खुल जाता तो अच्छा था, उन्होंने तो सिर्फ हीरे मांगे, जेवर तो बच जाता, लेने के देने पड़ गए यार।
1: अबे तू कैसा घटिया आदमी यार मोहन, वहां नैना और परी पता नहीं किस साल में, और तुझे ज्वेलरी की पड़ी, शर्म कर यार।
0: अजीब आदमी है तू।
2: मैं तो सिर्फ कह रहा था कि हीरे।
1: क्या क्या कह रहा था?
2: कुछ नहीं,
1: बस अब जल्दी से सुबह हो जाए यार।
0: हाँ यार।

0: अरे उठो
1: हाँ, हाँ।
0: चलो चलो चलो चलो चलो शकील भाई चलो उठ जाओ आज आराम से देख आज आज आज चला जाओ चलो

0: उधर पहले तो उधर ना
1: फट रही है ना।
2: और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग हीरे लेने के बाद हमें छोड़ देंगे।
0: तो फिर एक वादा करते हैं, अगर आज हम यहां से जिंदा बच गए ना तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे आज के बाद।

0: Sir, we found the location.
1: यार वैसे हमारा कोई बैकअप तो होना चाहिए था।
2: सुनो एक काम करते हैं,
1: क्या
2: तुम लोग अंदर जाओ, मैं बैकअप पे खड़ा
3: हूँ। चलो अंदर।
2: अरे मैं तो पहले ही कह रहा था अंदर चलो, तुम लोग खड़े बातें कर रहे हो यार।
3: कैरन चलो
2: चलो चलो चलो चलो।
1: सलामुअलैकुम।
2: हीरे कहाँ हैं?
1: लड़कियाँ?
3: हाँ लड़कियाँ कहाँ हैं?
4: ए शाने बहुत जल्दी रे तेरे को।
2: नहीं भाई वो बात दरअसल ये है कि कल इस बेचारे की शादी है।
4: तो बारात यहीं ले आते, अग्नि पे फिरा देता इसे।
2: हीरे कहाँ हैं?
1: हीरे इसमें माय बाप।
2: खोल
1: भाई वो कोड नहीं पता।
4: अच्छा शान है, लॉकर तेरा, हीरे तूने इसमें रखे और तेरे कोई कोड नहीं मालूम, ये ला समझा क्या?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो भाई कुछ नहीं समझा, वो ये लॉकर भी हमारा नहीं है।
4: साले तेरी तो
2: बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई, दो मिनट दे दे, दो मिनट मैं पूरी कहानी बताता हूँ भाई। ये दो मिनट की कहानी दस मिनट में सुनाएगा। ओए तू तू सुना।
1: मैं देखिए ये लॉकर है, ये इसकी सास का है
5: मेरी,
1: और कोड भी उन्हीं को पता है। हाँ। लेकिन वो बता नहीं सकती।
2: गूंगी है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं वो बेहोश है ना।
5: बेहोश
2: क्या?
1: हाँ वो
5: भाई भाई भाई भाई मैं बताऊँ?
2: तू बता
5: भाई। जब हमें ये हीरे मिले ना तो मुझे लगा कि हमें इनको किसी सेफ जगह पे रखना चाहिए।
1: हाँ।
5: तो मैंने ये हीरे उठा के अपनी सास को दे दिए।
1: हाँ।
5: मेरी सास ने हीरे उठा के इस लॉकर में रख दिए।
1: हाँ।
5: अब मेरी सास को थोड़ी पता है कि वो लॉकर में हीरे रख रही है, क्योंकि अपनी सास को ये हीरे देने से पहले ना मैंने ये हीरे ज्वेलरी के डिब्बे में डाल दिए। तो ज्वेलरी के डिब्बे में हीरे और हीरे डिब्बे के लॉकर में और लॉकर के अंदर है डिब्बा, डिब्बे के अंदर है हीरे, हीरे डिब्बे में ये सास को नहीं पता, तो इसीलिए डिब्बे के अंदर आपके हीरे महफूज है।
4: तो लॉकर में क्या है?
5: हीरे।
4: लेकिन हीरे तो डिब्बे में।
1: अरे तो हीरे तो डिब्बे में ही है ना।
2: तो डिब्बा लाना चाहिए था ना सालो। ओ यार मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे बताने दो। देखो भाई को गुस्सा आ गया।
1: सॉरी
2: भाई मैं बताऊं।
4: बस ओए बस, बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। ठाकरे एक कोड़ा सारा सच बाहर आ जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं,
4: मेरे को सुननी है कि साली असली कहानी है क्या। बोल तू बोल।
2: थैंक यू भाई थैंक यू। ये जो लॉकर है ना ये इसकी सास का है।
4: अबे इसकी सास की माँ की।
2: अरे भाई भाई भाई बात कंप्लीट होने दो ना, बात कंप्लीट होने दो। देखो ये इसकी सास का है और उसकी बेटी को आप उठा कर ले आए, जब उसको पता चला तो वो बेहोश हो गई। अब अगर उसके होश आने का हम वेट करते तो यहाँ आने के लिए लेट हो जाते, तो हमने सोचा कि हीरे सबसे पहले आपके पास पहुंचने चाहिए, तो हम ये ले आए। और माशाल्लाह आप इतने बड़े गुंडे हैं, एक गोली चलाएंगे साले का पेजा बाहर आ जाएगा।
1: सही
4: ओए,
1: सही कह रहे।
4: कोई होशियारी तो नहीं कर रहा ना तू?
1: नहीं नहीं बॉस,
2: नहीं नहीं
1: नहीं नहीं, नहीं, नहीं। होशियारी बंदूक के आगे कौन होशियारी करेगा बॉस? आप बोले तो अपना फोन और ये वॉलेट ये भी रख देता हूँ, कराची में तो आदत है।
4: साले डेढ़ो शियार, तुझे क्या लगा था अलार्म बजते ही लॉकर से पुलिस बाहर आ जाएगी? हैं साले चूहे।

0: इतनी फायरिंग क्यों हो रही है? मेरी शादी थी यार, मैं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें? अजीब आदमी है, इतनी जोर से मारा मेरे सर पे घोबड़ा बन गया। पहले मेरे पांव पे लगा।
2: अरे यार शकील भाई, तो बिल्कुल सही हो गए, ये तो अकला ही नहीं रहे।
1: पर ये गोलियों की आवाजें क्यों नहीं आ रही? के सारे लोग घर चले गए।
3: ओ यार लगता है शकील भाई बहरे हो गए।
1: अबे तुम लोग मुंह क्यों चला रहे हो?
2: बोल बोल बोल।
1: अरे अरे सुनो
4: नैना।
1: अरे
2: शकील भाई आप यही रहना, बहुत फायरिंग हो रही है, अपना ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ।
1: क्या
5: ओ शकील भाई, आपने इधर ही रहना है, ठीक है? आप लोग आ रही है लड़कियाँ छुड़ा के, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है।
1: पेशाब करने जा रहा है यार, ये कमाल है यार, पेशाब करने जाओगे तो लड़कियों को कौन छुड़ाएगा?
2: हाँ,
1: ओ परी,
0: ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ

0: स्टार्ट नहीं हो रही यार।
1: हमें तो किसने कहा था 2017 में 1960 की गाड़ी रखने के लिए पागल।
2: अबे फास्ट एंड फ्यूरियस में तो ठीक चलती है।
1: अबे तो चला ना।
3: क्या बात हो रही है,
1: चुप कर मेरे।

0: वैसे इतनी टेंशन ले रही थी। रिलैक्स रहा करें।
1: स्माइल प्लीज।
2: आज हम आखिरी बार साथ हंस रहे थे क्योंकि हमने वादा किया था कि अगर जिंदा बचे तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। मून की तो हो रही थी हैप्पी एंडिंग और हमारी पाकिस्तान में लैंडिंग। मनहूस हीरो ने सबको जीरो कर दिया। इकबाल ठाकरे की हड्डियों के साथ साथ उनके भरम भी टूट चुके थे। पुलिस ने कूट कूट कर शेख की असलियत भी उगलवा ली और अब सुल्तान अल बकलावा अपनी शाही तशरीफ सोने पर नहीं बल्कि जेल के गंदे पॉट पर जमाता। पर ऑफिसर फ्रेडरिक अपनी जिद का पक्का है, हीरों के मिलने तक उसकी तलाश जारी रहेगी।
3: एक्सक्यूज मी, आमिर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। बेटा सब कुछ तो चोरी हो गया था, बस ये एक बॉक्स मैं लॉकर में रखना भूल गई थी।

0: and let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसेस आगा रिचवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
4: Rah Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karda mithai, cakes, biscuits and snacks. वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट राहत बेकर्स.ca।

0: बड़ी देर के बाद जो है वो डांस करने को दिल किया है। इतना मजे का गाया है सामिया ने, बहुत अच्छे। शाजिया मंजूर साहिबा ने भी इसको बहुत अच्छा हक अदा किया इसको गाने का, के पूरी दुनिया में ये सुपर हिट हुआ। और सामिया आपने भी बहुत अच्छा गाया,
1: थैंक यू सो मच,
0: जस्ट लव दिस परफॉर्मेंस।
1: थैंक यू, थैंक यू।
2: मलकू स्टूडियो सीजन 1।

0: परदेसी है ना कहीं के टुर गई है।
1: फिलहाल तो नहीं आई।
0: फिर ठीक है,
1: पर यार सानू भी टाइम दे दिया कर।
0: दे दिंदे आ तेनू टाइम, चाह पिलानी पाऊगी।
1: चाचा जी दो स्पेशल चा।
0: आज स्पेशल चा मैं प्यार है। खैर है,
1: स्पेशल बंदा जो आया मेरे को।
0: स्पेशल बंदा तो हले आना है। आज लेट नहीं होगी वैसे थोड़ा जा?
1: ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ।
0: ਮੈਂ ਤੇ ਘਬਰਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲੱਗਦਾ ਟੂਕੀ ਹੋਣੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ।
1: ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ
0: ਯਾਰ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਘੜੀ ਲੈ ਲੈ।
1: ਨਹੀਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ।

0: इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी थी. इस गाने में बड़ी मुश्किल मुश्किल मींडे थी, बीच में जगह थी, वो चीज भी आपने अच्छी निभाई, और फिर जो उसमें वेस्टर्न बिट्स थे वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से किया. देन ऑफ कोर्स टुडे यू आर आल्सो ऑन अनदर, लाइक यू नो, इन अनदर एवटार, यू आर अ वेरी, यू नो, फ्रॉम वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम, एंड beautiful, enjoyable performance. Thank you so much for it.
1: Thank
0: it was
1: so much,
0: wonderful. Thank you
1: so much.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखें, हंसता मुस्कुराता रखें। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्बे मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर है 905-257-1342।

0: बेहतरीन वक्त है इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at Law and Personal Injury Lawyer, at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, it's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. Apne pyaron ko

0: ICC Immigration के RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारग्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही,
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
4: जी हाँ, 4165700157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब सेलेक्ट होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 4165700157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है, तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है, तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद, कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है, और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ औक़ात पता चल जाता है, बाज़ औक़ात नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ औक़ात जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी, या मेरी बेटी बैठी हुई थी, या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, ये कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं, और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है, बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें, ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, پلیز مجھے کال کریں. میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
4: بہت شکریہ انجم قریشی صاحبہ, اور منڈے انشاءاللہ آپ سے بھی بات کرتے. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی مگر آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا 90% ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

यहाँ छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: पे इस टाइम काम कर रही है। तो अगर आप सीबा के लोन से ये जो आपके सर पे लटकती हुई तलवार है इससे जान छुड़ाना चाहते हैं, आपके क्रेडिट को अफेक्ट किए बगैर आपकी इससे जान छुड़ाने में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। नंबर अगेन इज एब्सोल्युटली द सेम अर्शद भाई, 9057831922 पर मेरे से कॉन्टेक्ट किया जाए।
1: थैंक यू वेरी मच मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका, और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत
0: थैंक यू सो मच।
1: नंबर नोट कर लीजिए, अहमद मलिक साहब को अभी कॉल कर लीजिए, अगर कर्ज के बोझ तले अगर आप आ गए हैं बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कर्ज आपको माफ करवा देंगे। 9057831922 में सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन जो पहली दफा इस लीग में शिरकत कर रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड को जो तीन दफा टूर्नामेंट जीत चुके हैं दो रन से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इतवार को पेशावर जलमी और हैदराबाद के दरमियान फाइनल मैच खेला जाएगा। हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की, प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे, चार ओवर में 37 रन दिए, दो खिलाड़ी आउट हुए, लेकिन आखिरी जो उनका ओवर था जिसमें 6 रन चाहिए थे उन्होंने सिर्फ 4 रन दिए हैं, और ये मुकाबला जो है लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में हुआ। हैदराबाद किंग्स मैन ने मुकर्रर ओवर्स में 5 विकेट पर 186 रन स्कोर किए, उनके भी आखिरी 4 ओवर्स में सबसे ज़्यादा स्कोर बना था, और 4 ओवर्स तक मुकाबला तकरीबन बराबर था। आखिरी ओवर्स में तो लग रहा था कि ईजिली जीत जाएगा इस्लामाबाद, लेकिन हुनैन शाह ने कमाल की बॉलिंग की और उन्होंने 6 की बजाय 4 रन दिए, और यूँ 2 रन से इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है ये मैच हार गई। फाइनल पेशावर और जहाँ इस हैदराबाद जो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, जो 7वीं और 8वीं टीम जो शामिल हुई थी उनमें से एक टीम जो अब फाइनल में जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है।

0: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Studios mein aap dekhe number 416-593-0003. Ek baar phir aapke liye chalenge Mida Furniture Wholesale Gallery, Mississauga, Brampton, Scarborough, Cambridge. Char locations aapko serve karte hain. Char location ke liye ki number hai 416-901-2810. MidaFurniture.com inki website hai. Maa sath ek baar phir maujood hain. Paul Mida sahab. Mida sahab, welcome you in Radio Pakistan Toronto.
1: Thank you, Vati sahab. Radio Pakistan Toronto sunne wale sabhi bhan bhaiyon ko meri गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं, पांचवीं का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे। और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर वाइन। आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में हो सकता है हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो इधर वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी, उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवीं का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोग

0: तो चाहे एश में फर्नीचर, अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है। और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है तो एक तो फर्क ये है कि यूएस से में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल है तो उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है। तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो 2 पैसे कमा के रिजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दो वापिस कर देते हैं आपको। और वीकेंड आता है, 3-4 आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर कई बार कह देते हैं, कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं। और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मेड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 1699 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे हैं 1099। ये देखो ये है हुनर, ये आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी है वो। तो मतलब ये एक डील होगी, एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे। लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास 3 मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है।
1: बिल्कुल,
0: तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है। तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा 3000 से, एक सोफा 3000 से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलता है 4500 का, हम देते हैं 3000 का। तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए, तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में। तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810, 4169012810। थैंक यू वेरी मच जी,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए 4169012810, 4169012810, midafurniture.com इनकी वेबसाइट है। अच्छा जनाब, खबरों के करीब आ गए, आपको बता दें इनाम खरीद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकट हॉल मिसागा में, जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से। और शम्स रहमान साहब से आप रब्ता कीजिए, हज़ारों की तादाद में लोगों की यहाँ आमद मतवक़ है, और एवरी डे आपको एक गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा, इनाम घर का एवरी डे एक प्रोग्राम होगा जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो गिफ्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा बेशुमार इंटरटेनमेंट होगी यहाँ पे, स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें शम्स रहमान 4167106777, 4167106777, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। अच्छा जनाब, 24 घंटे हमारे निशात बड़े पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रियल स्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 6472957861, 6472957861। ले चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
2: Listening to CMR FM 101.3।
1: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157, 4165700157।
1: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन 3 खूबसूरत हाल 1200 तक अफराद की गुंजाइश एम्पल पार्किंग अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500 इट्स 4374252500 आइकॉन इवेंट स्पेस न्यूज के लिए दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861
4: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही उनका कहना था कि मैं ईरान की नई तजवीज से मुतमईन नहीं हूं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो किसी मुआहदे तक पहुंच पाएंगे उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ जारी जंग से मकासिद के हुसूल तक बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि अगर अमरीका इस वक्त तनाजे से निकल गया तो मसला चंद साल के बाद दोबारा पैदा हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं उन्हें तबाह कर दें या मुआहिदा कर लें इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता रोज अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन तजवीज पाकिस्तान को भेजी थी ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है उधर ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नगजाद ने कहा है कि आबनाए हुरमुस पर कंट्रोल ईरान का फितरी हक है और हम अपने इस मौकिफ पर पूरी मजबूती से कायम हैं। उनका कहना था कि आबनाए हुरमुस कोई बैनुल अक्वामी आबी गुजरगाह नहीं है और आबनाए हुरमुस अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आएगी उधर अमरीकी महकमे खजाना ने खबरदार किया है कि आबनाए हुरमुस अबूर करने के लिए ईरान को टोल फीस अदा करने वाली शिपिंग कंपनी पर सख्त पाबंदियाँ आयद की जाएंगी दूसरी जानिब अमरीकी वजारत खजाने ने आज ही 6 ईरानी शहरियों 21 कंपनियों और एक बैरी जहाज को ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है जिन अफराद कंपनियों और तजारती जहाज पर पाबंदी आयद की गई है वो ईरान के हसास प्रोग्रामों बिलखसूस तवानाई और मुमकिन तौर पर जौहरी या अस्करी सरगर्मियों से मुंसलिक हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस को बताया है कि जंगमंदी के बायस ईरान के खिलाफ कार्रवाइयाँ खत्म हो चुकी हैं लिहाजा उन्हें जंग जारी रखने के लिए कानून साजों की इजाजत दरकार नहीं है उन्होंने कांग्रेस की क्यादत को लिखे गए एक खत में कहा है कि 28 फरवरी 2026 को शुरू होने वाली लड़ाई अब खत्म हो चुकी है उधर गुज़श्ता रोज अमरीकी सेनेट ने ईरान में अमरीकी फौजी कार्रवाइयां खत्म करने के लिए पेश की गई करारदाद मुस्तरद कर दी सेनेटर एडम शिफ की जानिब से पेश किए गए वॉर पावर्स बिल को 47 वोट मिले जबकि इसकी मुखालिफत में 50 वोट पड़े ये छठी मर्तबा है कि सेनेट ने इस तर्ज के बिल को मुस्तरद किया है इससे पहले एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर का कहना था कि हम ईरान में जंग जीत चुके हैं ताहम उनका कहना था कि वो इस जंग को मजीद बड़े मार्जिन से जीतना चाहते हैं सदर ट्रंप का कहना था कि हमने सब कुछ तबाह कर दिया है अगर हम अभी निकल जाएं तो अगर वो कर पाए तो भी उन्हें तामीर नौ में 20 साल लगेंगे वाज़ह है कि खुफिया मालूमात से आगाह मुतअद्दिद अमरीकी हुकाम ने गुज़श्ता हफ्ते बताया था कि ईरान के पास अब भी व्हाइट हाउस और पेंटागन की जानिब से अवामी तौर पर तस्लीम करदा फौजी सलाहियतों से कहीं ज्यादा सलाहियतें मौजूद हैं उधर मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर के मुशीर अनवर करकाश का कहना है कि बैनुल अक़वामी कानून की दफात आबनाए हुरमुस से आजादाना बहरी आमदरफ्त की बुनियादी जमानत है एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान के किसी भी एकतरफा समझौते या इंतजाम पर भरोसा या इनसार नहीं किया जा सकता उनका कहना था कि ईरान ने अपने तमाम हमसाया ममालिक के खिलाफ जारियत की है दूसरी जानिब अक़वामे मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब अमीर सईद अरवानी का कहना है कि खलीजी ममालिक ने अपनी सरजमीन पर कायम फौजी अड्डे ईरान के खिलाफ जारियत के लिए फराहम करके इसमें हिस्सा लिया और इन अड्डों से ईरान पर मिजाइल और फजाई हमले किए गए उनका कहना था कि ईरान ने अक़वामे मुत्तहिदा के चार्टर में दिए गए अपने जायज हक दिफा को जारियत के जवाब में इस्तेमाल किया और ईरान ने इस तनाजे या जंग का आगाज नहीं किया उनका कहना था कि जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक हुए वो जिम्मेदार हैं और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون جنگی اخراجات کے حوالے سے لاگت کو کم ظاہر کر رہا ہے. اس کی اصل لاگت امریکہ کے لیے اب تک تقریباً 100 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے. دنیا میں کھاد تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنیوں میں سے ایک کے سربراہ کا کہنا ہے کہ ایران میں جنگ کے باعث کھاد اور اس کے اہم اجزاء کی ترسیل میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں عالمی سطح پر ہر ہفتے تقریباً 10 ارب افراد کے لیے ایک وقت کی خوراک جتنی غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بتایا ہے کہ غزہ کے محصورین کے لیے گلوبل سمود فلوٹیلا کے ذریعے انسانی امداد لے جانے والے کارکنوں سمیت غیر قانونی طور پر حراست میں لیے گئے سابق سینیٹر مشتاق احمد کو اسرائیلی فوج نے آزاد کر دیا ہے. اسحاق ڈار نے اپنے بیان میں کہا کہ فلوٹیلا کے کارکنوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لینے اور غزہ کے محصور شہریوں کے لیے بھیجے گئے امداد کو روکنے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. واضح ہے کہ اسرائیلی فورسز نے گلوبل سمود فلوٹیلا کو غزہ سے 965 کلومیٹر دور غیر قانونی طور پر قبضے میں لے لیا تھا اور 175 کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. پاکستان سپر لیگ کے ایلیمینیٹر 2 میں ایک سنسنی خیز مقابلے کے بعد حیدرآباد کنگز مین نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو 2 رن سے ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان اتوار کو فائنل کھیلا جائے گا. اور آخر میں یہ خبر کہ کل جی ٹی اے میں گیس کی قیمت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
1: خبریں اس بار نیوز آپ کے لیے پیش کر رہے تھے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003. ایران کے سرکاری میڈیا ارنا کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے تجویز جمعرات کو بھیجی گئی ہے. مذاکرات کے لیے اپنی تجویز پاکستان کے ثالثوں کے ذریعے بھیجی گئی ہے. اس سے پہلے بھیجی جانے والی ایران کی تجاویز میں جنگ کا خاتمہ اور دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت مانگی گئی تھی. سمندری ناکہ بندی ختم کرنے کی صورت میں آبنائے ہرمز کھولنے پر آمادگی اور اس کے بعد نیوکلیئر ایشو پر بات کرنا بھی تجاویز کا حصہ تھا. امریکی صدر نے اس وقت یہ تجاویز مسترد کر دی تھی. خبر ایجنسی کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے پاکستان کو تجویز پیش کرنے سے متعلق وائٹ ہاؤس سے سوال کیا گیا، جس پر وائٹ ہاؤس نے جواب دیا کہ ہم نجی سفارتی بات چیت کی تفصیل نہیں بتاتے، مذاکرات جاری ہیں. دوسری جانب ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں پاکستان ہی ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے. اس معاملے میں کئی ممالک مدد کے لیے تیار ہیں، تاہم مذاکرات میں باضابطہ ثالث کی حیثیت پاکستان کو حاصل ہے. اسماعیل بکائی کے مطابق اگر مذاکرات کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا تو اس حوالے سے باضابطہ طور پر آگاہ کیا جائے گا. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بکائی نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے ایرانی جہاز پر قبضے کو سمندری قزاقی سمجھتے ہیں، معاملہ پاکستانی ثالث کے ذریعے اٹھا رہے ہیں تاکہ زیر حراست ایرانی شہریوں کی رہائی کو ممکن بنایا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ ایران اور روس کے درمیان اسٹریٹجک پارٹنرشپ معاہدے کے تحت سیاسی، سیکیورٹی اور معاشی شعبوں میں وسیع تعاون ہے. اسماعیل بکائی نے امریکی محکمہ خارجہ کا بیان شیئر کرتے ہوئے امریکی حملے کو دفاعی اقدام قرار دینے کے دعوے کو مسترد کیا اور کہا کہ امریکی حملہ اپنا دفاع نہیں بلکہ ایران کے خلاف کھولی جارحیت ہے، لیکن بہرحال دونوں کے درمیان بیک ڈور چینل جو ہیں اس طریقے سے ڈپلومیسی جاری ہے اور ہوپ فلی کچھ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے لاہور پریس کانفرنس کے باہر یوم مزدور ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج عمران خان کی ناحق قید کو 1000 دن مکمل ہو گئے ہیں، اور کیا انہوں نے سوال کیا کہ اگلے الیکشن تک جیل ہی میں اب خان صاحب جیل میں رہنا ہی ان کا مقدر ہے. اچھا، اس میں جو 2-3 صورتحال ایسی ہے، لگتا ہے ایسے کہ کوئی پریپریشن ان کے وکیلوں کی بھی نہیں ہے، اور جس قسم کی صورتحال ہے تو بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کہیں خود بھی تو بہت سے جو اوپر کے لوگ ہیں ملے تو نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ عجیب سی جو ہے وہ منتشر قسم کی تحریک، منتشر قسم کا معاملہ رہتا ہے. اگر متحد ہو کے تمام لوگ مل کے اگر کوئی تحریک چلائیں، کچھ کریں تبھی ہے، ادروائز تو پھر یہ صرف پریس کانفرنس تک کی بات لگتا ہے محدود ہو کے رہ گئی ہے. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم کمرشل بریک پروگرام میں واپس آتے ہیں. اسٹے ٹیون.
5: صرف مارٹگیجز، دیٹس راجیو تلوار دا مارٹگیج سپر اسٹار. مارٹگیج ریزیڈنشل لو یا کمرشل، فور کسٹمائزڈ مارٹگیج سولوشنز چوز راجیو تلوار. مشکل سے مشکل مارٹگیج ہو، لاسٹ منٹ ڈیل ہو یا پھر کریڈٹ ایشوز ہو، راجیو تلوار کا وسیع علم اور تجربہ آپ کا کام آسان کر دے گا. تو یاد رکھیے، مارٹگیج ان سے مت لیجیے جو مارٹگیج بھی کرتے ہیں، بلکہ مارٹگیج صرف ان سے لیجیے جو مارٹگیج ہی کرتے ہیں. کال راجیو تلوار آف لیڈنگ ایج مارٹگیج ایکسپرٹس 9058191001 9058 81910001. License number 12374.
6: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
7: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर, सिर्फ $229 में हासिल करें 2 रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में, और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777.
2: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स
3: मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं, पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उमरा और ज्यारात की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
4: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है। दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो, इनसे रब्ता कीजिए। तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं। इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेज इनके होते हैं, साथ साथ मनी ट्रांसफर के सर्विसेज, इमिग्रेशन के सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और कमर रशीद साहब रूह रवा हैं, CEO हैं तमाम ऑपरेशंस को, और ख़ासतौर पर हज के हवाले से और उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं, वहाँ जाके चीज़ों को देखते हैं, और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है। खुश आमदीद कहेंगे कमर भाई, सलाम अलैकुम।
5: जी वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया शेपटी साहब, और आपकी वसासत से अपने तमाम सामेईन को भी बहुत सलाम पेश।
4: थैंक यू वेरी मच। पहले मुबारकबाद, बहुत ज़बरदस्त हज सेमिनार था आपका, इस पर थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की, कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए?
5: जी सर, मैं शेपटी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे, जी हाँ, PIA ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया। यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिली जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मैं एंड में मुश्किल है, तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ। और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है, टाइम आपके पास है, अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है, आप अभी 24 जून को जा रहे हैं, आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं, तो और ये भी बताता चलो कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है, उमरा के वीजे खुल जाते हैं, तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का, उमरे का, ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ, और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
4: पे कॉल कर लीजिए। एक तो 15% सेल है, प्लस आप उम्रा भी कर सकते हैं उसी दौरान में, तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं, चाहे 2 लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों, आप इनसे रब्ता कर लीजिए। अच्छा, हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है, इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह, और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी, वहाँ मैं मौजूद था, लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से, और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए।
5: जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, शक नहीं, और खुसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को, मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ, और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है, और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया, और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया इहराम अपनी तरफ से, मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ, और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपकी मोहब्बत है हमारे लिए बेशुमार, एक बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। अर्शद भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं। उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए तो यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें। और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं। और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ तो मैं वेलकम करता हूँ। हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ही आज आपको दावत दे रहा हूँ। आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब है तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर, 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें, आए मिलके बैठें और इसको डिस्कस करें।
4: 905-275-3555 रابطے کے نمبر ہے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کامران صاحب؟
5: جی میں بتاتا چلوں کہ اس میں حج کے لیے 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن مختلف دنوں کے پیکج ہوتے ہیں، اس سے میں نے آپ کو کہا آئیں بیٹھیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو کہا کہ اس کو کسٹمائز کریں، اور پاکستانی کونسل کی تمام آن لائن سروسز جس میں آپ کا ضروری ہے کہ پاسپورٹ آپ کے ہاتھ میں ہو وہ ضرور رکھیں، نائکو کارڈ کو دیکھیں وہ ایکسپائر نہ ہو، کبھی بھی ایمرجنسی میں سفر کرنا ہو تو مشکل نہ ہو، کیونکہ آج کل پاکستانی ویزا لینے میں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے 8 سے 10 دن لگ جاتے ہیں۔ تو اپنا ریکویسٹ ہے بینگ پاکستانی، اگر آپ کے پاس اپنے پاکستانی ڈاکومنٹس ہیں تو ان کو ایکسپائر مت ہونے دیجیے گا، اس کو ہمیشہ اپنی ضرورت کے لیے ریڈی رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قربانی کا ٹائم آنے والا ہے، اپنے پیاروں کو پاکستان رقم بھیجنی ہو یا دنیا کے کسی بھی حصے سے منگوانی ہو، اعتماد کے ساتھ آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ بیسٹ ریٹ کے لیے نمبر ہے 905-275-3555
4: تھینک یو ویری مچ کامران صاحب، بہت شکریہ، اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ تھینک یو، السلام علیکم۔
5: تھینک یو سر۔
4: نمبر نوٹ کر لیجیے 905-275-3555 905-275-3555۔ اچھا جناب، ایک ریسٹورینٹ کی آپ کو انفارمیشن دینا چاہتا ہوں، رجوی پلازا میں ہی ہے، چائے خانہ، یہ پاکستانی چائنیز کوزین ہے، فائن اوریجنل پاکستانی اسٹائل چائنیز فوڈ آپ کو ملے گا، ایک بار آپ وزٹ ضرور کیجیے گا۔ اور یہ تمام کوالیفائڈ شیف ہیں پاکستان میں، پی سی لاہور میں یہ شیف تھے اور 14 سال سے ان کا تجربہ ہے، اور رجوی پلازا میں گریٹ ایڈیشن ہے جناب فوڈ لورس کے لیے، اسپیشلی چائنیز کھانے والوں کے لیے، 100% حلال، فریش اینڈ اوتھینٹک فوڈ ہے، نو ایم ایس جی، نو فروزن میٹ، نو پیکٹ مسالہ ایٹ آل، اپنے مسالے ہیں اور ویری ریزنیبل پرائز بھی بہت زبردست ہیں، اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہے، ریڈیو پاکستان کا والا دیں گے تو فار شور ڈسکاؤنٹ آپ کو دیں گے، اور 4 سے 12 بجے ویک ڈیز میں اور 2 سے 12 بجے رات تک ویکینڈس پہ آپ کے لیے اوپن ہیں۔ 3920 ایگلنٹن ایونیو ویسٹ، یونٹ 30 ہے اس کا رجوی پلازا میں، اور اس ویکینڈ پہ چائنیز پاکستانی اوریجنل پاکستانی چائنیز کھانے کھانے ہیں تو آپ چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین پہ چلے جائیے۔ نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ایڈوانس بک کروا لیجیے 905-514-7877 905-514-7877 چائے خانہ پاکستانی چائنیز کوزین۔
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان ٹورانٹو ایف ایم 101.3 اسٹوڈیوز میں، رابطے کے نمبر 4165930003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔

0: name since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Dhuni Global Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 437-264-3175। इट्स 437-264-3175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए। शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकवेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई मरसद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी बेटी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना। तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है, इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही हैं, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे। और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है, दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे राब्ता करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स है, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप राब्ता कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरी डे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरी डे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल्स हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह।
2: और जनाब अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए दिया जाएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसे करते हैं, एक कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिजाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल जमान साहब। स्टे ट्यून्ड।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhaniswites.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East Lawrence Bridgemount intersection 416-757-9999 दांतों की कोई भी बीमारी हो आप एतमाद के साथ डॉक्टर फयाज अहमद कुरैशी और उनकी तजुर्बाकार टीम की प्रोफेशनल सर्विसेज का फायदा उठाइए तमाम इंश्योरेंस प्लान एक्सेप्ट करते हैं इंश्योरेंस ना रखने वालों के लिए स्पेशल डिस्काउंट रूट कैनाल ट्रीटमेंट और री ट्रीटमेंट के स्पेशलिस्ट हैं मिसिसागा लोकेशन 1110 ब्लूर स्ट्रीट ईस्ट ब्लूर और डिक्सी के इंटरसेक्शन 905-232-5678
2: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर For spiritual Sufi and Qawwali night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा डेडलाइन इज कमिंग सून अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922 इट्स 905-783-1922 SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए ऑयल चेंज टायर चेंज लाइट रिपेयर ब्रेक सस्पेंशन मफलर सर्विस इंजन सर्विसेज इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782 टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पेमेंट सजना है
5: अलकरम ज्वेलर्स अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन कड़े झुमके हार और सोने के बेहतरीन सेट्स शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स 3465 प्लैटिनम ड्राइव यूनिट 99 मिसिसागा 9058280009 It's 905-828-0009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers. Farmaish aapki guarantee hamari.
6: The team of two, just for you.
7: And Ahmad Anshala Jaffi, the team of two, just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Venkat Hall, Mississauga.
8: Fashion show, food, music, variety of stalls. Free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
7: Log on to eventsmyteamof2.com.
9: Sirf mortgages. That's Rajiv Talwar, the mortgage superstar. Mortgage residential, low, or commercial. For customized mortgage solutions, choose Rajiv Talwar. Mushkil se mushkil mortgage ho, last minute deal ho, ya phir credit issues ho. Rajiv Talwar ka wasi ilm aur tajurba aapka kaam aasan kar dega. To yaad rakhiye, mortgage unse mat lijiye jo mortgage bhi karte hain, balki mortgage sirf unse lijiye jo mortgage hi karte hain. Call Rajiv Talwar of leading edge mortgage experts 905-819-1001. 905 819-1001. License number 12374.
10: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
11: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861
6: ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 پاکستان لیے چلیں گے. معذرت دو تین منٹ لیٹ ہو گئے, فرائیڈے تھوڑا سا بزی ہوتا ہے تو اس لیے بعض اوقات ہمیں ایڈس بھی چلانا پورے پڑتے ہیں اور کچھ گفتگو بھی رہتی ہے. بلال زمان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید. بلال صاحب السلام علیکم.
12: جی وعلیکم السلام.
6: بلال صاحب یوم مئی یک مزدوروں کا عالمی دن ہے, پاکستان میں تو منایا گیا, یہاں اس طرح سے نہیں منایا جاتا, دنیا میں ویسے بہت سی جگہوں میں منایا جاتا ہے. مزدور کو اجرت پاکستان میں سنا ہے بڑھا دی گئی ہے, لیکن کیا حقوق کے حوالے سے بھی مزدور یا غریب طبقہ اپنی آواز بلند کر سکتا ہے؟
12: جی دیکھیں, جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو بنیادی ایشوز ہیں وہ ہیں ہی غریب لوگوں کے, اور جو مزدور طبقہ ہے اس کو جو ہے وہ سب سے ڈاؤن دا لین جو طبقہ ہے وہ تصور کیا جاتا ہے, اور اسی لیے حکومت نے اس کو دیکھتے ہوئے جو مزدور کی اجرت ہے وہ کم سے کم 40,000 روپے جو ہے نا وہ رکھی ہے, اور وہ ملتی ہے, اور اچھی بات ہے کہ مطلب یہ کم سے کم جو ہے نا وہ ایک ہاؤس ہولڈ کے اندر اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اپنی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں, جو کیا کہتے ہیں اپنا راشن وغیرہ ہے, اس کو پورا کر سکے. اور باقی ٹھیک ہے کہ حکومت کے بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ بھی ایسے لوگوں کو جو ہے نا وہ کیٹر کرتے ہیں, اور حکومت کا جس طرح بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اور دوسرے غریبوں کے لیے پروگرام ہے, بہت ساری جگہوں پہ حکومت ایسے لوگوں کی ہیلپ کرتی ہے. لیکن بہرحال بنیادی حقوق کے حوالے سے جو ہے نا وہ اگر کہیں پہ ہمارے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے, آپ کہیں جو ہے نا وہ سول لٹیگیشن کے اندر یا ایسے کسی معاملے کے اندر یا کسی طاقتور شخص کے ساتھ اگر آپ کا کہیں کوئی ایسا معاملہ ہو جائے, تو وہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک طبقاتی ڈفرنس جو ہے نا وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ غریب کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ انصاف جو ہے نا وہ نہیں مل پاتا, اور جو تکڑا اور طاقتور آدمی جو ہے وہ اپنے اثر و رسوخ کو اور وسائل کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا وہ بچ نکلتا ہے. تو یہ ڈسپیرٹی جو ہے اس کے اوپر بھی ساتھ ساتھ حکومت کو, آپ نے اجرت تو اس کی کر دی ہے, اچھی بات ہے, لیکن معاشرے کے اندر جب تک آپ اس طبقے کو اپ لفٹ کرنے کے لیے, اس کو اس غربت سے نکالنے کے لیے اور اسکل پروگرامز اور دوسری چیزیں جو ہے نا وہ آپ نہیں جو ہے نا وہ لے کر آتے, تب تک میں نے دیکھا یہاں پہ جو ہے نا اسکلڈ ورکرز جو ہیں, ایک تو مزدور طبقہ ہے نا, لیکن جن کے پاس اسکلز ہیں ماشاء اللہ وہ تو مطلب کہ مہینے کا 2-3 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کمانا ان کے لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے.
6: اچھا, ایران جنگ کے خاتمے کے لیے نئی ترکیب سامنے آئی ہے, ٹرمپ کا اختیار ایران سے اور جنگ کرنی ہے یا نہیں فیصلہ امریکی کانگریس کرے گی. امریکی سیکرٹری نے ایران جنگ کو پہلے ہی ختم قرار دے دیا ہے, تو کیا جنگ کا اختیار امریکی کانگریس کے پاس جانے سے امریکہ کو ایران سے نکلنے کا موقع مل جائے گا؟ ویسے صدر ٹرمپ تو کہتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں, میرا اختیار ہے.
12: جی دیکھیں بالکل, وہ تو اپنا بہت کچھ جو ہے نا وہ مانتے ہیں, لیکن بہرحال جو امریکی قانون ہے وہ تو یہی کہتا ہے کہ اب ان کو جو ہے 60 دن کے اندر اجازت لینی ہوتی ہے, چیز ہے کہ وہ خود کوئی, ہاں جی چیز ہے کہ وہ خود جو ہے نا وہ کوئی اور قانون پاس کرنے کی کوشش کریں, لیکن ابھی جو ہے نا فی الحال کی سچویشن کے مطابق تو ان کو ایک راستہ جو ہے وے آؤٹ مل رہا ہے. خود بھی بہت سارے ذرائع جو ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں, جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی مذاکرات کی بات ہو رہی ہے, جتنا جو ہے نا وہ ذکر ہو رہا ہے کہ جی آ جائیں بات کر لیں, فون کر لیں, ہم تیار ہیں, بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں, جو ہے نا وہ چینل کھلا ہوا ہے, ابھی ایک دوبارہ جو ہے وہ تجویز بھی پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ امریکہ کو بھجوائی گئی ہے. تو بہت ساری جو ہے نا وہ لوگوں کا خیال ہے کہ امریکہ خود بھی جو ہے نا اس میں سے اب نکلنا چاہتا ہے, اور انہوں نے اپنے لوگوں کو وہاں پہ بھی جو ہے نا جتنے ان کے سینیٹرز ہیں اور عوام کے اندر بھی وہاں پہ جو بے چینی پائی جاتی ہے, وہاں پہ بھی پرائسز بڑی جو ہے نا وہ اوپر گئی ہیں, اور بھی اوپر جانے کی جو ہے نا وہاں پہ ہے, تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہماری طرح نہیں ہے, وہاں پہ تو جیسی جو ہے نا تھوڑی سی بھی مہنگائی ہوتی ہے تو وہ بالکل جو ہے نا وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جی کیا ضرورت تھی آپ کو جو ہے نا ایسی جنگ کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی جس میں آپ کا کوئی لینا دینا جو ہے نا اس کے اندر نہیں تھا. تو وہ بہرحال ایک پریشر وہ بھی جو ہے نا وہ امریکی عوام کا جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر ہے, جس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس جنگ سے جو ہے نا جلد از جلد جو ہے نا وہ نکلیں. تو بہرحال ایک راستہ جو ہے ان کو ضرور ملا جس کے ذریعے وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو جنگ مزید کرنا چاہتا تھا لیکن اب مجھے کانگریس نے جو ہے نا وہ اجازت نہیں دی, تو اس لیے جو ہے نا وہ ہم معاہدہ کرنے جا رہے ہیں.
6: آپ سن ریڈیو پاکستان ٹورانٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم, ہمارے اسٹوڈیوز میں رابطے کے نمبر 416-593-0003 پاکستان سے بلال زمان صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک تھوڑی دیر میں آپ کی لائیو کال لیں گے. عمران خان صاحب کی ناحق قید کو 1,000 دن مکمل ہو گئے ہیں, پی ٹی آئی کے جنرل سیکرٹری سلمان اکبر راجہ نے لاہور پریس کلب کے باہر یوم مزدور ریلی سے آج خطاب بھی کیا ہے. سوال ان کی طرف سے یا ہماری طرف سے یا لوگوں کی طرف سے کہ کیا اگلے الیکشن تک جیل ہی اب عمران خان صاحب کا مقدر ہے, اور کیا اس حوالے سے کوئی غیر تحریری معاہدہ پہلے ہی پی ٹی آئی قیادت کر تو نہیں چکی؟ بلال صاحب
12: یہ دیکھیں جو ظاہری حالات ہیں نا وہ کچھ اسی طرح کی پکچر پینٹ کرتے ہیں. یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کوئی مطلب ان کے علم میں یہ بات ہے, لیکن باہر جو لوگ ہیں جس میں بیرسٹر گوہر ہیں, سہیل آفریدی ہیں, ये लोग आए तो बड़े एंथुजियाज्म के साथ थे. आपको याद होगा कि जब अलीम इन गंडापुर को हटाया गया था
6: जी, बिल्कुल सही,
12: तो लगता था कि अब तो बस मतलब ये कि देखें 2024 नवंबर की तारीख थी जब ये लास्ट जो एहतजाज था, एक बड़ा एहतजाज पीटीआई की तरफ से सामने आया था. उसके बाद तो कोई बड़े जलसे भी जो है वो पीटीआई की तरफ से सामने नहीं आए. केपीके के अंदर कहीं पे वो ऐसा कोई बड़ा क्राउड जो है वो नहीं इकट्ठा कर सके जिसको आप सेलिब्रेट कर सकें. फिर उन्होंने एक वो इमरान खान की रिहाई की फोर्स बनानी थी, उसका जो है ना मतलब क्या उसकी रजिस्ट्रेशन हुई, किसने करवाई, कितने बंदे उसके अंदर रजिस्टर हुए. तो जमा कहते हैं ना जुबानी जमा खर्च जो है वो सिर्फ नजर आता है क्यादत की तरफ से. और अब पीटीआई की अपनी जो मतलब के जो आप कह लें कि कुछ लोग जो इमरान खान साहब के बड़े करीब थे वो अब जो है ना वो सवाल ये उठा रहे हैं कि आया जो क्यादत बाहर मौजूद है जिस तरह के सोहेल अफरीदी हैं और दूसरे लोग हैं, ये चाहते भी हैं कोई तहरीक जो है ना वो रन करना या नहीं जो है ना वो चाहते. अलीमा खान की तरफ से भी हमने जो है ना वो देखा है कि सिर्फ बयानात की हद तक, लोगों को कॉल करने की हद तक जो है वो मामला है, लेकिन कोई इतना सीरियस जो है ना वो देखें 1000 साल का मतलब 1000 दिन का मतलब है कि 3 साल से ऊपर जो है वो खान साहब को जो है ना वो हो गए हैं जेल के अंदर. तो एक बड़ा जो है ना वो टाइम पीरियड है. 4 साल बाद तो वैसी हुकूमत जो है ना वो अपना टाइम पीरियड जो है ना वो पूरा
6: बिल्कुल
12: पूरा कर लेती है.
6: अच्छा
12: तो लगता है कि कोई इस तरह का फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी तय है कि इस इलेक्शन तक जो है ना वो खान साहब नहीं आएंगे.
6: ठीक. अच्छा अभी सोहेल अफरीदी साहब की बात की आपने, वो कहते हैं सुबह को इसके हक की गैस ना मिली तो आवाम के साथ मिलकर एहतजाज करूंगा. उन्होंने मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा गैस पैदा करने वाला सूबा होने के बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग का शिकार है. क्या सूरत ओवरऑल कैसी है, क्या ओवरऑल गैस की केपी में लोड शेडिंग बाकी जगहों से ज्यादा हो रही है?
12: जी देखें, जो इस वक्त गैस की लोड शेडिंग है वो तकरीबन हमने सर्दियों के महीनों में देखा था कि जब गैस की जरूरत ज्यादा होती है. गर्मियों के अंदर हुकूमत की पहली प्रायोरिटी जो है वो इंडस्ट्रीज होती है, और ये हुकूमत पहले ही वाजे कर देती है कि जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर खपत भी ज्यादा होती है और हमारे यहाँ पे सर्दी भी दो महीने तो बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उसमें हुकूमत की कोशिश होती है कि लोगों को कम से कम गीजर के लिए और इलेक्ट्रिक हीटर के लिए. मैं खुद मतलब कि जितनी देर भी हम लोग सर्दियों में कोई ऐसी तंगी नहीं थी, लेकिन गर्मियों के आते ही जैसे ही यूजेज कम हुआ है कि अब सिर्फ चूल्हे जलाने हैं आपने और तो कोई आपका और तो कोई मतलब यूज ही नहीं है, तो अब वो चूल्हे जलाने के लिए भी जो है सारा दिन जो है ना वो गैस अवेलेबल नहीं होती, तो वो आपको हैरत होती है कि कहाँ इतनी गैस जो है ना वो चलेगी. लेकिन बहरहाल हुकूमत जो है वो इंडस्ट्री को जो है ना वो प्रायोरिटी देती है, तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके साथ जो घरेलू एरियाज जो है ना वो लगते हैं वहां पे सारा सारा दिन भी अवेलेबल है. उसके अलावा जो बाकी मार्केट के जो एरियाज हैं वहां पे जो क्या कहते हैं अपना हुकूमत की प्रायोरिटी होती है कि लोग सिलेंडर वगैरह जो है ना कमर्शियल सिलेंडर वगैरह यूज करें, तो वहां पे जो है ना वो लोड शेडिंग ज्यादा की जाती है. और नॉर्मल एरियाज के अंदर जो है ना वो नॉर्मल जो हुकूमत की एक रूटीन है सुबह 5 बजे से लेके 9 बजे तक, और फिर जो है ना वो 12 बजे से लेके 2 बजे तक, और फिर शाम 5 बजे से लेके 9 बजे तक, ये टाइमिंग है. इस टाइमिंग के अंदर जो है ना वो गैस अवेलेबल होती है.
6: अच्छा, वफाकी वजीर तवने अवैस लगारी कहते हैं गुज़श्ता रोज हमें LNG गैस मौसूल हो चुकी है, बिजली की लोड शेडिंग का वो कहते हैं मुकम्मल खात्मा हो गया है. हुकूमत लोड मैनेजमेंट को आवामी रिलीफ मैनेजमेंट का नाम भी दिया था, तो क्या इस बार हुकूमतें आवाम को बिजली के बिलों में भी रिलीफ देंगी लगता है आपको?
12: जी देखिए, पिछले साल जब ये नई PTM की हुकूमत आई थी तो मरियम नवाज ने भी जो है वो वजीर आला बनते ही एक अच्छे रिलीफ का जो है ना वो ऐलान किया था. और जरूरत होती है जब गर्मियों का महीना आता है तो आपको पता है कि लोड जो है वो बढ़ जाता है, ना चाहते हुए भी पंखे लाइटें और ये मतलब ये कूलर वगैरह ये चीजें जो है ना वो चलती हैं, तो जो आपका जो कंज्यूमर होता है जो अपने कोशिश करता है कि उसका बिल 100 यूनिट से 200 यूनिट से कम रहे, वो भी जो है ना वो ना चाहते हुए उसको उससे जंप जो है ना वो करना पड़ता है, उससे बाहर निकलना पड़ता है, और उससे आपका जो बिल है वो एक्सपोनेंशियली जो है ना वो आपका वो ज्यादा आता है. तो अब हुकूमत जो सोलर की नई पॉलिसी लेकर आया है वो भी बड़ी अजीब है कि एक तरफ जो है वो सोलर सार्फिन जो है वो आपको 4000 मेगावाट जो है वो बिजली मुफ्त और सस्ती जो है ना वो पैदा करके दे रहे हैं, लेकिन उसका भी सारा बोझ जो है वो आपने सार्फिन के ऊपर जो है ना वो डाला हुआ है कि वो जो आपको 4000 मेगावाट मिल रहा है वो आप 13 रुपए यूनिट में उनसे खरीद रहे हैं, और आगे आवाम को वही जो यूनिट्स हैं वो 40-40 रुपए में जो है ना वो दे रहे हैं. तो अगर कम से कम जो है ना वो आप इतनी कमाई जो है वो लोग वहां से कर रहे हैं तो उसके जरिए जो है वो आवाम को कोई ना कोई रिलीफ जो है वो जरूर मिलना चाहिए.
6: चलें कॉल्स की तरफ चलेंगे जनाब. स्टूडियो में रابطे के नंबर 416-593-0003. फर्स्ट कॉलर है 6910. आप ऑन एयर सर. 6910 6910 आप ऑन एयर सर, बात कीजिए.
13: वालेकुम
6: जी. वालेकुम सलाम.
13: है ये कि दिन ब दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये तो बड़ी एक अजीब सी तजर्बा किया गया है पूरी दुनिया में, खाली पहली दफा नहीं हो रहा, हम तो खैर इससे हुई संभाल है। ये हमेशा रिपब्लिकन जब भी बैठते हैं कोई ना कोई नई गेंद छेड़ते हैं, एक हिस्ट्री है तो। और उसका सबसे ज्यादा नुकसान गरीब मुल्कों को होता बहुत है ये कि लगता है ये गुर्बत की जगह गरीब खत्म करने के चक्कर में लगे रहते हैं नए नए। हालांकि पोप ने भी बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि बिगाड़ने में तो सेकंड लगते हैं लेकिन बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला इन लोगों को भी हिदायत दे जो कि इस टाइप के लोग हैं। और पाकिस्तान के हवाले से तो फिर वही है कि हाँ कुछ बेहतरीन नजर आई थी, लेकिन अब है ये कि जब तक ये जंग के आसार खत्म नहीं होंगे और अल्लाह कह रहे पाकिस्तान कम अज कम इसमें अपना एक फायदा तलाश कर लेके एटलीस्ट के जो इन्होंने ईरान से राहदारी खोलने की कोशिश की है तो ये एक अच्छा है कि कम अज कम पाकिस्तान को अमेरिका से ये तो करनी चाहिए कि भाई ठीक है आपको लड़ना लड़ते रहे लेकिन हमारे लिए ये फ्री हैंड दे दे कि हम कम अज कम ईरान से अपने तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई ले ले। तो मैं समझता हूँ शायद अभी जो लग रहा है कि फिलहाल जो गैस पेट्रोल इतना महंगा हुआ है लेकिन पाकिस्तान में उस जैसी कीमतें नहीं पड़ी तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया में भी पढ़ने के बड़े चांसेस हो गए खबरों में आया था और पूरी दुनिया ही, यानी कि यहाँ तो खैर जो हो ही रहा है गैस की प्राइसेस और इवन अमेरिका का भी, यानी कि खबर आने के डॉलर पर गैलन तो ये तो बहुत
6: बड़ा वो है। थैंक यू सर,
13: बहरहाल
6: बहुत शुक्रिया,
13: अल्लाह ताला जो है
6: ठीक। थैंक यू। 7997 सर आप ऑन एयर हैं। 7997
14: कैसे हैं आप? ठीक
6: जी, शुक्रिया सर, थैंक यू।
14: मैं एक दो बात पूछना चाहूंगा आज। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सालिसी का सालिस जो होता है, जो मेडिएटर होता है, वो इंसान होता है या वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसकी अपनी दोनों तरफ बड़ी ग्रिप होती है, वो दोनों को समझाती है कि भाई ये नहीं ऐसे करना है और किसी डिसीजन पे लाती है।
6: जी।
14: तो एक तो सालिसी होता है और एक होता है वो मैसेंजर होता है कि इधर का मैसेज पकड़ा उसको पहुंचा दिया, उसका मैसेज पकड़ा इधर पहुंचा दिया। मेरा सवाल ये है कि हमने काफी, हम बहुत दफा पाकिस्तान में लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती है गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से। अभी ये 10-15 दिन या 20 दिन जितने दिन इस्लामाबाद बंद रहा है ये तो वो कंट्री वाले ही जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। बाकी जो ये गैस वैस का जो मामला है, अभी जो बता रहे हैं कि 15 या 13 डॉलर का ये रुपए का लेते हैं और 40 रुपए का देते हैं, तो क्या ये स्टेट पब्लिक के लिए, क्योंकि अभी ये मजदूरों का दिन मनाने लगे ये, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने मुल्क में इंसाफ और अपने मुल्क में अपने लोगों के लिए ईमानदार उनके साथ नहीं है तो आप बाहर जाके लोगों की नेगोशिएशन कराते फिर रहे हो। पहले अपने मुल्क को तो ठीक कर लो, एक तो बात ये थी। दूसरी आखिरी बात में जो कहना चाहूंगा कि जो भी लोग हैं इसमें, ये जो अभी जो भी कंट्री में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार पॉलिटिकल गवर्नमेंट है या फौज है, अगर कुछ नहीं होता प्रॉब्लम सही ठीक नहीं होता,
6: ये मैंने अब
14: ये इनसे जो सवाल पूछा है मैंने जवाब दे दिया।
6: किसी को वो एक मुनीर नियाजी का शेर है, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। 5794 सर आप ऑन एयर हैं। 5794
15: अस्सलाम वालेकुम जनाब। बट्टी साहब ये देखें

0: साल से देखे, शायद ईरान को तो हम मना ले, अब अमेरिका को मनाना तो बड़ी मुश्किल बात है।
1: जी जी।
0: तो बात वही होगी जो आपस में बैठ के इन लोगों ने अपनी शरायत तय करनी है। और पाकिस्तान का मसला है कि वो हमेशा इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी और हमायती करेगा ईरान की। तो बाकी रह गई बात भट्टी साहब, इसमें हम ये कभी भी नहीं कहते कि जनाब पाकिस्तानी गवर्नमेंट लोगों के साथ, लेकिन अब यहाँ देख ले, अब यहाँ नहीं, कल भी आपने बताया तकरीबन 400 रुपए के मुतरादब हमारा भी पेट्रोल हो गया, अब हमारा क्रूड ऑयल भी है, हमें क्या गवर्नमेंट कनाडा ने दिया है, कुछ नहीं। ये देखें, ये सरमायादार जागीरदार, इनका नुकता नजर और इनका लूटने का वारदात तरीका एक ही होता है। बाकी रह गई भट्टी साहब, हाँ साहब ने तमाम पते अपने जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए हुए हैं। अब एक ही बात है, अब वो भीख मांग रहे हैं अदालत से, यार कभी मुझे जमानत दे दे, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आ जाऊं। भट्टी साहब, कब से मैं कह रहा हूं, पॉलिटिशियन वही होता है जो अपने आप को बचाता है, अपनी पार्टी को बचाता है। नवाज शरीफ आपके सामने मिसाल है, 3 दफा क्या उसके साथ इससे ज्यादा नहीं ज्यादती की गई यार। जिस वक्त 2 रुपए की रोटी और 5 रुपए का जनाब आपको मुफ्त चीजें मिल रही थी, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए आपको चीनी मिल रही थी, उसके साथ मुल्क के साथ बगाड़ किया गया ना, और जिन लोगों ने किया आज वो उसी पे परेशान है और पिशेमान है। तो इसलिए सियासत करनी चाहिए मुल्क के खिलाफ, जो लोगों का इंडिया हो जाए, इसराइल हो जाए या अफगानिस्तान, जो उनका नुकता नजर है उससे हट के सियासत करें, सियासत में वापस आए और अपने आप को बचाएं, अपने फॉलोअर्स को बचाएं।
1: सब थैंक यू,
0: इतना ना करें।
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 5415 सर, आप ऑन एयर हैं। 5415, वालेकुम सलाम सर जी। वालेकुम सलाम जनाब, मैं आप डिस्कनेक्ट हो गया, चॉइस साहब आप डिस्कनेक्ट हो गए, दोबारा कॉल कर लें। अच्छा, हमारे पास 3001 आप बात करना चाहेंगे? 0010 लास्ट 4 डिजिट 0010।
2: सर मेरा आपके सामीन से और आपसे ये सवाल है और बिलाल साहब से कि सब लोग कहते हैं कि लोड शेडिंग होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन आईपीपी के मालिक कौन है? कभी आपके किसी सामीन ने बताया
1: तो है
2: कि,
1: सर बताया तो वो सारे वही बड़े लोग ही हैं सर, आईपीपी के मालकान भी,
2: उनके नाम बड़े के नाम तो पता लगने चाहिए ना।
1: बिलाल साहब के जिम्मे लगाते हैं सर कि वो उनके नाम बताएं। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। 6141 सर आप ऑन एयर हैं। 6141, अच्छा 5415 वापस आ गए सर, आप बात कीजिए। 5415 आज जरा जल्दी कीजिएगा, टाइम थोड़ा कम है मेरे पास। 5415
3: जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ दो बातें करूंगा।
1: जी जी,
3: पहली बात तो ये है कि हमारी तरह उन मुल्कों में गवर्नमेंटों पर प्रेशर होता है। भट्टी साहब आप मुझे बताएं कि कनाडा में कितने महंगाई के खिलाफ जुलूस निकले हैं, कितने मदारे हुए हैं। आप मुझे बताएं अमेरिका में कितने मदारे हो रहे हैं, लोग कितने सड़कों पर बैठे हुए हैं दिन रात। और डोनाल्ड ट्रंप तो वो बंदा है जिसकी उम्र 87 ईयर है और उसने अगला इलेक्शन भी नहीं लड़ सकता, वो उस पर क्या आवामी सोशल मीडिया का दबाव होगा भाई। यार ये बातें मैं कहता हूँ ना, जब मैं भट्टी साहब कहता हूँ कि नियत का फतूर है, तो फिर ये नियत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाला हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूं बात। भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात, आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात करूं कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: मुझे कह रहे हैं,
3: और आपका भी कद बड़ा होगा।
1: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं
3: नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई, आप तो सवाल करते हैं।
1: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप ऑन एयर हैं। 8156, 8156
4: हेलो।
1: जी जी, आप बात जल्दी बात कीजिए।
4: देखिए आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं, 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% सरमाएदारों के पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है, मियां मंशा के चार हैं, शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी
1: चले। अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। जांगी तरीन भी, अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं बाकी कॉल

0: 6141, सर आप ऑन एयर हैं। 6141, 6141।
1: अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
0: जी वाले सलाम सर।
1: पंडित साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया, फिर जंगें आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखें, दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन? तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
0: ठीक, थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558, 9558। अच्छा, चलिए आप सुन रहे हैं। बिलाल साहब, मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाज़ी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे
2: आप? नहीं नहीं, वो तो जो है ना, कहते हैं अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज करने की, देखें एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर से जो है ना वो गुजर जाता है,
0: ठीक।
2: तो अभी जो है ना वो देखेंगे वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हकूमत की भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामलात हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ आवाम के ऊपर ही डाल देती है, तो फिर जो है ना वो बहरहाल एक जो है ना सवाल जो है ना वहां
0: जरूर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है, आप भी दो दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
2: जरूर, थैंक यू।
0: एंड लिसनर्स, आपकी कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआ में रखिएगा, हौसला नहीं हारना, बल्कि हौसला भी खोने की चीज़ है। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशर्ते जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम, पर मेज़बान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दिमाग।

Assalamualaikum, this is Naeem Tariq Yani from The Art of Investing. Thank you so very much. आपका लास्ट वीक का प्रोग्राम पसंद करने का और बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो अब मेड हो रहा है बेस्ड ऑन जो मार्केट अब आगे जा रही है. दो तीन महीने पहले या सॉरी दो तीन हफ्ते पहले हमने जो है बहुत ज्यादा डिस्कस किया था बेस्ड ऑन जो ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है उसकी वजह से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी जो है वो हमें डिफरेंस देखने में आया था. इनफैक्ट अब जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं चीज़ें जो है वो इट्स गेटिंग इन टू द प्रॉपर डायरेक्शन नाउ वी आर सीइंग दैट स्टॉक मार्केट इज गेटिंग ऑन द स्टेबल साइड एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे. इंटरेस्ट रेट कैनेडा में भी और यूएस में भी जो है वो स्टेबल रहा है और उसकी वजह से जो रियल इस्टेट मार्केट है दैट इज गेटिंग इन टू अवर नेक्स्ट मोमेंटम. और हमने रियल एस्टेट मार्केट की जो है वो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था हमने दैट फॉर ऑल द न्यू डेवलपमेंट यू आर एग्जम्प्ट फॉर HST इफ यू बाय इट फ्रॉम और इफ यू बुक इट फ्रॉम मार्च अप्रैल 1st अंटिल मार्च 31st नेक्स्ट ईयर. सो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई हैं ओवरऑल दैट इज फॉर टू बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम. आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल ही मार्केट ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन क्या हुआ. सो नैसडैक वॉज अप और नैसडैक रहा 24,800 पर. बिग टेक अर्निंग्स इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दे आर बूमिंग राइट नाउ. माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नई इनोवेशन की हैं अभी. एक इनोवेशन इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके साथ अगले वीक भी शेयर करूंगा. दे हैव स्टार्ट मेकिंग अप अ ग्लास विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन और इंस्टा आपका डेटा जो है जितना वो उस ग्लास में अब स्टोर होगा इंस्टेड ऑफ USB or instead of jo hai wo hard drive mein. So they have made it not made it to public yet but this is coming in and that would be a major change for Microsoft. S&P 500 they have hitting records but struggling with the banking weaknesses. Ye hame pata hai kyunki is waqt jo hai market US mein bhi jo steady aapke paas interest rate raha jiski wajah se bank thode se jo hai wo weaker ho rahe hain US mein. Canada ka banking system jo hai wo thoda sa strong hai which is why we are very efficient in that way. TSX jo hai 33,900 which is lower and weighed down by sticky inflation data and that's exactly what we have seen. Inflation is fact jo hai wo bahut zyada different chal raha hai Canada mein and along with jo prices hai grocery or food prices hai, they are kind of jacking up. So that's what we have seen. Crude is fact jo hai is week 107 pe aa gaya right और 7% upar aaya Wednesday ko as the Strait of Hormuz remains blocked. Ab wapas Strait of Hormuz block ho gayi hai which is why crude is coming up. अच्छा जी जो हमने इंट्रो में डिस्कस किया कि मार्केट इज गेटिंग स्टेबलाइज एंड विद सेलेक्टिव स्ट्रेंथ इमर्जिंग मार्केट कोई अब पैनिक मोड में नहीं रही है कूल डाउन हो रही है और अब जो है वो स्टेबलाइजेशन और इवेल्युएशन मोड में मार्केट चल रही है. US मार्केट का ओवरऑल क्या रहा जो मार्केट बिहेवियर था दैट्स मेजर इंडेसेस राइट जो मूव साइडवेज ओवरऑल और स्मॉल गेन्स लॉसेज जो है वो देखने में आए कंसोलिडेशन फेज आफ्टर रिसेंट वोलेटिलिटी और यही पिछले चार पांच वीक से मार्केट बहुत वोलेटाइल थी एंड दैट्स द रीजन नाउ वी आर सीइंग इन अ डिफरेंट फेज. मैक्रो ड्राइवर्स जो US मार्केट के लिए रहे वो ऑयल स्टेबलाइजेशन है इट्स बीन सेटल्ड आफ्टर प्रायर स्पाइक्स और ऑयल जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है अभी भी जो हमने जैसे जिक्र किया 107 बैरल था लास्ट वीक इट वॉज लाइक 94 बैरल and that's how we are seeing it. So energy price jo hai wo Toronto stock exchange aur Toronto mein badhi hai and that's what we have seen. Inflation still in focus US mein it's not accelerating but it's still not falling fast. Interest rate expectation jo thi wo waisi rahi jaisi hai and we are not out of inflation risk yet. To inflation hai US mein aur wahan ka risk jo hai wo hai bhi wahan par. Interest rate uncertainty ye thi ki interest rate jo hai wo cut hoga ki nahi hoga lekin aaj jo is week jo news aayi iski wajah se wo स्टेबल रहा है सेम रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर रिमेन्स कॉशियस और इम्पैक्ट क्या हुआ है कि लिमिट्स अपसाइड इन द ग्रोथ स्टॉक. अच्छा जी इंडस्ट्रियल जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ पे रही है राइट रोटेटिंग इनटू रियल मनी सेक्टर इंडस्ट्रियल जो है वो वहां पे पैसा मूव हो रहा है वहां पे. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इकोनॉमिक आउटलुक और कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन क्योंकि आपकी बाइंग पावर होगी तो आप जो है वो स्पेंड करोगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इन द US मार्केट. अच्छा एनर्जी नो लॉन्गर लीडिंग टेक जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया US में और ऑयल स्टेबलाइजेशन लेस अपसाइड ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ऑयल की मार्केट जो है वो अगर स्टेबलाइज होती है तो
यूएस में वो इम्पैक्ट आता है उसकी नीचे जाने का। अगर ऑयल स्टेबलाइज होती है तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज या एनर्जी सेक्टर टोरंटो में कनाडा में ऊपर जाता है, क्योंकि हम हमारे पास एनर्जी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है स्टॉक मार्केट के हवाले से। ओके जी, टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग, नो मेजर सेल ऑफ दिस वीक और रिकवरिंग आफ्टर प्रायर वोलेटिलिटी और टेक इज होल्डिंग ग्राउंड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल फ्लो, पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ, रोटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल और स्टेबल टेक में रही और मार्केट इज स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैटलिस्ट कि नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर क्या होगा और उसमें मार्केट मूव करेगी। अच्छा जी, यूएस सेगमेंट में जो बड़ी चीज रही, एक तो फेडरल डिसीजन रहा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टडी रहेंगे 3.5 to 3.75%, नहीं मूव हो रहे वहां से। और जो अर्निंग हैवी वेट है इस वीक वो इंटेल रहा, उनकी मैसिव Q1 जो है वो रिपोर्ट आई है, और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड एज सेफ हेवन क्योंकि एआई के बहुत ज्यादा काम होने की वजह से दे आर गेटिंग इनटू अ प्रॉपर टेक स्टॉक एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इट। बैंकिंग क्रैक जो है वो रेयर आर पब्लिक डिवाइड विद इन द सेंट्रल बैंक, द अनसर्टिनिटी इज कॉजिंग ऑल सेल ऑफ द रीजनल यूएस बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर में कुछ डिफरेंस रहा यूएस के मार्केट में, क्योंकि जो है वो अगेन बाइंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन दैट साइड। टोरंटो मार्केट को डिस्कस करते हैं, TSX जो है वो स्लाइटली मोर स्टेबल देन यूएस जो हम देख रहे हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रही है, बट स्ट्रांग ग्रोथ नहीं रही है, लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स दैट। की ड्राइवर्स कौन से, अगेन ऑयल स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी सेक्टर ने लूज किया थोड़ा सा अपना जो है वो पॉइंट, लेकिन टेक TSX बिकम्स मोर बैलेंस क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा जो है वो डायनामिक्स नहीं है जिस तरह यूएस में है। सो वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर ऑयल, वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर एनर्जी इन ऑयल एंड हैविली रिलाय ऑन टेक, और जो भी हमारा इम्पैक्ट आता है वो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, विच इज वाई वी आर सीइंग इट। कमोडिटी बैलेंस, मेटल जो है स्टेबल रहा और मटेरियल सेक्टर दे आर एट द न्यूट्रल लेवल। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी जो इस वक्त चल रही है कैनेडा की, दे आर इन टू अ डिफरेंट शेप क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट आता है, एंड दैट्स वॉट उसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो उस इम्पैक्ट से गुजरती है। अच्छा जी, क्या रहा कैनेडियन में, कैनेडियन ऑडियंस जो है वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जंप हुआ 2.4% अप फ्रॉम 1.8%। देर आर लॉट ऑफ ले ऑफ, प्रॉब्ली यू हैव हर्ड अबाउट, रॉजर्स ने अपने 10,000 जो है वो एम्प्लॉयज को उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट देने का जो है वो ऑप्शन निकाला है, और मेजॉरिटी जो जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, दे प्रॉब्ली आर टेकिंग इट। दूसरा जो है वो डिफरेंट टेक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। The Canadian market from job perspective or from that perspective is not that big right now and we are seeing a lot of gaps in the market. Achha ji, TSX mein rotation kya raha, winners jo hai wo energy rahi, Suncor, CNRL aur materials mein Barrick Gold raha, oil jo hai 107 pe raha aur gold jo hai wo nearly staying near records. Canada's dirts and pipes are only thing that keeping the TSX in the deeper side. लूजर्स कौन रहे, टेलीकॉम और यूटिलिटीज, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की वजह से देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन। स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट की क्या रही कि इस वक्त ऑटवा रिसेंटली टेबल इट्स अपडेट शोइंग अ डेफिसिट ऑफ $66.9 billion और ये फिस्कल एक्सपेंशन जो है ये हाई एनर्जी कॉस्ट पे एंड इज पुटिंग कैनेडियन डॉलर ऑन प्रेशर। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इस वक्त। जो ट्रेड चल रही है यूएस वर्सेस कनाडा इज 0.73 और ये जो है वो अब प्रेशर आ रहा है कैनेडियन डॉलर पे। अगर हम यूएस तो कैनेडियन मार्केट का कंपैरिजन करें इस वक्त, सो वोलेटिलिटी में मार्केट फेस कंसोलिडेशन यूएस की है और स्टेबलाइजेशन जो है टीएसएक्स की है। वोलेटिलिटी मॉडरेट वर्सेस लोअर, लीडरशिप एक वीक है, रोटेटिंग है, लीडरशिप चेंज हो रही है, सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं वहाँ पे, कैनेडा में बैलेंस हो रहा है, राइट, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बहुत ज्यादा एनर्जी सेक्टर लीड ले रहा था एंड देन टेक वाज गेटिंग डाउन बट नाउ इट्स बैलेंसिंग इट आउट। की ड्राइवर्स क्या रहे, यूएस में इन्फ्लेशन और रेट्स रहे, यहाँ पे ऑयल एंड स्टेबिलिटी रही की ड्राइवर्स। स्ट्रॉन्ग सेक्टर इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल्स और वीक सेक्टर एनर्जी एंड एनर्जी ऑन द बोथ साइड।
अच्छा जी, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू शो यू गोल्ड प्राइस, जो कि हम हर वीक देखते हैं। इस वक्त आज की जो गोल्ड शेयर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये इस वक्त की प्राइस है, अगर ये लोड हो जाए, 423.68। ये थोड़ा सा नीचे आया है और इसको आप बिल्कुल जो है वो देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड की प्राइस से। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी सो यू विल सी इंक्रीज इन दिस चार्ट एज वेल। ETF हम देखते हैं आई शेयर का, जो है ETF, एक सेकेंड, हाँ जी, ETF हम देखते हैं यहाँ पे, और ETF की प्राइस इस वक्त है 53.42। ये इसी रेंज में फ्रॉम 49 टिल 55, दैट इज मूविंग हियर एंड देयर, लेकिन इट्स गुड इन्वेस्टमेंट क्योंकि इट विल गिव यू रिटर्न इन द लॉन्ग रन। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, दैट्स वेयर यू विल गेट मेजर रिटर्न आउट ऑफ इट। So this was it, folks. Thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Kiani. Inshallah, next week we'll see you with the different market. Hopefully, sari business sahi hona shuru ho jaye. Aur jo maine shuru mein Microsoft ki jo nayi product ke bare mein zikr kiya tha, usko zarur uske upar research kare. It's called Microsoft Silicon, and that is going to change a lot of things. Aur uski wajah se Microsoft ka jo stock hai, wo bhi aage badhega. So keep watching The Art of Investing. I'll see you inshallah in the next week. Problem.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकुट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
8: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
9: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
4: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief.
10: Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
11: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
12: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
13: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: and let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca.

0: लॉजिक के बुनियाद के ऊपर मंतक से उनको समझाना पड़ता है, इसलिए कि वो अगर वो इस हक की दावत को कबूल कर लें तो जो उसका असर आम अवामुन्नास के ऊपर होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए सबसे पहले अल्लाह ताला इस चीज का हुक्म फरमा रहा है कि उदू इला सबीली रब्बी का बिल हिक्मा, कि उनको विजडम मंतक के साथ लॉजिक के साथ समझाना होगा। फिर दूसरा लेवल है वल माओजतिल हसना, आम लोगों के लिए एक अच्छी नसीहत, अच्छी बात, बिल्कुल एक आम फहम बात हो कि जो उनके जहन में बैठ जाए, उनको ज़्यादा सोचना ना पड़े, ये होता है वाज। और फिर जो तीसरी है, फिर उस मुआशरे के अंदर ऐसे लोग भी होते हैं कि जो ना वाज को समझते हैं, ना लॉजिक को समझते हैं, ना मंतक को समझते हैं, और उनके साथ फिर वो मुजादला भी करना पड़ता है, उनके साथ झगड़ना भी पड़ता है, लेकिन इस झगड़ने में भी उस अच्छे किरदार को महफूज रखना चाहिए, वो दामन हाथ से जाना नहीं चाहिए। उसके लिए अल्लाह ताला फरमा रहा है वजादिल हुम बिल्लती ही अहसन, कि अगर उनसे मुजादला करना पड़े, झगड़ा भी करना पड़े, तो बड़े अहसन तरीके के साथ करना चाहिए। ये ना हो कि इंसान जज्बात में बिल्कुल बह जाए और गालम गलोच पर उतर जाए, ये तबलीग की हिकमत के बिल्कुल खिलाफ है। और फिर ये काम कोई आसान नहीं है, इसमें फिर अल्लाह ताला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहा है कि वस्बिर, कि आप सब्र कीजिए, वस्बिर वमा सब्रु का इल्ला बिल्ला, कि आप ये जो तकलीफें सह रहे हैं ये सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, आपकी ये जो जितनी भी तबलीग है, जितना भी ये पैगाम रसानी है, ये अल्लाह के लिए, इसके अंदर जो भी तकालीफ आपके आ रही हैं इस पर आपको सब्र कीजिए, क्योंकि आप ये जो कुछ कर रहे हैं ये सारा अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, और अगर आपका तवक्कुल अल्लाह ताला पे होगा, अल्लाह ताला के ऊपर वो यकीन कामिल होगा, तो फिर इंशाल्लाह आपको इस किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होगी और आप अपना वो फ़र्ज़ मनसबी पूरी तरह से अदा कर सकेंगे। तो ये वो मज़ामीन है ख़ास तौर पर इस पारे के अंदर जो कि हमने जिनका मुतालिया किया। अल्लाह ताला हमें इनको समझने की तौफीक अता फ़रमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल कुरआन नज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्र हकीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: तो नाज़िम, जैसे कि मैंने तफ़सीर से पहले एक जिक्र कर रहा था कि जो है अच्छे मौज़ूआत को हम चुने, बड़ी तादाद आ रही है, ये हमारे लिए दावती काम भी है तमाम मसाजिद के लिए भी, कि हमारी आने वाली नस्लों को जो है एक रहनुमाई फराम करें। और रमज़ान बेहतरीन महीना होता है कि इसके अंदर जो है हम अपनी नस्लों को और जो लोग ज़्यादा बड़ी तादाद में आ रहे हैं उन तक जो है अल्लाह के पैगाम को पहुँचाएँ, क्योंकि आम दिनों में लोग नहीं आते इतनी बड़ी तादाद में मस्जिदों की तरफ। तो इंशाल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि इमाम हज़रात और तमाम लोग जो है इस पर तवज्जो देंगे, और कल हम जो है वो इंशाल्लाह ताला 15वें सिपारे की तफसीर के साथ तमाम ऑडियंस के सामने होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

जैन, मुझे लगा कि तुमने शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था तुम्हारी आवाज में, लेकिन जिस तरह ये गाना चलता गया मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो। अंतरे में आके मुझे लगा कि तुमने गाने को पकड़ा और उसके बाद से गाना खुल गया। मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई होप कि लोगों को भी अच्छी लगे।

Coke Studio, Season 15.

0: बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर फॉर स्पिरिचुअल सूफी एंड कवाली नाइट। Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at Law and Personal Injury Lawyer. At Alam Law Office, no fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain. 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9582800009। It's 905-828-0009. Your login ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari. Apne pyaron

0: ICICI Immigration के RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवादी नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते के नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से सेट होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 416-570-0157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले अपने लॉयर के साथ। आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी या मेरी बेटी बैठी हुई थी या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, ये कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, प्लीज मुझे कॉल करें। मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, 570-0157 मेरा नंबर है। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी साहबा, और मंडे इंशाल्लाह आपसे भी बात करते हैं। थैंक यू। नंबर नोट कीजिए 416-570-0157 416-570-0157 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। सदर ट्रंप कहते हैं कि अभी भी मैं ही फैसले करता हूं, मैं ही करूंगा, कांग्रेस जो है वो फैसला नहीं करेगी। बाजी खबरें थी कि उनसे जो है अब वो क्या फैसला नहीं कर सकेंगे, उनकी ख़त्म हो गई है जो कह लीजिए अथॉरिटी, लेकिन उनका कहना है कि मेरी ही अथॉरिटी है। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही, और इसके साथ ईरान का 90% उनकी बहरी और फजाई तबाह होगी। बहुत सी बातें इस हवाले से की हैं, थोड़ी देर में से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आज की शायरी।

दूल्हा छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते, तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: थ्री। एक बार फिर आपको ले चलेंगे मिड्डा फर्नीचर होलसेल गैलरी, मिसागा, ब्रैम्पटन, स्कारब्रो, कैम्ब्रिज, चार लोकेशन आपको सर्व करते हैं। चार लोकेशन के लिए नंबर है 416-901-2810, मिड्डा फर्नीचर .com इनकी वेबसाइट है। हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं पवन मिड्डा साहब। मिड्डा साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
1: थैंक यू भट्टी साहब, और रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सुनने वाले सभी बहन भाइयों को मेरी गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। बिल्कुल मिड्डा फर्नीचर आपकी दुआओं से चार लोकेशन सेवा कर रहे हैं, पांचवी का अगले हफ्ते आपको एड्रेस बता देंगे। और रही बात आपका, ये सब कुछ संभव हुआ आपके प्यार की साथ, आपका साथ मिला, प्यार मिला, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का स्नेह मिला, और सबसे ज्यादा आपने प्यार भी दिया, अपना वैल्यूएबल बिजनेस भी दिया, जिससे हमारी हिम्मत आई, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, चार से पांच, और फिर कंटेनर बाइंग। आपको फर्नीचर हम सस्ता देते हैं, ब्रांड नेम फर्नीचर सस्ता देते हैं, और कंपेयर कराने के बाद जैसे भट्टी साहब आप भी बताते हैं कि हमारी प्राइस जो लास्ट प्राइस मिल रही होती है, हाँ बोलने देखने में, उसका हमारी वेबसाइट पे भी बच्चे लिखते होंगे अप टू 60, अप टू 80, ये तो इवन वेस्टर्न कंट्रीज का एक असूल है कि ऐसे लिखते हैं, लेकिन जितनी भी आपको लास्ट प्राइस मिल रही होती है हमारी, उससे 10% क्यों कम है कि हमें वॉल्यूम डिस्काउंट मिलता है, और जैसे ही पांचवी का वॉल्यूम शुरू हो जाएगा तो 12% को हम किसी प्राइस को बीट किया करेंगे, क्योंकि हमारा डिस्काउंट बढ़ जाएगा। और जो कंटेनर में लाते हैं, क्योंकि लोकल चाहे एशले फर्नीचर, अगर यूएस से लाते हैं तो वो अपना मार्जिन लेते हैं, क्योंकि उन्हें वेयर हाउस में यहाँ पे वो स्टॉक करना पड़ता है, और जब वियतनाम उन्हीं की फैक्ट्री से सीधा हमारे पास आता है, तो एक तो फर्क ये है कि यूएसए में टैरिफ लगा हुआ है, हमारे कनाडा गवर्नमेंट के जो रूल है तो उनको टैरिफ नहीं लगा हुआ, मतलब बहुत बहुत सारे अंदर की चीजें होती हैं जिससे 20-30% और बचत होती है, तो वो फिर जो बचत होती है, हम तो दो पैसे कमा के रीजनेबल दे रहे थे, आपकी वजह से तो हुई, मेरा तुझको सौंप दो वापिस कर देते हैं आपको, और वीकेंड आता है, तीन चार आइटम कॉस्ट पे लगाते हैं ताकि बिजनेस, मतलब कहते हैं उसे लूजर विनर, कई बार कह देते हैं कि आपको अपना स्टोर दिखाना चाहते हैं, और किसी बहन भाई को अगर वो चाहिए, जैसे भी कैनेडियन मिड एक्सेप्शनल आपको देने जा रहा हूँ सिर्फ 1099 का, वैसे हमारे स्टोर पे हम 1699 मांग लेते हैं, कभी थोड़ा मान भी कर लेते हैं, $50 डिस्काउंट भी कर लेते हैं, लेकिन हम कॉस्ट पे आपको दे रहे 1099। ये देखो ये है हुनर, ये आपको अपनी कॉस्ट बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं कि 1300-1400 का बेचते भी हैं वो, तो मतलब ये एक डील होगी। एक बेडरूम सेट आपको दे रहे हैं स्टोरेज वाला, और बेड, ड्रेसर, मिरर और नाइट टेबल हम 999 का बेचते हैं, आपको 799 का देंगे। लैकर वाला जो बेड है, आप हमारे पास तीन मॉडल है 1699 के, आपको आपको चॉइस भी दे रहे हैं, मॉडल मॉडल भी हो गया, अलग अलग मॉडल हो गया, अलग अलग कलर भी हो गया, आपको चॉइस होगी। कैनेडियन मेड सोफा आपको हमारे पास 399 से लेके जितनी मर्जी रेंज तक, लेकिन जो हम जाने जाते हैं जेन्युइन लेदर के लिए, बड़े सोफों के लिए, कस्टम मेड बनाने के लिए, या जो आप एशले के फर्नीचर के फैदर सेटिंग वाले या जैसे और ब्रांड हैं उनके लिए आप आए, जो भी आप लेना चाहते हैं, क्योंकि भट्टी साहब हर एक इंसान की अपनी एक जरूरत है, जगह हो सकता है, कोई बहन भाई अपार्टमेंट में रहता हो, कोई बहुत बड़े मेंशन में रहता है, कोई कोई अभी नया आया है, हर किसी की एक जरूरत है, तो आपकी जरूरत का ख्याल रखते हुए हमने हर प्रकार की रेंज रखी हुई है। तो ये ना माना जाए कि हम 399 वाला बेचते हैं, तो बहुत सारे कस्टमर आपके भट्टी साहब रेफरेंस से माइकल अमीनी लेने आते हैं, माइकल अमीनी का एक सोफा 3000 से, एक सोफा 3000 से शुरू होता है, लेकिन वो बड़े स्टोरों में वो मिलता है 4500 का, हम देते हैं 3000 का, तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए, तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवर सोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा, और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में, तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 416-901-2810, 416-901-2810। थैंक यू वेरी मच जी,
0: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कर लीजिए 416-901-2810, 416-901-2810, midafurniture.com इनकी वेबसाइट है। अच्छा जनाब, खबरों के करीब आ गए, आपको बता दें इनाम खरीद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसागा में, जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से, اور شمس رحمان صاحب سے آپ رابطہ کیجئے. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہاں آمد متوقع ہے اور ایوری ڈے آپ کو ایک گولڈ کا پرائز دیا جائے گا. انعام گھر کا ایوری ڈے ایک پروگرام ہوگا جس میں مختلف جو ہیں وہ گفٹ دیے جائیں گے.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777
2: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स
3: मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
4: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो इनसे رابطہ कीजिए तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेजेस इनके होते हैं साथ साथ मनी ट्रांसफर की सर्विसेज इमिग्रेशन की सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं और कमर रशीद साहब रूह रवा हैं CEO हैं तमाम ऑपरेशंस को और खास तौर पे हज के हवाले से उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं वहां जाके चीजों को देखते हैं और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है खुश आमदीद कहेंगे कमर भाई अस्सलाम वालेकुम
5: जी वालेकुम सलाम बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ साहब और आपकी वसासत से मैं अपने तमाम सामेईन को भी बहुत सलाम पेश
4: थैंक यू वेरी मच पहले मुबारकबाद बहुत जबरदस्त हज सेमिनार था आपका इस पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह तआला आगे बात करेंगे मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए
5: जी सर मैं अशरफ भट्टी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे जी हाँ PIA ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिली जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मैं एंड में मुश्किल है तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रैवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है टाइम आपके पास है अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है आप अभी 24 जून को जा रहे हैं आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं तो और ये भी बताता चलो कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है उमरा के वीजे खुल जाते हैं तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का उमरे का ये ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
4: पे कॉल कर लीजिए एक तो 15% सेल है प्लस आप उम्रा भी कर सकते हैं उसी दौरान में तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं चाहे दो लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों आप इनसे रब्ता कर लीजिए अच्छा हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी वहाँ मैं मौजूद था लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए
5: जी बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह ताला शक विशक नहीं और खुशी खसूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया एहराम अपनी तरफ से मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपकी मोहब्बत है हमारे लिए बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और अशरफ भट्टी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं। उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें। अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए तो यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें। और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं, और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ, हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ही आज आपको दावत दे रहा हूँ, आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है, आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा। आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें। इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर, 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें, आए मिलके बैठें और इसको डिस्कस करें।
4: 905-275-3555 रابطے کے نمبر ہے کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے۔ کچھ اور ایڈ کرنا چاہیں گے کامران صاحب؟
5: جی میں بتاتا چلوں کہ اس میں حج کے لیے 10 دن 12 دن 14 دن 16 دن مختلف دنوں کے پیکج ہوتے ہیں، اس سے میں نے آپ کو کہا آئیں بیٹھیں اور آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو کہا کہ اس کو کسٹمائز کریں، اور پاکستانی کانسٹنٹ کی تمام آن لائن سروسز جس میں آپ کا ضروری ہے کہ پاسپورٹ आपके हाथ में हो वो जरूर रखें, नाइको कार्ड को देखें वो एक्सपायर ना हो, कभी भी इमरजेंसी में सफर करना हो तो मुश्किल ना हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी वीजा लेने में भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 8-10 दिन लग जाते हैं। तो अपना रिक्वेस्ट है बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक्सपायर मत होने दीजिएगा, उसको हमेशा अपनी जरूरत के लिए रेडी रखें। इसके साथ साथ कुर्बानी का टाइम आने वाला है, अपने प्यारों को पाकिस्तान रकम भेजनी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से मंगवानी हो, एतमाद के साथ आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बेस्ट रेट के लिए नंबर है 905-275-3555।
4: थैंक यू वेरी मच कमान साहब, बहुत शुक्रिया, अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। थैंक यू,
5: अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू,
4: नंबर नोट कर लीजिए 905-275-3555। अच्छा जनाब, एक रेस्टोरेंट की आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, रिजवे प्लाजा में है चाय खाना, ये पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, फाइन ओरिजिनल पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड आपको मिलेगा, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा, और ये तमाम क्वालिफाइड शेफ हैं पाकिस्तान में, पीसी लाहौर में ये शेफ थे और 14 साल से इनका तजर्बा है, और रिजवे प्लाजा में ग्रेट एडिशन है जनाब फूड लवर्स के लिए, स्पेशली चाइनीज खाने वालों के लिए, 100% हलाल फ्रेश एंड ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाला एट ऑल, अपने मसाले हैं और वेरी रीजनेबल प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं, स्पेशल डिस्काउंट है, रेडियो पाकिस्तान का वाला देंगे तो फॉर श्योर डिस्काउंट आपको देंगे, और 4 से 12 बजे वीकडेज में और 2 से 12 बजे रात तक वीकेंड्स पे आपके लिए ओपन है। 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है इसका रिजवे प्लाजा में, और इस वीकेंड पे चाइनीज पाकिस्तानी ओरिजिनल पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं, तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन पे चले जाइए, नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बुक करवा लीजिए 905-514-7877, 905-514-7877, चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रابطے کے نمبر 4165930003। ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آذان کا وقت ہو گیا ہے، دوسرے علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی نظام الاوقات کے مطابق مغرب کی نماز ادا کریں۔

0: Since 1993, MWC food banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC food banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Uni Global Advisory Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनके ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए, इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 4167106777। इट्स 4167106777।
2: जी हाँ, 4167106777 पे आप कॉल कर लीजिए। शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकवेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई मरसद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू।
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी भट्टी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना। तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही है, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है, दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे राब्ता करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स है, आपको पता है।
2: 4167106777 पे आप राब्ता कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरीडे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरीडे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल हमसे रब्ता कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 4167106777, 4167106777 पे आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शम्स भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती है
3: इंशाल्लाह। थैंक
2: यू जनाब। अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके दिया जाएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन है। लिजस कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिजाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल जमान साहब। स्टे ट्यून्ड।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhaniswits.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: असलियत का फतूर इन चीजों से नजर आता है कि बंदे का हर वक्त अपने आप को अपने सर में जो मट्टी डालने वाले हालत है ना, इन लोगों को इस चीज से निकलना चाहिए। और एक बात भट्टी साहब, एक बात मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात करके खत्म कर रहा हूँ बात। भट्टी साहब देखें, या तो आप किया करें तबसरा, मतलब तबसरा रोज वही बात। आप एक पार्टी बन के जब बैठ जाते हैं ना, तो फिर हमें भी जवाब देना पड़ता है, हम मजबूर होते हैं, हमें और बात करनी पड़ती है। मैं आज आपसे ये बात कर रहा हूँ कि आप तबसरा करें, हम आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे।
1: मुझे कह रहे हैं,
0: और आपका भी कद बड़ा होगा।
1: मुझे कह रहे हैं, किसी को कह रहे
0: हैं नहीं, आज जो तबसरा करते हैं भाई, आप सवाल करते हैं।
1: ठीक है, थैंक यू। 8156 आप ऑन एयर हैं। 8156
2: हेलो।
1: जी जी, आप बात जल्दी बात कीजिए।
2: देखिए, आईपीपी का तो सबको पता है किसके हैं। 52% तो गवर्नमेंट के अपने, 28% सरमाएदारों के पाकिस्तानी, बाकी 8% चाइना के, 7% को गल्फ के लोगों के, कुछ और तो वो तो है, नाम भी सबको पता है। मियां मंशा के चार हैं,
1: अच्छा,
2: शहबाज शरीफ के लड़के सलमान, शहबाज का भी एक है।
1: चलिए, अच्छा किया सर, आज आपने बता दिया। ठीक है सर, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू।
2: जांगी
1: तरीन भी, अच्छा ठीक है, हो गया। ठीक है सर जी, आज टाइम थोड़ा कम है, मैं इधर बाकी कॉल। 6141 सर आप ऑन ले रहे हैं। 6141
3: अस्सलाम वालेकुम भाई साहब।
1: जी वालेकुम सर।
3: भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि सर मुंडवाते ही ओले पड़े जब हुकूमत में आए थे ना, ऊपर से फ्लड आ गया, फिर जंगे आ गई, फिर एक बाजू में जंग, फिर दूसरे बाजू में जंग। देखे, दुनिया भी जानती है कि ये पाकिस्तान अगर आज बांध के कुटाई करता है ना, तो अगर इसे एनर्जी सस्ती मिल गई तो इसे संभालेगा कौन? तो अपनी हुकूमत पे ट्रस्ट करना चाहिए और इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद।
1: थैंक यू। 9558 आप बात करना चाहेंगे? 9558 9558, अच्छा चलें, आप सुन रहे हैं। बिलास साहब, मैंने बरसबीले तस्करा जो है वो उनका मुनीर नियाजी का शेर कह दिया था, तो भाई के सवालों के जवाब देना चाहेंगे आप?
4: नहीं, वो तो जो है ना, कहते हैं अपना सवालों के जवाब अपनी जगह पे, लेकिन बहरहाल हमारा बहुत सारे मामलों के अंदर जो तजिया होता है, देखें जब आप ग्राउंड रियलिटीज को जो है ना वो देखते हैं ना, अभी भाई ने बात की महंगाई की और एहतजाज करने की, देखें एक जो है ना वो लेवल होता है, उसको आप क्या कह लें कि जब पानी जो है ना वो सर से जो है ना वो गुजर जाता है,
1: ठीक।
4: तो अभी जो है ना वो देखेंगे वो स्टेज जो है ना वो ठीक है कि हम हकूमत की भी जो है ना वो सपोर्ट अपनी जगह पे होती है, लेकिन जब आप देखते हैं कि हकूमत अपनी अयाशियां जो अपने मामलात हैं उनको जो है ना वो नहीं कवर करती और सारा का सारा बोझ जो है सिर्फ आवाम के ऊपर ही डाल देती है, तो फिर जो है ना वो बहरहाल एक जो है ना सवाल जो है ना वो
1: जरूर। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। वीकेंड है, आप भी 2 दिन रेस्ट कीजिए, मंडे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
4: जरूर, थैंक यू।
1: आपकी कॉल का बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहेंगे, दुआ में रखिएगा, हौसला नहीं हारना, हौसला भी खोने चीज़ इन ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छे की आवाज़ बशत जिंदगी। इंशाल्लाह मंडे शाम 7 बजे आपसे मुलाकात होगी। वीकेंड है, बच्चों को वक्त दीजिएगा, उन्हें आपके वक्त की जरूरत है। स्टूडियो इंजीनियर मरियम पर मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ और सपोर्ट दिमाग।

0: Keep watching Toronto 360 TV with Cyber Gaya.
1: Assalamu alaikum nazreen, main is waqt Toronto 360 ki janib se Irfan Baba Malik aapki khidmat mein hazir hoon aur shahar ka ek bada mashhoor business link jisko aap kehte hain biz link jo businesses ko jodta hai ye hone ja raha hai idhar ya bahut sare businesses aaye hain कम्युनिटी में ऐसी चीजें होनी चाहिए बिजनेसेस प्रमोट करने चाहिए और बिजनेस बढ़ने चाहिए जितने बिजनेस बढ़ेंगे हमारी कम्युनिटी उतनी ही मजबूत होगी और इस मजबूती की जामन है हमारी फौजिया जी और इन्होंने आज ये बिज लिंक के तहत ये पहली एक कॉन्फ्रेंस समझ लें एक एग्जीबिशन समझ लें या एक कम्युनिटी मीट एंड ग्रीट प्रोग्राम बिजनेसेस का समझ लें वो किया है और हम आपको इसकी झलकियां वक्तन फक्तन दिखाते रहेंगे। मैं इस वक्त अपने कुलीग साबर गाया साहब के साथ हूं और मैं फौजिया जी से बात करूंगा। फौजिया जी कॉन्ग्रेचुलेशंस,
2: थैंक यू,
1: इतना जबरदस्त शो करने का, इतनी जबरदस्त एफर्ट करने का, सोल्ड आउट फुली बुक्ड शो है आपका और बहुत सारे हम बैनर देख रहे हैं जैसे कि नाजरीन भी देख रहे हैं, तो आप इस पे क्या कहेंगे?
2: थैंक यू सो मच बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि बिजलिंग कनेक्टिंग बिजनेस मेरी एक ऐसी कोशिश है जिसमें मैंने ये चाहा था कि टोरंटो के टॉप नॉच बिजनेसेस का आपस में मर्ज हो, ना सिर्फ ये कि हम सब खुद अकेले ग्रो करें बल्कि एक दूसरे के बिजनेसेस को भी ग्रो करने में सपोर्ट करें। और आज वो दिन आ चुका है यानी बिजलिंग 2026 यानी अप्रैल 18 को इस वक्त हम मौजूद हैं अपोलो कन्वेंशन सेंटर में और वक्फे से हम आपको अपडेट्स करते जाएंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से। यहाँ पे हर किस्म का बिजनेस आपको मिलेगा। बिजलिंग इज बेसिकली वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर नीड्स। थैंक यू।
1: थैंक यू वेरी मच फौजिया जी। ये बताइएगा कि आप तो बड़ी कामयाब मॉर्गेज ब्रोकर हैं, ये इतने बिजनेस जो आप इकट्ठे कर रही हैं और ये जो लिंक कर रही हैं, इसमें चूंकि आप बिजलिंग की सीईओ भी हैं, आप इनकी ओनर भी हैं, तो इससे आपको क्या क्या फीलिंग मिल रही है, क्या सक्सेस मिल रही है, क्या आपका क्या सेटिस्फेक्शन?
2: जी बहुत प्यारा सवाल है, थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट इट। मकसद बिल्कुल वही है कि ना सिर्फ खुद ग्रो करना है बल्कि अपने कम्युनिटी में, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को खास तौर पर आगे लेकर आना मेरा मकसद था। हमारे दरमियान आज की शाम आपको कम्युनिटी के बड़े बड़े लीडर्स मिलेंगे जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम आपकी उनसे मुलाकात भी करवाएंगे। और मकसद एग्जैक्टली वही है कि ना सिर्फ ये कि हम खुद अकेले ग्रो करें बल्कि मिलके अपनी कम्युनिटी को कैनेडियन बेस्ड कम्युनिटी के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाएं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया फजल जी, आप बहुत मसरूफ हैं टोरंटो 360 को टाइम देने का शुक्रिया और इंशाल्लाह फिर साथ साथ चलते रहेंगे और फिर आखिर में आके फिर आपको आपसे पूछेंगे रात को कि ये कैसा शो रहा। नाजरीन आप हमारे साथ रहे, हम आपको झलकियां दिखाते रहेंगे, आपसे लोगों की बात कराते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान बाबा मलिक टोरंटो 360 की जानिब से, साबर गाया अपने उस्ताद मोहतरम के साथ, थैंक यू। जनाब इस वक्त हम डॉक्टर शाहिना किशोर जी के साथ मौजूद हैं, शहर की इंतहाई पढ़ी लिखी खातून, बल्कि लोगों को पढ़ाती हैं लिखाती हैं। मैंने पढ़ी लिखी का लफ्ज तो एक तकल्फन इस्तेमाल किया, ये पढ़ाने वालों में से लिखाने वालों में से हैं। तो डॉक्टर साहब आप बिजलिंग की कॉन्फ्रेंस पे आप आई हैं, तो आपके क्या तासरात हैं?
3: जी सबसे पहले तो मैं आपकी थैंकफुल हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। ये बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम फजिया फसी साहिबा ने अरेंज किया है जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी को ये मौका दिया गया है कि वो अपने आइडियाज शेयर करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें और एक दूसरे के साथ जो है कोऑपरेट करें और कोऑर्डिनेशन के साथ चलें ताकि हमें एक ही जगह पे बहुत से जब बिजनेसमैन मिल जाते हैं, बिजनेस वेमेन मिल जाती हैं, तो हम शेयर करके हम एक ही जगह पे बहुत सी जो फील्ड है उसको कवर करते हैं। तो माई हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन टू हर एंड थैंक यू।
1: थैंक यू।
3: थैंक यू।
1: नाजरीन इस वक्त हम चौधरी निसार साहब के साथ मौजूद हैं और जो कि मीडिया में एक खास मुकाम रखते हैं, शहर के पढ़ाई लिखाई में खास मुकाम रखते हैं और बड़े बड़े मालूमती प्रोग्राम, बड़े मुतहरक कम्युनिटी लीडर भी हैं। चौधरी साहब आप तशरीफ लाए हैं बिजलिंक पे, आप कुछ इसके बारे में भी बताएं और अपने तासरात भी बताइए।
4: इरफान बाबा साहब ने जो कहा वो रिवर्स में इनके ऊपर अप्लाई होता है। माशाल्लाह ये बहुत एक कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियत है ٹورانٹو 360 کا بہت شکریہ, صابر گایا صاحب کا کیمرہ مین ہے اس وقت, بہت شکریہ سب کا. جہاں تک آج کے اس ایونٹس کے حوالے سے ہے کہ بز لنک جو کہ فوزیہ فصیح صاحبہ اور ایک پوری ٹیم نے یہ ایک یہاں پہ بزنس کمیونٹی کو اکٹھا کیا ہے, یہ بہت بڑی بات ہے اور ضرورت ہے اس امر کی کہ لوگوں کو ہمیشہ ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کیا جائے, جتنے میکسیمم لوگ ہو سکتے ہیں. اور یہ ایک قسم کی آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک ضرورت بھی تھی سٹی کے اندر. بہت کام اور بھی ہو رہے ہیں, بہت زیادہ آرگنائزیشن بھی کر رہی ہیں. آج ان کا یہ پہلا ایونٹ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ڈفرینٹ قسم کے ورسٹائل لوگ آئے ہوئے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آگے یہ لوگ آپس میں نیٹ ورکنگ کر کے کمیونٹی کو فائدہ دیں گے اور آگے بڑھیں گے. جیسے میرا اپنا ہے تو میں صابر گایا صاحب اور ملک صاحب آپ کی وساطت سے اور ٹورانٹو 360 کے والے سے المصطفیٰ کینیڈا ایک چیریٹی ورک میں میں انوالو ہوں, وہ میرا چیریٹی ورک ہے, والنٹیئر ہے. میرا خود اپنا بزنس جو ہے ای کامرس کا ہے, میں بزنس کوچ کرتا ہوں, لوگوں کو ٹریننگ دیتا ہوں. کسی کا ڈیڈ بزنس ہو رہا ہو اس کو انالیسس اس کے انالائز کر کے اس کو کوچنگ کر کے اس کو بیچنے تک ہیلپ کرتا ہوں. مینلی میرا کمرشل کا کام ہے اور بزنسز کا کام ہے. ای کامرس میں کسی نے کوئی ٹریننگ لینی ہو وہ میرے سے لے سکتا ہے, میرے نیٹورک کے امریکہ کینیڈا دونوں کنٹریز میں ہیں, ورلڈ وائڈ جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ میرے امپلائیز ہیں.
1: جی شکریہ چاری صاحب.
4: جی جی, تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام میں میں فوزیہ فصیح صاحبہ کو بہت بہت مبارکباد

0: बिजनेसेस को भी प्रमोट करने की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब आपके साथ मिलके हमेशा खुशी होती है, आप हमारी कम्युनिटी की जान है, हमारे प्यारे दोस्त हैं, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ। और आप अपने आप को जब दूसरे को इज्जत देते हैं तो अल्लाह ताला आपकी इज्जत को हमेशा ऊपर लेके जाता है, ये एक हमने देखा है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके अल्फाज का, यही अल्फाज में आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं एक बड़ा आजिज आदमी। बहुत शुक्रिया।

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहु एंड गुड इवनिंग. इट्स एब्सोल्युटली माय ट्रू ऑनर एंड प्लेजर टू स्टार्ट दिस वंडरफुल इवनिंग. सो वेलकम एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुनाइट फॉर दिस नेटवर्क डिनर होस्टेड बाय बिजलिंग. इट्स ए प्लेजर to have such a wonderful group of professional gathered here. This evening is all about building meaningful conversation, sharing ideas, enjoying great conversation in a relaxed setting. We hope that you all take this opportunity to meet new people, strengthen existing relationship and make the most of the time together.

तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।

0: experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
1: At Alam Law Firm, we believe that the most important element of every file we work on is indeed the clients themselves,
2: which has resulted in a proven track record of success. Our battle-tested litigation lawyers stand tall in the face of adversity and challenging cases.
3: Our legal team comprises many legal professionals.
4: Every individual deserves dedicated legal representation.
5: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.
6: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
7: मिसेस आगा रिचवे
6: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसेसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. Al Karam Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.
8: Rah Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karda mithai, cakes, biscuits and snacks. Wohi authentic zaika aur quality. पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में कुछ मीठा कुछ नमकीन राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल लाइन 5820-1500 और विजिट rahatbakers.ca.
9: You know, we were always trying how to get a house. You remember the Royal Financial Group flyer you gave me for the mortgage?
10: Oh yes, Shiraz Hussein, who did our mortgage too.
9: Yes, I actually went to their office. The staff was so professional. The expert in their services. And you know what Shiraz said?
11: We have more than 100 lenders to help you to find our right qualified lenders. And program for your purchase, refinancing, any of your commercial needs. At the Royal Financial Group, we deliver what we promise.
12: Royal Financial Group. Never put a limit on your dreams.
13: A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law.
14: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777. इट्स 416-710-6677.
15: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-56-

मच आपका लास्ट वीक का प्रोग्राम पसंद करने का, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो अब मेड हो रहा है बेस्ड ऑन जो मार्केट अब आगे जा रही है. दो तीन महीने पहले या सॉरी दो तीन हफ्ते पहले हमने जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था बेस्ड ऑन जो ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है उसकी वजह से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी जो है वो हमें डिफरेंस देखने में आया था. इनफैक्ट अब जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, चीज़ें जो है वो इट्स गेटिंग इन टू द प्रॉपर डायरेक्शन, नाउ वी आर सीइंग दैट स्टॉक मार्केट इज गेटिंग ऑन द स्टेबल साइड एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे. इंटरेस्ट रेट कैनेडा में भी और यूएस में भी जो है वो स्टेबल रहा है, और उसकी वजह से जो रियल इस्टेट मार्केट है दैट इज गेटिंग इन टू अर नेक्स्ट मोमेंटम. और हमने रियल इस्टेट मार्केट की जो है वो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था हमने, दैट फॉर ऑल द न्यू डेवलपमेंट यू आर एग्जम्प्ट फॉर एच एस टी इफ यू बाय इट फ्रॉम और इफ यू बुक इट फ्रॉम मार्च अप्रैल 1st अंटिल मार्च 31st नेक्स्ट ईयर. सो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई हैं ओवरऑल दैट इज फॉर टू बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम. आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल ही मार्केट ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन क्या हुआ. सो नैसडैक वॉज अप और नैसडैक रहा 24,800 पर. बिग टेक अर्निंग्स इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दे आर बूमिंग राइट नाउ. माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नई इनोवेशंस की हैं अभी. एक इनोवेशन इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके साथ अगले वीक भी शेयर करूंगा. दे हैव स्टार्ट मेकिंग अप अ ग्लास विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन. और इंस्टा आपका डेटा जो है जितना वो उस ग्लास में अब स्टोर होगा इंस्टेड ऑफ USB और इंस्टेड ऑफ जो है वो हार्ड ड्राइव में. सो दे हैव मेड इट नॉट मेड इट टू पब्लिक एट येट बट दिस इज कमिंग इन एंड दैट वुड बी अ मेजर चेंज फॉर माइक्रोसॉफ्ट. S&P 500 दे हैव हिटिंग रिकॉर्ड्स बट स्ट्रगलिंग विद द बैंकिंग वीकनेसेस. ये हमें पता है क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट US में भी जो स्टडी आपके पास इंटरेस्ट रेट रहा जिसकी वजह से बैंक थोड़े से जो है वो वीकर हो रहे हैं US में. कैनेडा का बैंकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है विच इज वाई वी आर वेरी efficient in that way. TSX jo hai 33,900 ra which is lower and weighed down by sticky inflation data and that's exactly what we have seen. Inflation is for jo hai wo bahut zyada different chal raha hai Canada mein and along with jo prices hai grocery or food prices hai they are kind of jacking up. So that's what we have seen. Crude is for jo hai is week 107 pe aa gaya right और 7% upar aaya Wednesday ko as the Strait of Hormuz remains blocked. Ab wapas Strait of Hormuz block ho gayi hai which is why क्रूड इज कमिंग अप. अच्छा जी जो हमने इंट्रो में डिस्कस किया कि मार्केट इज गेटिंग स्टेबलाइज एंड विद सेलेक्टिव स्ट्रेंथ इमर्जिंग. मार्केट कोई अब पैनिक मोड में नहीं रही है, कूल डाउन हो रही है और अब जो है वो स्टेबलाइजेशन और इवेल्युएशन मोड में मार्केट चल रही है. US मार्केट का ओवरऑल क्या रहा, जो मार्केट बिहेवियर था दैट्स मेजर इंडेसेस राइट जो मूव साइडवेज ओवरऑल और स्मॉल गेन्स लॉसेस जो है वो देखने में आए. कंसोलिडेशन फेज आफ्टर रीसेंट वोलेटिलिटी और यही पिछले चार पांच वीक से मार्केट बहुत वोलेटाइल थी एंड दैट्स द रीजन नाउ वी आर सीइंग इन अ डिफरेंट फेज. मैक्रो ड्राइवर्स जो US मार्केट के लिए रहे वो ऑयल स्टेबलाइजेशन है. इट्स बीन सेटल्ड आफ्टर प्रायर स्पाइक्स और ऑयल जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है अभी भी. जो हमने जैसे जिक्र किया 107 बैरल था लास्ट वीक, इट वॉज लाइक 94 बैरल and that's how we are seeing it. So energy price jo hai wo Toronto stock exchange aur Toronto mein badhi hai and that's what we have seen. Inflation still in focus US mein, it's not accelerating but it's still not falling fast. Interest rate expectation jo thi wo waisi rahi jaisi hai and we are not out of inflation risk yet. To inflation hai US mein aur wahan ka risk jo hai wo hai bhi wahan par. Interest rate uncertainty ye thi ki interest rate jo hai wo cut hoga ki nahi hoga, lekin aaj jo is week jo news aayi iski wajah se wo स्टेबल रहा है, सेम रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर रिमेन्स कॉशियस और इम्पैक्ट क्या हुआ है कि लिमिट्स अपसाइड इन द ग्रोथ स्टॉक. अच्छा जी इंडस्ट्रियल जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ पे रही है राइट. रोटेटिंग इनटू रियल मनी सेक्टर इंडस्ट्रियल जो है वो वहां पे पैसा मूव हो रहा है वहां पे. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इकोनॉमिक आउटलुक और कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपकी बाइंग पावर होगी तो आप जो है वो स्पेंड करोगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इन द US मार्केट. अच्छा एनर्जी नो लॉन्गर लीडिंग, टेक जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया US में और ऑयल स्टेबलाइजेशन लेस अपसाइड. ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ऑयल की मार्केट जो है वो अगर स्टेबलाइज होती है तो
यूएस में वो इम्पैक्ट आता है उसकी नीचे जाने का, अगर ऑयल स्टेबलाइज होती है तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज या एनर्जी सेक्टर टोरंटो में कनाडा में ऊपर जाता है, क्योंकि हम हमारे पास एनर्जी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है स्टॉक मार्केट के हवाले से। ओके जी, टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग, नो मेजर सेल ऑफ दिस वीक और रिकवरिंग आफ्टर प्रायर वॉलेटिलिटी और टेक इज होल्डिंग ग्राउंड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल फ्लो, पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ, रोटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल और स्टेबल टेक में रही और मार्केट इज स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैटलिस्ट कि नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर क्या होगा और उसमें मार्केट मूव करेगी। अच्छा जी, यूएस सेगमेंट में जो बड़ी चीज रही, एक तो फेडरल डिसीजन रहा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टडी रहेंगे 3.5 to 3.75%, नहीं मूव हो रहे वहां से। और जो अर्निंग हैवी वेट है इस वीक वो इंटेल रहा, उनकी मैसिव Q1 जो है वो रिपोर्ट आई है और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड एज सेफ हेवन क्योंकि एआई के बहुत ज्यादा काम होने की वजह से दे आर गेटिंग इनटू अ प्रॉपर टेक स्टॉक एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इट। बैंकिंग क्रैक जो है वो रेयर आर पब्लिक डिवाइड विद इन द सेंट्रल बैंक, द अनसर्टिनिटी इज कॉजिंग ऑल सेल ऑफ द रीजनल यूएस बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर में कुछ डिफरेंस रहा यूएस के मार्केट में क्योंकि जो है वो अगेन बाइंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन दैट साइड। टोरंटो मार्केट को डिस्कस करते हैं, TSX जो है वो स्लाइटली मोर स्टेबल देन US जो हम देख रहे हैं और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रही है, बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं रही है लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स दैट। की ड्राइवर्स कौन से, अगेन ऑयल स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी सेक्टर ने लूज किया थोड़ा सा अपना जो है वो पॉइंट, लेकिन टेक TSX बिकम्स मोर बैलेंस क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा जो है वो डायनामिक्स नहीं है इस तरह US में है। सो वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर ऑयल, वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर एनर्जी इन ऑयल एंड हैविली रिलाय ऑन टेक, और जो भी हमारा इम्पैक्ट आता है वो US के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, विच इज वाई वी आर सींग इट। कमोडिटी बैलेंस, मेटल जो है स्टेबल रहा और मटेरियल सेक्टर दे आर एट द न्यूट्रल लेवल। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी जो इस वक्त चल रही है कैनेडा की, दे आर इन टू अ डिफरेंट शेप क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट आता है एंड दैट्स वॉट उसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो उस इम्पैक्ट से गुजरती है। अच्छा जी, क्या रहा कैनेडियन में, कैनेडियन ऑडियंस जो है वो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जंप हुआ 2.4% अप फ्रॉम 1.8%। देयर आर लॉट ऑफ लेऑफ्स, प्रोबब्ली यू हैव हर्ड अबाउट, रॉजर्स ने अपने 10,000 जो है वो एम्प्लॉइज को उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट देने का जो है वो ऑप्शन निकाला है और मेजॉरिटी जो जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, दे प्रोबब्ली आर टेकिंग इट। दूसरा जो है वो डिफरेंट टेक सेक्टर में भी बहुत ज्यादा लेऑफ हो रहे हैं। The Canadian market from job perspective or from that perspective is not that big right now and we are seeing a lot of gaps in the market. Achha ji, TSX mein rotation kya raha, winners jo hai wo energy rahi, Suncor, CNRL aur materials mein Barrick Gold raha, oil jo hai 107 pe raha aur gold jo hai wo nearly staying near records. Canada's dirts and pipes are only thing that keeping the TSX in the deeper side. लूजर्स कौन रहे, टेलीकॉम और यूटिलिटीज, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की वजह से देर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन। स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट की क्या रही कि इस वक्त ऑटवा रिसेंटली टेबल इट्स अपडेट शोइंग अ डेफिसिट ऑफ $66.9 billion और ये फिस्कल एक्सपेंशन जो है ये हाई एनर्जी कॉस्ट पे एंड इज पुटिंग कैनेडियन डॉलर ऑन प्रेशर। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इस वक्त। जो ट्रेड चल रही है US वर्सेस कनाडा इज 0.73 और ये जो है वो अब प्रेशर आ रहा है कैनेडियन डॉलर पे। अगर हम US तो कैनेडियन मार्केट का कंपैरिजन करें इस वक्त, सो वॉलेटिलिटी में मार्केट फेस कंसोलिडेशन US की है और स्टेबलाइजेशन जो है TSX की है। वॉलेटिलिटी मॉडरेट वर्सेस लोअर, लीडरशिप एक वीक है, रोटेटिंग है, लीडरशिप चेंज हो रही है, सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं वहाँ पे, कैनेडा में बैलेंस हो रहा है, राइट, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बहुत ज्यादा एनर्जी सेक्टर लीड ले रहा था एंड देन टेक वाज गेटिंग डाउन बट नाउ इट्स बैलेंसिंग इट आउट। की ड्राइवर्स क्या रहे, US में इन्फ्लेशन और रेट्स रहे, यहाँ पे ऑयल एंड स्टेबिलिटी रही की ड्राइवर्स। स्ट्रॉन्ग सेक्टर इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल्स और वीक सेक्टर एनर्जी एंड एनर्जी ऑन द बोथ साइड।
अच्छा जी, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू शो यू गोल्ड प्राइस, जो कि हम हर वीक देखते हैं। इस वक्त आज की जो गोल्ड शेयर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये इस वक्त की प्राइस है, अगर ये लोड हो जाए, 423.68, ये थोड़ा सा नीचे आया है। और इसको आप बिल्कुल जो है वो देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड की प्राइस से। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी सो यू विल सी इंक्रीज इन दिस चार्ट एज वेल। ETF हम देखते हैं आई शेयर का, जो है ETF, एक सेकेंड, हाँ जी, ETF हम देखते हैं यहाँ पे, और ETF की प्राइस इस वक्त है 53.42। ये इसी रेंज में फ्रॉम 49 टिल 55, दैट इज मूविंग मूविंग हियर एंड देयर, लेकिन इट्स गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इट विल गिव यू रिटर्न इन द लॉन्ग रन। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, एंड दैट्स वेयर यू विल गेट मेजर रिटर्न आउट ऑफ इट। So this was it, folks. Thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Kiani. Inshallah, next week we'll see you with the different market. Hopefully, सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएं। और जो मैंने शुरू में Microsoft की जो नई प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया था, उसको जरूर उसके ऊपर रिसर्च करें। It's called Microsoft Silicon, and that is going to change a lot of things. और उसकी वजह से Microsoft का जो स्टॉक है वो भी आगे बढ़ेगा। तो keep watching The Art of Investing. I'll see you inshallah in the next week.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकवेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
8: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
9: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
4: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief.
10: Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
11: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
12: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
13: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca.

0: मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ एंड इट माइट कम अक्रॉस एज ए आई डोंट नो इट मे कम अक्रॉस समथिंग वेरी वियर्ड मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लिप सिंक कर रहे हैं दैट्स हाउ गुड यू आर
1: थैंक यू सर थैंक यू सो मच

0: ये महमूद और अयाज है जो रोटी कमाने के लिए भाग रहे हैं, और ये है करीम से, इन्होंने ज्यादा रोटी खा ली और अब भाग रहे हैं। बेचारे गुलखान के पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो एक बनियान खरीद सके। और ये है स्वीटी, इनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी बनियान ही खरीदती हैं। अमजद सुबह से एडमिशन की लाइन में खड़ा और शहरी जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सकीना आपा आज बहुत खुश है, उन्हें राशन की पर्ची जो मिली है। पर्ची तो हमें भी मिली थी लेकिन भत्ते की। हमें लगता था इस शहर में पैसे का ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे आने के बाद की प्रॉब्लम्स का हमें कोई आइडिया नहीं था।
1: फरहान यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतनी शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस महीने की दूसरी पर्ची है, दूसरी।
2: मैं भी तो कब से कह रहा हूँ आपसे कि सब कुछ बेचते हो, निकलते किसी दूसरे मुल्क।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं ये फैक्ट्री नहीं बेचूंगा। क्षमा गया, आखिरी निशानी है यार, आखिरी।
2: अभी की आखिरी निशानी अचार है शकील भाई, वो तो हम किसी मुल्क में भी बेच सकते हैं।
3: हेलो, पैसे मिलते ही एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर।
1: जी पप्पी भाई, जी पप्पी।
2: क्या कर रहे हो शकील भाई?
1: मेरे लाल, देख मैं तो कहता हूँ कि ये सब कुछ बेच के यहाँ से निकल जाते हैं यार।
2: वाह शकील भाई, आप तो पर्ची से ज्यादा पप्पी से डर गए हैं।
1: क्या करूँ यार, शरीफ वादी हूँ ना यार। हेलो,
4: हेलो,
5: क्षमा चलिए।

0: कुछ काम मिला?
1: नहीं, मेरे कैलिबर की कहीं कोई जगह खाली नहीं।
2: सुबह बिल्डिंग का ठेकेदार मिला था, उसको मजदूरों की जरूरत थी, मैंने तो अपना नाम लिखवा दिया भाई।
1: क्या क्या कह रहे हो शकील भाई, पागल हो गए हो क्या? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे है? समाचार के सीईओ का साला बजरी उठा रहा।
2: अबे जहाँ का तुम सीईओ था ना, वहाँ का मैं एमडी था।
0: अब तो जाग जाओ फरहान, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हमें साल में।
1: मेरी हरकतें और तुम ये देखो, इन हालात में भी ब्रांडेड जॉगर्स पहन के घूम रही है ये औरत।
0: मिट्टी देखी है तुमने? मेरा पेडिक्योर खराब होगा तो दोबारा कराने के पैसे तुम दोगे?
1: पैसे तुमने छोड़े कहाँ है ना, छोड़े कहाँ पैसे, लाखों रुपयों के तो ब्रांडेड बैग खरीद लेती थी तुम। आज उन बैग में रखने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं हमारे पास।
0: अच्छा, और खुद को भूल गए हैं? गाड़ियाँ ऐसे बदल रहे थे जैसे फोन बदल रहे हो, और फोन ऐसे जैसे कपड़े बदल रहे हो।
1: कपड़ों का नाम लेके तपाना नहीं मुझे, कपड़ों का नाम लेके नहीं तपाना, ये तुम्हारे फैशन के चक्कर में ना सारा दिवालिया निकल गया हमारा। और किधर गई तुम्हारी वो सारी सहेलियाँ, गर्ली गैंग, जिनके चक्कर में वो तुम लॉन की एग्जीबिशन लूट लेती थी? अरे इतने तो आसमान में तारे नहीं है नैना, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारे फोन में है।
0: देखो फरहान,
2: यार बस करो, शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था।
1: हमारी किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत शकील भाई। अरे क्रिकेट से लेके घोड़ों की रेस तक आज तक कभी कुछ जीता है तुमने? अरे 25 करोड़ डुबा दिए तुम्हारे भाईजान ने, 25 करोड़।
2: चले थे शाहरुख खान बनने,
1: क्रिकेट टीम खरीदूंगा। किसने कहा था कराची प्रिंस खरीदने को, किसने कहा था?
2: अरे माफ कर दो भाई, माफ कर दो, सारा कसूर मेरा है यार।
1: क्या हुआ?
2: मिलावट वाली दाल खा के ना पथरी हो गई है यार।
1: ऐसे हालात में ना शकील भाई लोग फाके करते हैं। आपको किस गधे ने कहा था दाल खाने के लिए?
2: अबे ओ खाबों के शहंशाह, कल को दाल भी नहीं मिलेगी।
0: क्या हो गया हम लोगों को, पहले भी तो गरीब थे, ऐसे लड़ते तो नहीं थे ना। वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा।

0: तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मेरी शॉपिंग से प्रॉब्लम थी?
1: छोड़ो ना इन बातों को। वो देखो चांद कितना खूबसूरत लग रहा है।
0: हाँ आज फुल मून है ना?
1: हाँ, ये मून कहाँ है?
0: वो तो रहा आसमान पे।
1: अरे ये नहीं, अपना मून।
0: आज इतने सालों बाद उसकी याद कैसे आ गई?
1: अच्छे वक्तों में किसी की याद नहीं आती, बुरे वक्त में ही दोस्त याद आते हैं। अरे मून की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। अरे तू कॉल कर रहा है?
2: ओए कैसा है यार तू?
1: मून
2: है किधर?
1: मैं ठीक साइड पे हूँ ना।
2: साइड पे? साइड पे? कौन सी साइड पे?
1: हाँ साइड पे, साइड पे ही तो हूँ। वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया ना, बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग
2: है रात में?
1: दिन में टाइम कहाँ मिलता है यार, क्लाइंट्स, मीटिंग्स, शोरूम्स। और नैना, नैना भी तो है, उसको भी तो टाइम देना पड़ता है। शादीशुदा जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है दोस्त।
2: वो तो सुन फिर, मैं भी अपनी जिंदगी मुश्किल करने जा रहा हूँ।
1: क्या?
2: और शादी कर रहा हूँ मैं, शादी।
1: क्या कह रहा है यार?
2: और तुम सबने आना ही आना है।
1: कहाँ?
2: साउथ अफ्रीका।
1: साउथ अफ्रीका? अरे नहीं यार मून, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, वो काम बहुत फैल गया यार।
2: और तू फैलना बंद कर, मैंने टिकट करा दिया और तुम सब लोगों ने आना है। अब केप टाउन में मुलाकात होगी। ओके फिर
1: मून,
2: टीसी टीसी आना है। बाय
1: शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई, हम साउथ अफ्रीका।

0: मैंने सोचा खुशी का मौका है, एक एक बजाए आज फिर है।
1: शकील भाई आप लो ना। नहीं यार पहले तुम पियो ना।
0: ओ कमाल करते हो, पकड़ो यार शकील भाई, पकड़। चेयर्स भाई।
1: हाँ ये है ना, बैठो।
2: अरे चेयर्स शकील भाई, चेयर्स।
0: चेयर्स चेयर्स। यार अच्छा किया तुम लोग यहाँ पे आ गए, और यू गाइस आर द ओनली फैमिली आई हैव यार।
1: ये क्या कह रहा है? अरे कह रहा है कि
0: मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन है।
2: अच्छा तू ये बता, तू यहाँ पहुंचा कैसे?
0: भाई पैसे आने के बाद मैंने सोचा वर्ल्ड टूर करना चाहिए, और यार पाकिस्तान से आगे कभी गया ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं गया दुबई, उसके बाद मैं आ गया साउथ अफ्रीका।
2: अच्छा
0: फिर यहाँ से आगे कहीं जा नहीं सका।
2: क्या पासपोर्ट खो गया तेरा?
0: ओ नहीं यार, यहाँ एक पार्टी में ना परी दिख गई।
1: फरहान मैं पहले ही कह रहा था कि इसके पास परी है, तभी तो इसके पास इतना पैसा आ गया।
0: और नहीं यार शकील भाई, परी फियांसे मेरी।
1: पा, पा, पा, पा, पा, पा,
2: मंगेतर हा? मंगेतर
0: हा? हा? उसके बाद मैंने तय कर लिया कि यहाँ से आगे तो नहीं जाता।
2: पर तू करता क्या यहाँ पे?
0: और म्यूजिक के अलावा आता ही क्या था? तो आज यहाँ का सबसे बड़ा डीजे कौन है?
2: कौन?
0: आपका भाई। ओह ब्रांड इसको है यहाँ पे।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: इसी बात में चेयर्स भाई। चेयर्स की भाई।
2: चेयर्स।
0: चलो हो जाए। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम लोग तो बताओ क्या किया इतने पैसों का है?
1: यार हमारे पैसे तो
2: स्टॉक्स में डाल दिए।
3: एक रात में
1: डबल
2: डबल।
3: फिर वहां से निकाले तो प्रॉपर्टी में डाल दिए।
0: डाल दिए।
3: एक महीने में
1: ट्रिपल
3: ट्रिपल। तो मल्टीपल बिजनेस है हमारे।
0: क्या बात है।
3: पानी से लेके
1: पेट्रोल तक
3: सब बेच रहे। अभी शकील भाई कंस्ट्रक्शन का काम भी तो शुरू किया हमने। वो बना रहे, वो लंबा सा नहीं होता, लंबा सा
0: घंटा घर।
3: वो घंटा नहीं यार, वो बुर्ज खलीफा बना रहे कराची में।
1: कटी पहाड़ी पे
3: बीचों बीच।
0: क्या कहने, बड़ा लोकेशन घुट चुके
3: हैं। अपनी तो किस्मत ही चमकी।
0: और रोने की क्या बात है इसमें?
1: यार तेरी समझ में नहीं आएगा पगले,
3: तरक्की बहुत हो रही है।
1: हमारी खुशी के आंसू है।
0: कमाल हो गया, जब भी दे मैं तो भी।
4: उनकी तो किस्मत ही चमक गई। घर कितना अच्छा है और परी भी कितनी अच्छी है, ऐसे पता चला करता क्या है?
5: बड़ा मशहूर डीजे है।
1: हाँ, और उसका यहाँ पे अपना डिस्को भी है।
4: वाह, काम का काम, पार्टी की पार्टी।
5: पार्टी तो हम भी कर सकते थे अगर तुम्हारे भाईजान मान जाते तो। कब से कह रहा था सब कुछ बेच बाज के दूसरे मुल्क चलते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो पाकिस्तान में अचार बेचना था। अब हो गया ना सब चट।
1: अपना मुल्क अपना होता है फरहान।
5: तो अपना मुल्क अपना होता है ना, लेकिन अपने मुल्क में अपना पैसा कौन रखता है? सारे पाकिस्तानी रईस अपना पैसा मुल्क से बाहर रखते हैं, और एक हम है पर्चियों के हाथ डाले बैठे।
0: हाँ जी, किस सार की बातें हो रही हैं भाई?
4: गुड मॉर्निंग।
0: तो इधर है। मॉर्निंग जी।
5: वो शकील भाई कह रहे थे कि तेरी शादी है ना, तो दूल्हे को नोटों के हार डालेंगे।
0: कमाल है यार शकील भाई, इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो और हर नोटों का, हीरों का, हर पैनों का बता रहा हूँ मैं।
2: क्यों नहीं, क्यों नहीं।
6: The famous Prince Sheikh Sultan Al Baklava has graced Cape Town. His Highness ki tashreef aavri kisi mulk ke liye sirf fakhr ka baais hi nahi hoti balki betahasha zar-e mubadla bhi saath lati hai. Khawateen o hazra, jaise ki aap apni screens par dekh sakte hain ki is waqt Sheikh Sultan Al Baklava Cape Town pahunch chuke hain aur unke saath aaya hai nihayat hi beshkeemat o nayab unka ye golden kamo. जी हाँ, ये पॉट सिर्फ सुनहरे रंग का ही नहीं है खवातीन हजरात, बल्कि ये बना है 24 कैरेट खालिस सोने से। इसकी मालियत का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस पॉट की एक खास बात ये भी है,
5: कमाल है यार, ये पॉट शेख सुल्तान हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ये सोने पे अगर
1: लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ये पीछे सोने का कमोट लेकर पैदा

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction? Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111. Or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। Experienced and regulated immigration consultant शहबाज अकबर के साथ। Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims and Family Sponsorships. Call now at 416-855-9464. Green Star Immigration Solutions Canada.
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 9582015001500 और विजिट rahatbakers.ca.
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: पहले कि हम कस्टमर को ढूंढते हैं, कस्टमर ने हमें ढूंढ लिया।
1: अच्छा है ना, फालतू की लुक्का छुप्पी से बच गए। अब उसका पॉट उसी को बेचेंगे।
0: एक दफा तो मूतूंगा।
2: घर आई लक्ष्मी पे मूतते नहीं है रे।
1: ए सिंगाड़े उठा, इसे अंदर रख, फालतू में दोबारा पैक करना पड़ेगा।
3: ओ यार,
4: हेलो बेबी, और तुम्हारा ड्रेस मैं इधर ही ले आया हूँ घर पे। अब ये ही आके ट्राई कर लेना, ताकि सबसे पहले दुल्हन को दुल्हा जी देखें, हैं?
5: Moon, listen to me. There's been a situation. शेख का पॉट चोरी हो गया, पूरे स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
6: वो सोने का कमोड?
5: हाँ, मेरा फोन बंद रहेगा, घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो घर पे बता देना प्लीज।
6: हाँ बता दूंगा।
4: अच्छा सुनो, ओ फरहान, ओ सुन तो सही। ओए वो शेखल बकलावा था ना, उसका सोने का पॉट और चोरी हो गया।

0: मीना ने कहा था ड्रेस देखना, हमने खोला तो ये निकला।
1: ये क्या मून?
2: परी ने तो ड्रेस ही दिया होगा, ये कहां से आ गया? कोई कंफ्यूजन है।
1: सोना?
0: ओ सोना,
1: सोना।
2: फोन पे कह रही थी कि पॉट चोरी हो गया है, पुलिस आई हुई है, अब उसका फोन बंद जा रहा है, पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है?
3: मैं न्यूज में देखती हूँ, शायद कुछ आ रहा हो।
1: गुड आइडिया, लगाओ जल्दी।
4: कहा जा रहा है कि मालियत के एतबार से ये दुनिया की पांचवी बड़ी चोरी है, और इस नौयत की चोरी के पीछे किसी बहुत ही बड़े और खतरनाक गैंग का हाथ है। ये वाकया रोनमा हुआ है जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में, जहाँ शेख सुल्तान अल बकलावा ने ऐलान किया है कि जब तक उनका एक अमाउंट मिल नहीं जाता वो बाथरूम नहीं जाएंगे।
0: अबे ओ ठाकरे, जल्दी से फोन लगा बेचारे को, कहीं प्रेशर से फट ही ना जाए।
5: ए, तेरे हगने का बंदोबस्त हो गया है।
6: What?
5: We found your pot.
6: Good job.
0: शेख, एक घंटे के अंदर अंदर नेल्सन बुलेवर्ड पहुंच, पैसों के साथ।
4: गोल्डन कमोड चोरी हो गया है।
3: लगा फोन?
2: नहीं, उसका फोन अभी तक ऑफ जा रहा है। परी किसी मुश्किल में ना हो यार। सुनो, मैं पुलिस को फोन करने लगा हूँ, उनको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये बॉटम तक कैसे पहुंचा।
1: मरवाएगा, पागल हो गया क्या तू?
2: क्यों?
1: तू पुलिस को फोन करके सब कुछ बताएगा और वो मान लेगी? अरे पॉट के साथ साथ हमें भी उठा के ले जाएंगे।
2: और ये पाकिस्तानी पुलिस थोड़ी है।
1: वही तो, पुलिस पाकिस्तानी नहीं है, हम तो पाकिस्तानी है। और ऊपर से मुसलमान भी, चोरी के साथ साथ दहशतगर्दी का केस भी डाल देंगे। दुनिया में सबसे पतली गर्दन किसकी शकील भाई है? सारे फंदे हमें ही फिट आते हैं। दुनिया में जब भी कुछ बुरा होता है सबसे पहले हमें ही तो उठा के ले जाते हैं। देखो हम सब परेशान हैं, मिलके कोई हल निकालते हैं।
0: ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसको समंदर में फेंक देते हैं, ओसामा बिन लादिन की तरह।
3: नहीं, और... नहीं, नहीं, नहीं, एक सेकंड। घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। हम इसको गार्डन में दफना देते हैं, फिल्मों में वैसे भी यही होता है।
1: वो लाश को दफनाते हैं नैनो, ये कमोड है।
2: यार क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसा करने से क्या होगा? और पुलिस तो फिर भी ढूंढ लेगी इसको, और कुत्ते लेके पहुंच जाएंगे वो इसको तलाश करते। देखो हमें ये पॉट किसी भी तरह पुलिस तक पहुंचाना ही होगा।
1: एक आइडिया है, एक आइडिया है इस पॉट को पुलिस तक पहुंचाने का।
0: क्या?

0: वार्ड पुलिस को मिल तो जाएगा ना।
1: हाँ
0: चल चल।
1: शकील भाई उधर।

0: अरे कौन थे, कौन, अरे कौन थे तुम?
1: ये लो पांच।
0: अरे पाकिस्तानी नहीं चाहिए यार। हेलो
2: हेलो,
0: पॉट नेल्सन बुलेवर्ड में है, आके ले जाओ।
2: व्हाट,
3: अबे अंग्रेजी में?
0: गोल्डन पॉट इज एट नेल्सन बुलेवर्ड, कम कम
1: जल्दी
3: जल्दी,
0: कम कम गेट इट।
2: हु इज दिस?
0: ना मालूम अफराज।
2: व्हाट,
0: चलो गया।

0: Шех!
1: करने के लिए तो ये भी ठीक है, फिर सारे शेख को सोने का पॉट क्यों चाहिए? इतने सारे सोने से कितने लोगों की जिंदगी बन सकती है यार? बन तो हमारी भी सकती है। शनि भाई उठो, शनि भाई
2: कौन?
1: चलो चलो उठो, अरे उठ जाओ ना।
2: कार लेके जा रहा है यार।
3: Hold it, buddy. Not so fast. I want to see what's inside.

0: What the fuck's this? Where's the pot?
1: Pot to isi mein tha. Koi gadbad hai.
0: Lari cheaters.
2: Sheikh, hamari baat suno, Sheikh.
3: You call the police? Bastard, kullu arabi.
4: क्या कर रहे हैं यार? पुलिस आ जाएगी।
1: किस्मत दूसरा मौका दे रही है भाई। हम तब्दीली आ सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। चलो चलो, हिम्मत करो।

0: Good morning, ladies and gentlemen. I understand and appreciate that you've all been extremely anxious about this case. So it is my pleasure to announce that after a grueling investigation, we have managed to recover the pot.
1: After a day or two with our forensics team gathering evidence, it will be returned to Prince Sultan immediately. I would also like to take this opportunity to make mention of our detectives.
2: Oh, yaar, shukr hai, yaar.
3: Oh, mil gaya pot police ko. Wala. Oh, tera idea kaam kar gaya, Farhan meri. John. Oh, Shakil bhai, mubarka. Oh, chappiya. Eh, chappiya. Bhai, maajiwa. Oh, kya kya.
4: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
5: सुने आप लोग नाश्ता तो कर लें
4: हाँ हाँ
3: और नाश्ता ही बाहर करते हैं
5: मैकडॉनल्ड्स चलते हैं
3: ओए ओके हो गया फिर तो कौन है
4: फरार ये क्या हो गया शकील भाई चुप जाओ
5: पता चला पॉट मिल गया
3: पता तुझे क्या लग रहा है मैं अपनी शादी की खुशी में नाच रहा हूँ
4: शकील भाई ज़्यादा खुश हो शकील भाई मैंने खुद रखा था मेरी पुलिस कैसे लगी
5: हाय गाइस हाय
4: हाय हाय हाय हाय
5: नैना हाउ आर यू मुझे बताओ अब अगर जेट लैग उतर गया तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो बहुत मजा आ रहा है यहाँ भी क्या कर रही हो ये तुम क्या कर रही हो हेल्प करा रही हूँ पर हम तो नाश्ता करने के लिए बाहर जा रहे हैं
3: ओ,
5: तो पहले क्यों नहीं बताया आई एम आल्सो स्टार्विंग चलो चलो
3: चलो चलो एपिया सेब आओ जाओ आओ बेबी कांट वेट चलो आओ शकील भाई आओ फरहान जल्दी
5: चलो
4: चलो चलो चलो
5: नैना मेरे साथ चलो तुम वहीं से घर चले जाएंगे ठीक है
3: सी यू देयर टेक केयर
6: पॉट पुलिस तक कैसे पहुंचा
7: बॉस कसम से मुझे कुछ नहीं पता बॉस
6: पता तो तुझे है और तू बताएगा भी
7: नो बॉस नो नो बॉस नो
8: मुकतलुल नदाल रईस अल कुरूफ अल बला
9: ये क्या बोल रहा है शेख
8: यू ब्लडी खराबी
9: गाली नहीं शेख देखे सब में कुछ लोचा है अपने को सेटल करने दे
8: से तो तुम किया जो पॉट पुलिस को दिया
9: शेख पॉट पुलिस को हमने नहीं दिया वैसे भी तुझे पॉट चाहिए था ना वो हम देते या पुलिस क्या फर्क पड़ता है
8: फर्क पड़ता है पॉट में डायमंड्स दे
9: डायमंड अबे कौन से डायमंड्स
8: बिग डायमंड्स जो मैंने तुझसे खरीदा और पॉट में रखा
9: शेख चूतिया मत बना यार पहले तेरा पॉट चोरी हुआ अब उसमें हीरे आ गए थोड़ी देर बाद तू कहेगा कि तेरी 150 बीवियां और 500 बच्चे भी उसमें थे हम मान लेंगे क्या अबे तेरा पॉट है या पोतने का कान जो हर चीज उसमें घुसने जा रही है
8: घुसेगा तो पुलिस वाला अगर पॉट से हीरे निकले अगर नहीं निकले तो मैं ऐसा घुसाऊंगा कि हीरे तुझसे निकलेंगे समझा

0: और तुम्हें हीरे थे और हमें पता ही नहीं था।
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल।
0: क्या?
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल, क्योंकि उसी ने हमें बताया है कि पॉट में हीरे हैं। अब ना उसे हीरे मिलेंगे और ना पॉट। तो देखते हैं कौन किसके अंदर घुसता है।
2: क्या हुआ?
0: वो यार मून, हमने तुझसे कुछ छुपाया है।
2: ओ, क्या छुपाया है? क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है?
0: अब हम अमीर नहीं रहे यार। हमने तुझसे झूठ बोला था।
3: हाँ यार, हमारे साथ वही हुआ है जो हमने बैंक के साथ किया था।
0: फैक्ट्री चल गई यार मून, फैक्ट्री चल गई।
3: हाँ यार, हमारे तो दिवालिया निकल गया यार। फैक्ट्री के जलते ही हमारे पैरों से जमीन और सर से छत निकल गई। एक रात में सब खत्म हो गए यार, सब खत्म।
0: हमारे खाने के लाले पड़ गए यार। कसम से 3 दिन के बाद फ्लाइट में खाना खाया
3: और मैंने तो यार।
0: कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और फिर अचानक से एक दिन तेरा फोन आया दोस्त।
2: ओ यार, तो ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
0: क्या बताते तुझे यार, क्या बताते? हमने सोचा तू इतना खुश है, अपना दुख बता के तेरे रंग में भंग क्यों डाले हम।
3: हमारे पास तो तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है यार। तू इंसान नहीं है, फरिश्ता है। फरिश्ता?
0: हाँ फरिश्ता।
2: ओ यार, तुम लोग परेशान नहीं हो यार, हम दोस्त हैं, वी आर लाइक ए फैमिली। और तुम लोग का जब तक दिल करता है मेरे पास रहो यहाँ पे, मैं हूँ ना, सब देख लेंगे। हैं शकील भाई,
3: क्या बात की है यार।
4: टेंशन हो रही है।

0: Cekil Bey.
1: Ha. Adı?
0: Moon.
1: Ha?
0: हमने तुझसे कुछ और भी छुपाया है।
1: अब क्या छुपाया है वो भी बता दे।
0: वो पॉट पॉट था ना।
1: हाँ।
0: वो सोने का था।
1: हाँ। और ये बात पूरे साउथ अफ्रीका को पता है फरहान। चल आजा।
0: वो पॉट हम रात को वापस ले आए थे।
2: हाँ। मगर अब वो पुलिस ले गई है।
0: हाँ।
1: कहाँ से?
2: मेरा ख्याल है गाड़ी में से निकाल के।
1: वो गाड़ी में से?
0: फक।
1: अबे साले ऑस्टिन के सांप तेरी में। क्या बोले थे? क्या बोले थे? ओ फरिश्ता, ओ फरिश्ता, ओ साला चूतिया बना अपने गाड़ी के अंदर मुझे। तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? कह दो ना, कह दो मजाक कर रहे हैं। कौन सी मनहूस गली थी जब मैं तुम लोगों को यहां ले आया और टायर भी सार कर छोड़ देती है। जल गए है ना, जल गए मेरी खुशियों से जल गए।
0: अरे
1: झाड़ के किया तूने झाड़।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
1: तू क्या कह रहा था?
0: क्या
1: तू क्या कह रहा था? हैं रंग में भागी डालना चाहता और डाल दिया और तूने रंग में भागी डाल दिया यार। कीड़े पड़े तुम दोनों को। हेलो
3: क्या कर रहे हो? आ जाओ।
1: आ रहे चलो।
4: कितनी अच्छी जगह है ना।
3: हाँ? हाँ?
4: हाँ? जगह हाँ? अच्छी है। यू ओके?
1: या
3: थैंक यू।
5: कांग्रेट्स
3: फॉर व्हाट?
5: दे फाउंड द पॉट। आई कैन सी यू वर्क एट द ग्रैंड हेरिटेज होटल।
3: ओह या थैंक्स थैंक्स।
5: यू आर वेलकम। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट।
3: पूरे केप टाउन को पता है यार होटल की रेपुटेशन तो गई।
5: पता कितनी पुलिस आई थी।
3: अच्छा? पूरे स्टाफ को रोक लिया था। सारी रात इन्वेस्टिगेशन की है। लग रहा था जैसे हम ही चोर हैं। उल्लू के पट्टे। बट यू गाइस हैव नो आइडिया यहाँ की पुलिस का। बहुत ही तेज है। कैन यू इमेजिन एक रात में पॉट ढूंढ लिया।
4: वाओ।
3: आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट 24 आवर्स में तो चोर को भी पकड़ लेंगे। फिर देखता कैसा जूस निकालते हैं उसका।
4: निकालना भी चाहिए।
6: Please help us! We are Pakistani!
7: Currently the most wanted criminals by the police.
4: What are you doing, Farhan?
0: Sorry.
3: Are you okay?
0: Sorry.
5: Hope you're enjoying your breakfast.
4: I'm loving it.
3: I'm loving it.
5: Moon, bye!
1: Okay.
0: यार गलती हो गई, माफ कर दे। हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं।
2: हम आज ही चले जाते
1: हैं। सही बात है, बहुत अच्छे। और सारा कचरा करके है? और मेरे पीछे पुलसे लगा के अब कट्टे के चक्कर में हो। एक इंच नहीं ले दूंगा तुम लोगों को यहाँ से।
8: ओके आई एम फॉलोइंग।
1: और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ना तुम दोनों। ओ पुलिस पुलिस
0: पुलिस गाड़ी नहीं रोकता। गाड़ी नहीं रोकता।
1: मैं गाड़ी नहीं रोकूंगा। देखो गोलियां मारने का मुझे। इसको सच सच बता दो कि मेरा कोई कसूर नहीं है इस मामले में। मैं नहीं हूँ।
2: क्या कह रहे हैं?
1: इतनी शराफत की जिंदगी गुजार रहा था, कहाँ से आ गए तुम लोग?
2: हम तो तुम्हारी खुशियां बांटने आए थे।
1: यार खुशियां बांट रहे थे कि चाट रहे थे? कौन सा ड्रेस?
3: मेरा वेडिंग ड्रेस।
1: वो शादी वाला।
0: अबे ये तो गंदी फिल्मों का हीरो लग रहा है।
8: Your tire is flat. Your tire is flat.
1: Oh, thank God.
8: What?

0: जाए।
1: तो फिर पुलिस को क्या मिला?
2: सर, एक्सक्यूज मी सर, सो व्हाट डिड यू टेल देम दैट वी हैव द पॉट?
3: टू कंफ्यूज द थीव्स, गेट देम रिलैक्स्ड, गेट द कंप्लेसेंट, एंड देन वी गो आफ्टर देम हार्ड. They think they're so smart. They don't know who they're dealing with.
4: Hello?
5: CP police ko jo pot mila hai, wo apna hai. Bata kidhar hai.
4: Sala, lagta hai tum log ka bhi koi baap nikala hai. Police ko koi pot nahi mila. It's a trap.
6: अगर पॉट पुलिस को नहीं मिला और अपने पास भी नहीं है तो ये पॉट है कहां?
0: बॉस, गिव मी वन चांस बॉस, मैं पता लगा लूंगा बॉस कि पॉट कहां है.
7: पॉट यहां है और पुलिस को जो भी मिला है हमें एक और मौका मिला है. सोच बोल, इतना सारा सोना हमेशा के लिए गलाजत का ढेर बना रहेगा, लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो सैकड़ों लोगों की किस्मत चमक सकती है.
1: क्या?
7: अगर हम ये पॉट रख लें, हम इसे बेच के दोबारा फैक्ट्री ले सकते हैं. उसमें हजारों लोग काम करेंगे यार, उनके घरों के चूल्हे जलेंगे, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे. अरे लोगों के पास खाने को नहीं है यार, खाना तो क्या पीने का पानी तक खरीदते हैं यार लोग, और ये सलेच्चे, इनको हगने के लिए अरबों रुपए चाहिए. अबे जब लगेगी तो ना जंगल देखेंगे ना बिस्तर, कहीं भी पूत लेंगे यार. देख, ये अमीर लोग, ये लोग अगर आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी यार. मून सोच,
8: मून फरान ठीक कह रहा है यार.
7: कुछ बोल यार.
1: इसको रखेंगे कहां पे?

0: ओ यार ये तो लग नहीं रहा कि सोने का है ना।
1: शकील भाई ओ हग दे यार।
2: अरे उर्दू वाला नहीं शकील भाई, अंग्रेजी वाला हग दे।

0: कौन है?
1: बॉस चील लोग हैं। आई हैवन्ट सीन देम बिफोर। देसी लगते हैं।
0: एक काम कर, उठा ला। हम भी तो देखें ये नामालूम अफराद कौन है जिन्हें हम नहीं जानते।
1: ओके।
2: ये पत्थरी पता नहीं कब जान छोड़ी। आए फरान उठना यार, उठो यार, मेरे पेट में पथरी नहीं है।
3: लाउड वाली दाल नहीं खाई भाई।
2: अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, पथरी नहीं है, हीरे हीरे असली।
3: किस हटिया गया शकील भाई सुबह सुबह?
2: अरे चल के देख लो,
3: क्या बकवास है यार। यार मुंह समझो यार,
2: देखो अबे देखो
4: मुंह, ये देख कौन तेरी है।
3: शकील भाई क्या खाया था?
2: अरे यार तुम लोग ही बुफेट में ले गए थे, सब कुछ ही खा लिया था मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा था।
3: लग तो असली रहे।
2: हाँ
3: तू निकाल ना।
5: थैली लेके आता हूँ, थैली लाता हूँ, ठहरो जरा।
3: थैली
5: थैली थैली थैली थैली थैली थैली कहाँ थैली कहाँ थैली कहाँ है?
3: किधर रहता है? यहाँ देख ली, यहाँ पे इधर तो नहीं है। चाहिए आपको मिली?
2: अबे छोड़ो, घर में थैलियां कहाँ मिलेंगी? अरे वो तो अम्मिया होती हैं जो थैलियां छुपा के रखती हैं।
3: अरे चाहिए भाई बातें कम करो यार, ढूंढो यार।
2: अबे ढूंढो ओए। अरे कराची होता तो सड़क से उठा लेते। अबे
3: ये नहीं। निकल।
1: सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था,
6: हीरे देने वाला बुड्ढा पहली बार देखा है।
2: ओ अच्छा हुआ ऑपरेशन नहीं करवाया, वरना सारे हीरे डॉक्टर ले जाता।
3: शकील भाई फिर आएगी क्या?
2: अरे खिलाओगे तो आएगी ना, तेज गांव की तरह आएगी। इसमें क्या मसला है, ये क्या कोई रॉकेट साइज है?
3: मैं पकाता हूँ, मैं पकाता हूँ, मैं पकाऊंगा। चावल चावल तो खाओगे ना?
2: खिलाओ।
3: क्या खाओ? शकील भाई केला खाओगे? केला?
2: अबे एक से आना बंद हो जाएगी, दो खिला।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं, रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये लो दो खा, दो खा।

0: शकील भाई तुम्हारा पेट है पॉलिटिशियन, सब कुछ खा के भी कुछ नहीं कर रहा।
1: नहीं यार, मिस कॉल थी।
2: माश की दाल है तेरे पास? अब अबे चने पड़े हैं तेरे पास?
3: और शकील भाई एक बार जमाल को डका लो, सारे ही रे बाहर आ जाएंगे। हैं
4: आ गई।
0: शकील भाई कर ली?
1: अबे कर रहा हूँ यार, करो।
0: हाँ करो करो, आराम से खुल के। हाँ
5: पता है क्या मून, ये हीरे ना तूने बड़ी मेहनत से निकाले, ये सारे तू रख ले, अब जो भी निकलेगा।

0: Then let Talha serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: होगा वो मैं रख लूंगा।
1: पागल समझा तूने मुझे है? और इस दफा ज्यादा खाना खाया उसने, इतना ही रह निकलेंगे, सारा राशन भी खत्म कर दिया ऊपर से उसने।
2: शकील भाई कर ली।
3: शकील भाई क्या हुआ? हुई
2: शकील भाई हुई
1: ओई।
4: अबे लगता है जितने थे वो पहले ही निकल गए।
3: अच्छा झूठ बोल रहे हो, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, इसने छुपा लिया सब। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो, मुझे देखना है अभी, खोलो। अबे तू क्या कर रहा है? देख रहे थे, खोलो दरवाजा। तू छुपा लिया सब शकील भाई। शकील भाई ये क्या?
1: क्या बोल रहा था तू? इस बार जो भी निकला वो तेरा।
5: ले ले ले ले ले ले।
3: ये तो चले गए।
1: पाइप पे आ जाओ।

0: देखे तो गंदगी कितने साफ है।
1: हाँ यार, मैं भी पहली बार अंदर आया हूँ। कोई इनमें से हमारा भाई कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा?
0: शकील भाई, आप सुन के बताओ ना, आपको तो अपनी का आइडिया होगा।
2: अबे मैं क्या कुत्ता हूँ जो सुन के बताऊंगा, या मैं निंजा टर्टल हूँ जो गटर में रहता है।
0: लड़ो नहीं, हीरे ढूंढो, चल मुन पाइप ढूंढते हैं।

0: There's nobody. पर पॉट मिल गया बॉस,
1: उनको छोड़ पॉट लेकर आ।

0: क्या मिल गया?
1: ओ, पाइप मिल गया हमारा।
0: अबे मिल गया शकील भाई, पाइप मिल गया। ओ, निकल निकल निकल जल्दी निकल जल्दी निकल। देखे हाँ देखे
2: शकील भाई क्या
3: अबे क्या हुआ?
0: देख रहे कि नहीं है? अबे क्या हुआ
3: यार शकील भाई?
0: हाँ
3: यार लगता ही रहे तो आगे निकल गए।
0: कैसे आगे निकल गए? ठीक से देख।
1: और तू देख ले आगे यार, तू अपने नाक को साले।
3: पहले इतनी बदबू है यार,
0: हट यहाँ से। बदबू है यहाँ पे,

0: इनको रखे कहाँ पे?
1: अमन अमन तू यही रुकना, मैं दोबारा जाके फ्रेश करता हूँ, यही रुकना, चल चल चल चल।
0: अरे चुप चुप भाई,
1: चल चल आराम से। देखिए
2: आजा
1: शकील भाई।
2: ओह आए

0: तो शकीब भाई
1: अच्छा बेटा इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा बरी बना ली तुमने हाँ
0: वो अपनी खुशी से लाए भाई पूरे खानदान के लिए गिफ्ट्स होंगे ना सिर्फ बरी थोड़ी होगी है ना
2: देना अब बरी में तो सिर्फ ये झूल रही आंटी जी अगली
0: ओके
1: अच्छा
3: और ये भूल गया ओ, हाँ। ये कौन देगा
2: ये भी ये भी ये बड़ा कीमती आंटी जी तो संभाल के
0: प्लीज
1: उफ इट्स वेरी ब्यूटीफुल
2: है ना
1: डोंट वरी बेटा I'll put it in my safe.
0: Oh, very good. और इनका सेफ तो इतना सेफ है कि उसका कोड आज तक मुझे भी नहीं पता.
2: लो कर लो बात. बाजी बात.
0: शेख भाई,
4: यही रहना है. बोलो ना, बताओ ना.
0: वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
4: जी, हम तो आ रहे हैं.
0: हाँ. कहाँ से?
5: इसका मतलब है कि हम आपके आ रहे हैं
1: लेकिन आप लोग तो आ चुके
5: यही तो हम आपको बता रहे हैं आंटी कि हम आ गए हैं
0: मैं समझा ना
5: दरअसल हमारे यहाँ रस्म है कि शादी से दो दिन पहले लड़के वाले लड़की के यहाँ रहने के लिए आते हैं
1: मून बेटा
2: जी
1: ऐसी किसी रस्म के बारे में आपने पहले तो नहीं बताया
2: होता क्या ना कि लड़का जब
3: ये भी तो रस्म है आंटी ये भी तो रस्म है बताना नहीं होता बताना नहीं होता आंटी अगर बता देते हैं तो दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक बहुत बुरे तरीके से बीमार हो जाता है आंटी और कभी कभी तो
1: नहीं बेटा बताओ बताओ
3: आंटी ऐसे मुंह से निकली हुई बात भी तो कभी कभी सच हो जाती है ना वैसे पहले आंटी मैं इनमें से किसी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था बिल्कुल नहीं लेकिन जब मैंने नहीं माना था याद है आपको एन रुखसती वाले दिन नैना को चिकन पॉक्स
1: अच्छा क्या तुम लोगों ने बता दिया यू ऑल मस्ट स्टे हियर मस्ट आई इंसिस्ट
6: क्या बात कर रही आंटी पॉप इनकी बातों में आ गई इनकी आई डोंट बिलीव ऑल दिस नो
0: मून बेटा बड़ों की बात को मानना चाहिए और फिर आंटी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो फिर यू मस्ट हियर यस
5: हां मून देख ले फिर चिकन पॉक्स हां
3: आंटी चाय चाय बहुत अच्छी बनाती हैं आंटी
1: ओके
2: जी बड़ी
1: ये खाए ना आप लोग बिस्किट
5: वन बिस्किट
1: ये ले
5: वन ओनली
1: चिकन पॉक्स
2: हां जी जी
7: क्या हुआ ठाकरे
8: हाँ बॉस बॉस पूरी सस्ते के तो पार्ट
7: साले सिंघाड़े हीरे कहाँ हैं हीरे कहाँ हैं
8: बॉस हीरे तो पार्ट में होंगे
9: हीरे पार्ट में नहीं है
10: Where the fucking diamonds?
7: पहले तू कह रहा था हीरे पॉट में अब कह रहा है कि पॉट में नहीं है खेल रहा है क्या तू जानता है कि हीरे हमारे पास नहीं है
10: तो ढूंढो या तो मैं हीरे लूंगा या तेरी जान 24 घंटे तेरे पास अदरवाइज खलास

0: चलो ना,
1: कहाँ ले जा रही हो नैना?
0: पहले मेरी बात सुनो।
1: अच्छा देखो तो सारे,
0: नहीं ना इधर आओ।
1: क्या हुआ?
0: सुनो तो सही, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या नई नई कहानियाँ बना रहे हो तुम? कब हुए थे मुझे चिकन पॉक्स? चल क्या रहा है फरहान?
1: नैना तुम्हें नहीं पता बहुत मसला हो गया।
0: कैसा मसला?
1: अरे ये मोहन के हालात तो बहुत ही खराब है, हमसे भी ज्यादा फुकड़ है।
0: क्या?
1: हाँ तुम्हें पता है उसने हमें यहाँ टिकट देके क्यों बुलाया?
0: क्यों?
1: क्योंकि उसको लगा हमारे पास पैसे हैं, हम कर्जा चुकाएंगे उसका।
0: है?
1: हाँ बहुत खतरनाक लोगों से कर्जा लिया हुआ उसने, वो तो घर पे आ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकले। अब कहाँ जाते, होटल के पैसे तो है नहीं ना, तो दो तीन दिन यहीं गुजार लेते हैं, शादी हो जाएगी फिर निकल जाएंगे, फिर मुंह जाने और वो लोग।
0: बेचारी परी।
1: क्या बेचारी परी, हमें अपनी पड़ी है बेचारी परी, बताना नहीं किसी को। चलो चलो सब देख।
0: फरहान नहीं मुझे ये तो बता।
1: रहने दो ना, वो देखो सब। हाँ बहुत आ रहा, अरे हमारे नाचो नाचो।
2: अगर हीरे पॉट में होते तो पुलिस शेख को नहीं छोड़ती, इसका मतलब है जिसने हमसे पॉट उड़ाया हीरे उसी के पास है।

0: Moon.
1: तुम क्या कर रही हो इधर?
0: एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी।
2: करो बेबी।
0: ज़्यादा चिपको नहीं।
1: तू शांति से इनकार तो नहीं कर रही? वो क्या होती है वो लास्ट मिनट एंग्जाइटी, वो तो नहीं हो रही ना बेबी?
0: अरे नहीं यार, इम्पोर्टेंट बात है। वो शेखल बकलावा है ना, उसको मैंने फोन पे बात करते हुए सुना है।
1: क्या कह रहा था वो?
0: वो किसी को कह रहा था कि जो पॉट है ना, उसमें हीरे थे। और अब हीरे नहीं है।
1: ये बात तुमने पुलिस को तो नहीं बताई ना बेबी?
0: नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बता देनी चाहिए।
1: यार, पुलिस को थोड़ी बतानी है, पुलिस को नहीं बताते बेबी। ये शेख लोग जो होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, हैं? तो तुमने ये बात तो नहीं बताई ना किसी और को?
0: नहीं।
1: भूल जाओ, हैं? बिल्कुल ही भूल जाओ। और दो दिन में शादी है हमारी,
0: तो
1: क्यों बुलावा हम हीरों के चक्कर में पड़े?
0: लेकिन मैं सोच रही थी कि
1: और नहीं सोचो ना, तुम ना सोचो। अब तुम जाके वो लो, वो ब्यूटी स्लीप लो, हैं? वो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे आपको। जाओ शाबाश।
0: Okay.
1: सो जा जाके। गुड नाइट, बाय।
0: आर यू श्योर कि नहीं बताना चाहिए?
1: ओ यार, मैं करता हूँ हीरो का कुछ, हैं? आप सो जा जाके। ओके
0: ओके ओके।

0: मैं तो कहता हूँ हीरे बेच देते हैं।
1: और बेचेंगे तो तब ना जब हमारे पास होंगे। हीरे तो आंटी के पास रखवा दिए थे।
2: तू तो ऐसे कह रहा है यार जैसे 10 साल बाद शादी। अरे कल शादी है, कल मिल जाएंगे हीरे, परसों भेज देंगे।
1: एक काम कर दो, उधर आ, नुक्कड़ पे खड़े होते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई हीरे ले लो, हीरे ले लो हमसे।
0: अरे
1: और हीरे है, खीरे नहीं है, जो एमवी बिक जाएंगे। करोड़ों का पॉट है शेख का, करोड़ों का, तो हीरे कितने के होंगे? एमवी चलते फिरते कस्टमर मिल जाएगा। मेरी बात मानो, चुप करके ना शेख को हीरे वापस कर देते हैं। जान भी बच जाएगी और इज्जत भी, सुकून की जिंदगी गुजारते आगे। क्यों बहुत हो गया यार एडवेंचर, बस अब।
3: मून सही कह रहा फरवान, बहुत हो गया एडवेंचर।
0: ठीक है यार, हीरे शेख को वापस कर देते।
1: हाँ।
0: लेकिन मुफ्त में नहीं।
4: तुम मून को कब से जानती हो?
5: It seems like I've known him forever.
4: तो तुम मून के बारे में सब कुछ जानती हो?
5: Of course यार, और वो भी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन हाँ एक बात नहीं जानता।
4: वो क्या?
5: तरा,
4: ये क्या है?
5: उसके घर की चाबी। एक नंबर का भुलक्कड़ है वो। मैं कब से कह रही हूँ मुझे मेरा शादी का जोड़ा ला दो, मेरा ड्रेस ला दो, लेकिन ला के नहीं दे रहा। अब क्या मैं शादी का ड्रेस शादी के बाद पहनूंगी?
4: परी, हम मून के घर नहीं जा सकते।
5: हम मून के घर आ गए हैं। बस ड्रेस उठाएंगे और हम अभी चले जाएंगे।
4: परी
5: बस 2 मिनट यार, 2 मिनट लेंगे। चलो चलो
4: परी, मेरी बात, परी मेरी बात तो सुनो।
5: अरे यार अभी हम निकल जाएंगे, बस 2 मिनट
4: हम बाद में। मैंने बोला था ना कि बाद में आ जाते हैं।
3: सोना और हीरे दोनों एक साथ थे, औरत ने तो हाथ मारना था।
6: साला, लगता है लाइफ लॉन्ग ज्वेलरी बनाने का प्लान था।
3: चले
4: जी जी,
0: अपने कपड़े और जेवर ठीक कर लो।
3: प्लान क्या है?
0: पता नहीं। सोचा नहीं ना,
1: बिना प्लान के यार के पागल हो।
0: अरे रिसेप्शन पे चल के शेख का रूम नंबर किसी तरह निकालना है, अपना सारा जनान अपन इस्तेमाल करो। ठीक है चल।
3: Hello, beautiful.
7: Hello, beautiful. What? I'm here to see Sheikh Baklava. Could you please tell me where the princess is staying?
0: Selfie.
7: Sheikh Baklava. Don't shoot, please. I'm just a big fan. You're so gorgeous. Can I take a selfie with you, please? Just one. Please make a bout. You're so lovely, I can't believe this.
8: Mr. Baklava, you're so handsome.
7: He's right. Oh, she's right.
8: And so big.
7: Too big.
6: You are too what?
7: Hot.
3: Shukran. Shukran.
7: Naughty Sheikh.
3: Why don't you come to my room?
7: No.
3: I will treat you with some baklava. It make your life more flavorful.
6: I love all kind of flavor.
8: And I love baklava.
3: Okay, come with me.
7: Let's go.
3: खली
7: So sweet. Oh, don't do this. Oh, come on.
9: No, come on.
7: You know.
1: Oye, it's poison. Chup, chup. Shor mein jayega na, to dba denge andar.
9: If you want your diamonds, call on this phone, okay?
7: तेजाबी पप्पियां ले रहा हमारी.
10: Bye, बक्कू.
9: साले का फोन भी सोने का यार. चलो चलो.
4: हम किडनैप हो गए हैं परी, और अब हमें रेप होने से बचना होगा. हाँ,
5: तुमने यूट्यूब पे सेल्फ डिफेंस वीडियोस देखी है ना?
4: हाँ. नहीं.
5: ओके, देन जस्ट फॉलो मी.
4: थोड़ी सी पता है क्या, आप लोग इतने डिसेंट लोग लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि किसी लड़की को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना? पता है क्या, आप लोग हमें प्लीज जाने दें, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, है ना? मून आपके सारे पैसे वापस कर देगा. इजी सिंपल, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन.
6: अरे चौपाटी की पानी पूरी, पर हमें तो पैसे चाहिए ही नहीं. छिपकली
3: हीरे कहाँ
2: है? साला नाम बकलावा और इतना कड़वा, दिल कर रहा तेजाब से कुल्ली कर लूं.
1: तू एक काम कर, तू हार्पिक पी ले.
3: यार मैं तो कह रहा हूं कि यार इसको चार्ज करो, बकलावा फोन करेगा तो ये बंद.
2: अरे जानबूझ के बंद किया शकील भाई, जानबूझ के बंद किया है. रस्ते तड़पने दो, थोड़े रेट बढ़ाते हैं. कितने पैसे मांगे?
3: नहीं नहीं, मैं कहता हूँ पैसे वैसे छोड़ो, एक दो तेल के कुएं मांग लेते,
2: एक तो जहाज भी मांग लेते, दो चार महल भी मांग लेते, 70-80 टन सोना भी मांग लेते. ये शेख है आमिर लाकर. सिर्फ कैश की ऑप्शन है हमारे पास, कैश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. क्यों मुन सही कह रहा हूँ, तू बता.
1: देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी से जो भी देगा ना, चुप करके रख लेंगे. वैसे भी टाइम कम है हमारे पास.
2: अबे हीरे बेच रहा है सिग्नल पे फूल, जितने खुशी से दे देगा रख लेंगे. अरे भाई रहने दे यार तू, मैं खुद ही कर लूंगा. इस डील के बीच में तू मत पड़, तेरे जितने पैसे होंगे ना तेरे मुंह पे मारेंगे एंड में.
3: हाँ तेरे मुंह पे मारेंगे गरीब लोग.
1: हेलो,
11: कल सुबह 10 बजे अटलांटिस फैक्ट्री आ जाना.
1: कौन बात कर रहा है, कहाँ जाना?
6: क्योंकि हीरे तुम्हारे पास हैं.
2: नैना,
3: नैना,
2: नैना,
3: और लड़कियां हमारे पास. अब जल्दी से गूगल खोल और यहां पहुंच.
6: ले आ लौंडियां.

0: The phone is powered off.
1: Find the location.
2: Shit!
3: Oh, ये तो आंटी के पास है। अब वहाँ से कैसे निकलवाएंगे चोर?
2: तुझे तो पता होगा ना कि आंटी लॉकर कहाँ रखती हैं। मैं सोच रहा था कि
1: अबे, जेम्स बॉन्ड, तू अपनी प्लानिंग बंद कर दे यार, तेरी मेहरबानी। बच्चियां अगवा करवा दी यार तूने। मून, तू सोच यार, मैं भी सोचता हूँ।

0: अब मैं कुछ कहूं, नैना भी उन लोगों के पास है शकील भाई।
1: इन्हें ऊपर रख देना ठीक है, और फिर रूम की कीज मुझे दे देना। थैंक यू। Why is her phone switched off?
2: कोई आंटी को देखा कहीं? आंटी जी, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको।
1: और मैं परी को कब से ढूंढ रही हूँ। परी परी
2: हाँ परी, परी ने ये भेजी आपके लिए, डायमंड की रिंग है, संभाल के रखना सेफ के अंदर।
1: लेकिन ये लोग खुद कहाँ हैं? फोन भी बंद आ रहा है उसका।
2: वो ही आंटी जी, वो लड़कियों की लास्ट मिनट शॉपिंग, यू नो, आ रही है, आ जाएगी बस। तो
1: उसे कहो मुझे फोन करे।
2: हाँ जी।
3: आंटी को पता लगने से पहले परी को घर लाना होगा। हाँ
1: कौन है?
4: रिंग रख दी से
1: आपने? बस दो मिनट देना बेटा।
4: टेक योर टाइम, टेक योर टाइम।

0: फेफड़े जल जाएंगे।
1: हाय, सुबह से सिगरेट तक पीने का टाइम नहीं मिला। कल शादी है, फिर परी चली जाएगी। इतनी मुश्किल से पाल कर बड़ा करो और फिर कोई उल्लू का पट्ठा आता है, दो दिन में आई लव यू बोलता है और आपकी बेटी को ले जाता है। लुक एट हिम एंड लुक एट हर, जैसे हूर के साथ लंगूर। पता नहीं परी ने क्या देखा उसमें, क्या पता दिल का अच्छा हो।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपकी हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: तूने कोठी में लाया वीडियो गेम बनाया यार।
1: अब क्या करें? मुझे लगता है लॉकरी उठा लेते हैं।
0: अरे कोर्ट का क्या करेंगे?
1: लॉकर तो उठा लेते, फिर कोर्ट को भी देख लेंगे ना।
0: कोई है?
1: जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्द

ये तो कपड़े उतारो, शर्ट में टैटू भी है इसका, देखो सूरज बना हुआ है, टैटू कितने बाल है इसके। अभी जाना।

0: 가요. 아주 저기 빨리 하죠. 잘하게 잘하게. 얼마리만 끌어, 얼마리만 끌어. 저. 오빠 안 잘리가 이 아저씨 앞에서 미래 가면 왜 간다 잘리 가루? 꼴이 니 받아. 또 너네 वीडियो नहीं बनाई थी? तुझे किसने कहा था पीछे से आवाज देने के लिए? आंटी सामने आ गई कद्दू कुछ नजर नहीं आया। तू ट्रिपल जीरो ट्राई कर। अबे ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो ट्रिपल नाइन सारी ट्रिपल ट्राई कर ली नहीं खुल रहा।
1: हाँ सारे ट्रिपल ट्राई किए।
0: अबे तू रोक मुंह। मैं इसको तोड़ के खोलूंगा शकील भाई। रोक गाड़ी, रोक जल्दी, रोक
1: रोक।
0: अबे रोक दे।
2: अबे हाँ
0: पत्थर पत्थर पत्थर पत्थर। अरे मुंह पत्थर ढूंढ। अरे शकील भाई पत्थर ढूंढो।
3: अरे स्तंजक करेगा क्या?
0: अरे चुप शकील भाई।
2: अब तो इसका कोड अंटी बताएगी।
0: हो गया हो गया ठीक हो ना?
4: आपा है ना, कितना मजा आ रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। देखें डांस हो रहा
5: है। भाभी कहाँ बैठी हैं? आए ना बच्चे, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं।
6: हाँ मैं आती हूँ, आप जाओ।
5: अरे मून बेटा कैसे
0: जी,
5: हो
0: जी, आओ जी बैठो बैठो।
2: आंटी जी, वो परी ने रिंग वापस मांगी थी। वो कोई और डिजाइन पसंद आ गया उसको।
6: दिस गर्ल इज सो कंफ्यूज्ड। और उससे जरा पूछना बारात से पहले घर आ जाएगी। लेट मी गो गेट द रिंग।
2: सोनिया रिलैक्स, लिसन। लॉकर प्रोटेक्टेड है, कोड लगा हुआ है और वो सिर्फ आपको मालूम है, राइट? वो कहीं भी खुलवाने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा, रिलैक्स। और वैसे भी अलार्म है उसमें, तुम देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा। मुझे बताइए खाई क्या उसमें? ज्वेलरी थी ना, ज्वेलरी, जान का सबका समझो। रिलैक्स सोनिया रिलैक्स, देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा, प्लीज। फोन लो, आ गया, उठाओ ना।
7: हेलो,
8: तुम्हारी बेटी और लॉकर दोनों हमारे पास है। कोड बताओ और बेटी ले जाओ। कोड बताओ,
7: परी
8: बताओ, कोड
7: परी किडनैप
8: हो गई।
0: क्या
7: परी
0: इधर दे। हेलो
2: सॉरी, कौन बात कर रहा है?
0: हेलो मून, अबे अबे आंटी को फोन दे।
8: अबे आंटी को फोन दे मून।
2: सोनिया
0: अबे क्या कर रहा है मून? अबे भेड़ के आंटी को फोन। हेलो, अरे ये किधर फंस गए शकील भाई, क्या बकवास है।
2: अंकल आप आंटी को संभालिए, ठीक है? परी को मैं वापस लेके आता हूं।
0: ये सब माओ का दिल इतना कमजोर क्यों होता है? कोर्ट बताकर बेहोश हो जाती बुट्टी।
1: आए मैं तो कहता हूं ये कोर्ट वोट का चक्कर छोड़ो, ऐसे ही दे देते हैं। देखो ना इतने बड़े गुंडे हैं, लड़कियां उठाई हैं, इसको भी खोल लेंगे।
0: सही कह रहे शकील भाई, सही कह रहे ना मून।
2: यार खुल जाता तो अच्छा था, उन्होंने तो सिर्फ हीरे मांगे, जेवर तो बच जाता, लेने के देने पड़ गए यार।
0: अबे तू कैसा घटिया आदमी है यार मून, वहां नैना और परी पता नहीं किस साल में और तुझे ज्वेलरी की पड़ी। शर्म कर यार,
1: अजीब आदमी है तू।
2: मैं तो सिर्फ कह रहा था कि हीरे।
0: क्या क्या कह रहा था?
2: कुछ नहीं,
0: बस अब जल्दी से सुबह हो जाए यार।
1: हाँ यार।

अरे उठो, चलो चलो चलो चलो चलो शकील भाई, चलो उठ जाओ, आज आराम से देख, आज आज आज चला जाऊँ, चलो

0: पट रही है ना।
1: और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग हीरे लेने के बाद हमें छोड़ देंगे।
2: तो फिर एक वादा करते हैं, अगर आज हम यहां से जिंदा बच गए ना तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे आज के बाद। हाँ?

0: Sir, we found the location.
1: यार, वैसे हमारा कोई बैकअप तो होना चाहिए था।
2: सुनो, एक काम करते हैं।
1: क्या?
2: तुम लोग अंदर जाओ, मैं बैकअप पे खड़ा
3: हूँ। चलो अंदर।
2: अरे मैं तो पहले ही कह रहा था अंदर चलो, तुम लोग खड़े बातें कर रहे हो यार।
3: कैरन, चलो
2: चलो चलो चलो चलो।
1: सलामुअलैकुम।
2: हीरे कहाँ हैं?
1: लड़कियाँ?
3: हाँ, लड़कियाँ कहाँ हैं?
4: ए शाणे, बहुत जल्दी है रे तेरे को।
2: नहीं भाई, वो बात दरअसल ये है कि कल इस बेचारे की शादी है।
4: तो बारात यहीं ले आते, अग्नि पे फिरा देता इसे।
2: हीरे कहाँ हैं?
1: हीरे इसमें माई बाप।
2: खोल
1: भाई, वो कोड नहीं पता।
4: अच्छा शाने, लॉकर तेरा, हीरे तूने इसमें रखे और तेरे कोई कोड नहीं मालूम, ये ला समझा क्या?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो भाई कुछ नहीं समझा, वो ये लॉकर भी हमारा नहीं है।
4: साले तेरी तो
2: बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई, दो मिनट दे दे, दो मिनट, मैं पूरी कहानी बताता हूँ भाई।
3: भैया,
2: ये दो मिनट की कहानी दस मिनट में सुनाएगा। ओए तू, तू सुना।
1: मैं देखिए, ये लॉकर है, ये इसकी सांस का है
5: मेरी,
1: और कोड भी उन्हीं को पता है। हाँ। लेकिन वो बता नहीं सकती।
2: गूंगी है क्या?
1: नहीं नहीं नहीं, वो बेहोश है ना।
5: बेहोश
2: क्या?
1: हाँ वो
5: भाई भाई भाई भाई, मैं बताऊं?
2: तू बता
5: भाई। जब हमें ये हीरे मिले ना, तो मुझे लगा कि हमें इनको किसी सेफ जगह पे रखना चाहिए।
1: हाँ।
5: तो मैंने ये हीरे उठा के अपनी सास को दे दिए।
1: हाँ।
5: मेरी सास ने हीरे उठा के इस लॉकर में रख दिए।
1: हाँ।
5: अब मेरी सास को थोड़ी पता है कि वो लॉकर में हीरे रख रही है, क्योंकि अपनी सास को ये हीरे देने से पहले ना मैंने ये हीरे ज्वेलरी के डिब्बे में डाल दिए। तो ज्वेलरी के डिब्बे में हीरे, और हीरे डिब्बे के लॉकर में, और लॉकर के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर हीरे, हीरे डिब्बे में, ये सास को नहीं पता, तो इसीलिए डिब्बे के अंदर आपके हीरे महफूज है।
4: तो लॉकर में क्या है?
5: हीरे।
4: लेकिन हीरे तो डिब्बे में।
1: अरे तो हीरे तो डिब्बे में ही है ना।
4: तो डिब्बा लाना चाहिए था ना सालो।
2: ओ यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे बताने दो। देखो भाई को गुस्सा आ गया।
1: सॉरी
2: भाई, मैं बताऊं?
3: बस ओए, बस बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। ठाकरे, एक कोड़ा सारा सच बाहर आ जाए।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं,
4: मेरे को सुननी है कि साली असली कहानी है क्या।
1: हाँ।

0: বল, তু বল।
1: থ্যাংক ইউ ভাই, থ্যাংক ইউ। ये जो लॉकर है ना, ये इसकी सास का।
2: अबे इसकी सास की माँ की।
1: अरे भाई भाई भाई भाई, बात कंप्लीट होने दो ना, बात कंप्लीट होने दो। देखो ये इसकी सास का और उसकी बेटी को आप उठा कर ले आए, जब उसको पता चला तो वो बेहोश हो गई। अब अगर उसके होश आने का हम वेट करते तो यहाँ आने के लिए लेट हो जाते, तो हमने सोचा कि हीरे सबसे पहले आपके पास पहुंचने चाहिए, तो हम ये ले आए। और माशाल्लाह आप इतने बड़े गुंडे हैं, एक गोली चलाएंगे साले का भेजा बाहर आ जाएगा।
3: सही
4: ओए,
3: सही कह रहे।
4: कोई होशियारी तो नहीं कर रहा ना तू?
3: नहीं नहीं बॉस,
1: नहीं नहीं
3: नहीं नहीं, होशियारी बंदूक के आगे कौन होशियारी करेगा बॉस। आप बोले तो अपना फोन और ये वॉलेट ये भी रख देता हूँ, कराची में तो हमें आता था।
4: साले डेढ़ो शियार, तुझे क्या लगा था अलार्म बजते ही लॉकर से पुलिस बाहर आ जाएगी? हैं साले चूहे।

0: की फायरिंग क्यों हो रही है?
1: मेरी शादी थी यार, मैं तो कुंवारी मर जाऊंगी।
2: शर्म नहीं आती तुम्हें? अजीब आदमी है, इतनी जोर से मारा मेरे सर पे घोबड़ा बन गया, पहले मेरे पांव पे लगा।
3: अरे यार शकील भाई, तो बिल्कुल सही हो गए, ये तो अगला ही नहीं रहे।
2: पर ये गोलियों की आवाजें क्यों नहीं आ रही? के सारे लोग घर चले गए।
4: ओ यार लगता है शकील भाई बहरे हो गए।
2: तुम लोग मुंह क्यों चला रहे हो?
3: अरे सुनो
2: नैना
3: शकील भाई आप यही रहना, बहुत फायरिंग हो रही है, आप अपना ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ।
5: क्या शकील भाई आपने इधर ही रहना है, ठीक है? हम लोग आ रही है लड़कियाँ छुड़ा के, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है।
2: पेशाब करने जा रहा है यार, ये कमाल है यार, पेशाब करने जाओगे तो लड़कियों को कौन छुड़ाएगा?
3: ओ परी,
1: ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ परी, ओ

0: अबे क्या हुआ?
1: स्टार्टिंग में
0: अबे तो किसने कहा था 2017 में 1960 की गाड़ी रखने के लिए पागल?
2: अबे फास्ट एंड फ्यूरियस में तो ठीक चलती है।
0: अबे तो चला ना।
3: क्या बात हो रही है?
0: चुप कर बे।

0: आप वैसे इतनी टेंशन ले रही थी, रिलैक्स ना करें।
1: स्माइल प्लीज।
2: आज हम आखिरी बार साथ हंस रहे थे क्योंकि हमने वादा किया था कि अगर जिंदा बचे तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। मून की तो हो रही थी हैप्पी एंडिंग और हमारी पाकिस्तान में लैंडिंग। मनहूस हीरो ने सबको जीरो कर दिया। इकबाल ठाकरे की हड्डियों के साथ साथ उनके भरम भी टूट चुके थे। पुलिस ने कूट कूट कर शेख की असलियत भी उगलवा ली और अब सुल्तान अल बकलावा अपनी शाही तशरीफ सोने पर नहीं बल्कि जेल के गंदे पॉट पर जमाता। पर ऑफिसर फ्रेडरिक अपनी जिद का पक्का है, हीरों के मिलने तक उसकी तलाश जारी रहेगी।
3: Excuse me, आमिर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। बेटा सब कुछ तो चोरी हो गया था, बस ये एक बॉक्स मैं लॉकर में रखना भूल गई थी।

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
4: Rahat Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karda mithai, cakes, biscuits and snacks. वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।

0: बड़ी देर के बाद जो है वो डांस करने को दिल किया है। इतना मजे का गाया है सामिया ने, बहुत अच्छे। शाजिया मंजूर साहिबा ने भी इसको बहुत अच्छा हक अदा किया इसको गाने का, के पूरी दुनिया में ये सुपर हिट हुआ। और सामिया आपने भी बहुत अच्छा गाया,
1: थैंक यू सो मच,
0: जस्ट लव दिस परफॉर्मेंस।
1: थैंक यू
2: मलकू स्टूडियो सीजन 1।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्फ मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है। दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते के नंबर है 905-257-1342।

0: बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।
1: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
2: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at Law and Personal Injury Lawyer, at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
3: SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection. 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service. 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444.
4: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, it's 9058280009. You log in ho alkaramjewelers.ca. Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari.
5: Apne pyaar

0: आईसीसी इमिग्रेशन के आरडीएमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर ले 905-461-2424। इट्स 905-461-2424। आईसीसी
1: इमिग्रेशन। लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही।
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें। आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157।
4: जी हाँ, 4165700157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान न हो, मैक्सिमम कंपनसेशन आपको दिलवा देंगे। फीस हमेशा के हिसाब से होता है, उसके बाद ली जाती है। बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ अंजुम कुरैशी साहब बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, इसी प्रोफेशन में है फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम, और इनका नाम और एक्सीडेंट क्लेम जुड़ा हुआ है। नंबर अपने पास महफूज करें, 4165700157। खुश आमदीद कहेंगे अंजुम कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आपने सही कहा कि जब से मैंने ये काम करना शुरू किया है, जब से मैं लॉ फर्म के साथ जुड़ी हूँ एज ए कोऑर्डिनेटर, मैंने कभी अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं किया। और यही वजह है कि 27-28 साल से मैं पर्सनल इंजरी की दुनिया में हूँ। जब आपको इतना लंबा अरसा हो जाता है तो आपकी एक पहचान बन जाती है। लोग जहाँ पर भी एक्सीडेंट का नाम आता है, लोग कहते हैं अंजुम कुरैशी का नाम जहन में रहता है। तो जब आपका इतना बड़ा तजुर्बा होता है तो आपको ये बहुत आपकी जिम्मेदारी होती है कि जो लोग आपके पास आते हैं या हमारे लॉयर्स के पास आते हैं, उनको जिस तरीके से डील किया जाता है या उनका जिस तरह मुझ पर एतमाद होता है, हम उसको कायम रखें। और हम कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को, इस जो हमारा आपके साथ रिलेशनशिप है, इसको हम जरूर बेहतर तौर से लेकर चलें। लेकिन इसमें जितनी हम कहते हैं कि कार एक्सीडेंट में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे वो कहते हैं कि भाई लॉयर ने अच्छा काम नहीं किया या मुझे क्लेम नहीं मिला, लेकिन उनको अंदर की सच्चाइयां या ये नहीं पता होता कि जहां पर एक लॉयर की जिम्मेदारी कार एक्सीडेंट को सेटल करना है, वहां पर जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व है उसकी अपनी भी बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं कि झूठ ना बोले, अपने लॉयर के साथ आप जो रिलेशनशिप करते हैं, आप जो उसके साथ रिश्ता बनाते हैं, वो एक भरोसे का रिश्ता होता है, एतमाद का रिश्ता होता है। वो समझता है कि आप उसको जो भी बात बताओगे सही बताओगे। ये आज बात मैंने इसलिए निकाली अरशद कि अभी हमारे पास कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स आए, जब आपका कार एक्सीडेंट होता है आप 911 कॉल करते हो, पुलिस आ जाती है सीन पे, लेकिन कुछ सूरतों में कहा जाता है कि आप कलिजन सेंटर जाके रिपोर्ट कर दीजिए क्योंकि वहां पर पुलिस बिजी होती है और माइनर एक्सीडेंट में वो नहीं आती। लोग जब कलिजन सेंटर जाते हैं तो वो अपना पूरा बयान बदल देते हैं कि एक्सीडेंट कैसा हुआ। ऐसी सूरत में इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्टिगेशन करती है और जाहिर है कि अगर झूठ होता है तो बाज़ वक़्त पता चल जाता है, बाज़ वक़्त नहीं भी पता चलता। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाज़ वक़्त जैसे मिसाल के तौर पे अकेले थे, वहां गए स्टेशन और उन्होंने कहा कि मेरी बीवी बराबर में बैठी हुई थी या मेरी बेटी बैठी हुई थी या मेरा दोस्त बैठा हुआ था, ये कलिजन सेंटर जाके जो ना एक पैसेंजर की बजाय दो पैसेंजर लिखवा दिए। पूरा साल एक्सीडेंट चलता रहा, केस चलता रहा। जब सेटलमेंट का टाइम आया और थर्ड पार्टी को डिस्कवरी के लिए कहा जाता है, वहां पर वो जो दूसरा ड्राइवर था वो डिक्लेयर करता है कि ये गाड़ी में सिर्फ एक था, दूसरा तो कोई था ही नहीं। फिर जाहिर है कि दोनों इंश्योरेंस कंपनियों के कान खड़े होते हैं और आखिरकार जो सच होता है वही सामने आता है। तो ना सिर्फ आपका क्लेम डिक्लाइन हो जाता है बल्कि ये फ्रॉड में आ जाता है कि आपने झूठ बोला और बिला वजह एक ऐसे बंदे को आपने एक्सीडेंट में डाल दिया जिसका कोई नामो निशान ही नहीं था। तो ऐसी बातें जो आपके क्लेम को लालच, हर इंसान की फितरत है कि एक लालच होती है कि चलो पैसा मिलेगा, लेकिन जो आपका सही राइट है, जो आपको सही तरीके से इंश्योरेंस कंपनी आपको आपके क्लेम का पैसा दे रही है, आपको इनकम रिप्लेसमेंट का पैसा दे रही है, आपको इंजरी जो है आपके ट्रीटमेंट का पैसा दे रही है, तो जो आपका हक बनता है उसके लिए फाइट करना कोई मुजायके की बात नहीं है। जरूरी है कि आप करें और आपके साथ एक लॉयर हो, लेकिन झूठ बोल के अपने केस को जेपिटाइज कर लेना, लोगों की बातों में आ जाना कि किसी ने आपको ये मशवरा दिया कि ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, ऐसा कर लो तो ये हो जाएगा, प्लीज खुदारा इन चीजों को समझिए कि हम उस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून का इम्प्लीमेंट है। अगर हमारा झूठ पकड़ा जाएगा तो कल को आप किसी और को नहीं कहेंगे कि फलाने ने मुझे कहा था, उसको जाके पकड़ो, मुसीबत आप ही के सर पे आएगी। तो किसी भी किस्म का झूठ इंश्योरेंस कंपनी से मत बोलें ताकि आपके क्लेम को सही तरीके से प्रोसेस किया जा सके। हमारे पास टीम ऑफ लॉयर मौजूद हैं जो न सिर्फ आपके क्लेम को डील करते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद लेते हैं। कोई भी आपका कार एक्सीडेंट है, एट फॉल्ट नॉट एट फॉल्ट, پلیز مجھے کال کریں, میں آپ کی اپنی انجم قریشی 416-570-0157 میرا نمبر ہے. بہت بہت شکریہ.
4: بہت شکریہ انجم قریشی صاحبہ, اور منڈے انشاءاللہ آپ سے بھی بات کرتے. تھینک یو. نمبر نوٹ کیجیے 416-570-0157 416-570-0157 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم. صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں ہی فیصلے کرتا ہوں, میں ہی کروں گا, کانگریس جو ہے وہ فیصلہ نہیں کرے. بعض یہ خبریں تھیں کہ ان سے جو ہے اب وہ کیا فیصلہ نہیں کر سکیں گے, ان کی ختم ہو گئی ہے جو کہہ لیجیے اتھارٹی, لیکن ان کا کہنا ہے کہ میری ہی اتھارٹی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران سے بات چیت ہو رہی مگر آگے نہیں بڑھ رہی, اور اس کے ساتھ ایران کا کہ 90% ان کی بحریہ اور فضائیہ تباہ ہوگی. بہت سی باتیں اس حوالے سے کی ہیں, تھوڑی دیر میں سے بات کریں گے, لیکن اس وقت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں آج کی اشاری.

छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते, तेरी मसरूफियतें जानते हैं, अपने आने की खबर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते। वो मुसाफिर खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। खाक ही अव्वल व आखिर ठहरी, करके जर्रे को गौहर क्या करते। राय पहले से बना ली तूने, दिल में अब तेरे घर क्या करते। इश्क ने सारे सलीके बख्शे, हुस्न से कस्बे हुनर क्या करते। जब सितारे ही नहीं मिल पाए, लेके हम शम्स व कमर क्या करते।

0: हजार का, तो मतलब हम जाने जाते हैं उनके लिए। तो कई बार मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि किसको ऐड करें, कि माइकल मिनी को बताएं आपको 1500 बचत हो रही है, जैसे लेस वर्थ का वो एशले का पावर रिक्लाइनर है हमारा ऑलवेज ओवरसोल्ड रहता है, कि वो मिलता है 2299 का, हम बोलते हैं 1499 का पावर लैदर का, मतलब एक सोफा है। तो मैं नटशेल में ये कहूंगा कि जो आप ढूंढ रहे हैं एक बार क्या फोन द्वारा भी हमारे किसी स्टोर पे कॉल कर लें, बातचीत कर लें, अगर आप मुबारक कदम आपके ले आएंगे तो हम आपके एहसान मंद होंगे, तो आपको हमारा स्टोर जो हमारे से मिलने का मौका, हमें आपसे मिलने का मौका मिलेगा, रिश्ता बनेगा और मिड्डा फर्नीचर आपके हाजिर रहे आपकी सेवा में। तो आए मिड्डा फर्नीचर, मिड्डा फर्नीचर 4169012810, 4169012810। थैंक यू वेरी मच जी,
1: बहुत शुक्रिया मेरे साहब, थैंक यू वेरी मच, और अगले हफ्ते आपसे फिर बात करते, थैंक यू। नंबर नोट कर लीजिए 4169012810, 4169012810, midafinish.com इनकी वेबसाइट है। अच्छा जनाब, खबरों के करीब आ गए, आपको बता दें इनाम खरीद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकुट हॉल मिसागा में, जो कि मशहूर है ईद बिलों के हवाले से। और शम्स रहमान साहब से आप रब्ता कीजिए, हज़ारों की तादाद में लोगों की यहाँ आमद मतवक़ है और एवरी डे आपको एक गोल्ड का प्राइस दिया जाएगा। इनाम घर का एवरी डे एक प्रोग्राम होगा जिसमें मुख्तलिफ जो हैं वो गिफ्ट दिए जाएंगे। इसके अलावा बेशुमार इंटरटेनमेंट होगी यहाँ पे। स्टॉल बुकिंग और स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल करें शम्स रहमान 4167106777, 4167106777। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग। अच्छा जनाब, 24 घंटे हमारे निशात बड़े पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रियल एस्टेट के वाले से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल ताला भट्टी 6472957861, 6472957861। ले चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
2: You're listening to CMR FM 101.3।
1: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
3: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4165700157, 4165700157।
1: न्यूज के लिए ताऊन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500, इट्स 4374252500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत हो रही है मगर आगे नहीं बढ़ रही। उनका कहना था कि मैं ईरान की नई तजवीज़ से मुतमईन नहीं हूं। सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान ने कुछ कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो किसी मुआहदे तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने कहा कि अमरीका ईरान के साथ जारी जंग से मकासद के हुसूल तक बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर अमरीका इस वक्त तनाज़े से निकल गया तो मसला चंद साल के बाद दोबारा पैदा हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान पर हमारे पास दो ही रास्ते हैं, उन्हें तबाह कर दें या मुआहदा कर लें। इससे पहले ईरान ने गुज़श्ता रोज़ अमरीका के साथ मुज़ाकरात से मुतालिक ताज़ा तरीन तजवीज़ पाकिस्तान को भेजी थी। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा था कि ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान बाकायदा सालिस का किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में बहुत से ममालिक मदद के लिए तैयार हैं, ताहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान ही बाज़ाब्ता सालिस है। उधर ईरान की पार्लियामेंट के नायब स्पीकर अली नगजाद ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल ईरान का फितरी हक है और हम अपने इस मौकिफ पर पूरी मजबूती से कायम हैं। उनका कहना था कि आबनाए हुर्मुज कोई बैनुल अक्वामी आबी गुजरगाह नहीं है और आबनाए हुर्मुज अपनी पिछली हालत में वापस नहीं आएगी। उधर अमरीकी महकमे खजाना ने खबरदार किया है कि आबनाए हुर्मुज अबूर करने के लिए ईरान को टोल फीस अदा करने वाली शिपिंग

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777.
2: अपना हम सफर ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूर्स मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। आयाटा अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं। पीआईए के कंसोलिडेटर हैं और पीआईए टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उमरा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555
3: ग्लोबल ट्रेवल टूर के रास्ते का नंबर है। दुनिया भर में कहीं भी आपको सफर करना हो इनसे रब्ता कीजिए। तमाम बड़ी एयरलाइंस के कंसोलिडेटर हैं। इसके अलावा उम्र और हज के स्पेशल पैकेज इनके होते हैं, साथ साथ मनी ट्रांसफर के सर्विसेज, इमिग्रेशन के सर्विसेज और कॉन्सुलेट सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। और कमर रशीद साहब रोही रवा हैं, CEO हैं तमाम ऑपरेशंस को, और ख़ासतौर पर हज के हवाले से और उम्र के हवाले से इन्होंने बहुत सी खुद जाते हैं, वहाँ जा के चीज़ों को देखते हैं, और अभी भी माशाल्लाह इनका हज का जो है पैकेज टूर जो है वो जाने वाला है। खुश आमदीद कहेंगे कमर भाई। अस्सलाम वालेकुम
4: जी। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया शिपटी साहब, और आपकी वसासत से अपने तमाम सामेईन को भी बहुत सलाम पेश।
3: थैंक यू वेरी मच। पहले मुबारकबाद, बहुत जबरदस्त हज सेमिनार था आपका, इस पर थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला आगे बात करेंगे। मैं सिर्फ थोड़ी सी टिकट सेल के हवाले से बात करने की, कुछ अभी सीट सेल वगैरह हैं अवेलेबल हैं इस वक्त जाने के लिए?
4: जी सर, मैं शिपटी साहब सच कहूँ तो मैं समझता हूँ कि ऐसी सीट से जो जिसका मुझे इंतजार रहता था और मेरी पसंदीदा डेट्स के ऊपर खास तौर पे। जी हाँ, PIA ने दोबारा 15% सीट सेल जो दी है वो इस दफा 30 मई नहीं बल्कि 24 जून तक का ट्रैवल पीरियड इसमें शामिल कर लिया। यानी अब जो बच्चे स्कूल के पेरेंट्स फैमिली जो समझते थे कि हमारे बच्चों के हाई स्कूल है तो इतना अर्ली जाना मैं एंड में मुश्किल है, तो उनके लिए बिल्कुल अब जो है आप 24 जून तक जो है अपनी ट्रेवलिंग को मैनेज कर सकते हैं 15% डिस्काउंटेड फेयर के साथ। और टिकट लेना है आपने वो आपने 10 जो है मई तक टिकट बाय करना जरूरी है। टाइम आपके पास है, अभी से प्लान करें और यू कैन सेव लॉट ऑफ मनी। और ये बताता चलूं ये टिकट 6 मंथ वैलिड होता है। आप अभी 24 जून को जा रहे हैं, आप ज्यादा अर्सा वहाँ काम करना चाहते हैं, और ये भी बताता चलो कि मई के फौरन बाद जैसे कि उमरा सीजन शुरू हो जाता है, उमरा के वीजे खुल जाते हैं, तो आप अपने पाकिस्तान ट्रिप के साथ सऊदीया का, उमरे का, ज़ियारत का ये ट्रिप भी ऐड कर सकते हैं बिलखसूस अपनी कौमी एयरलाइन के साथ। और हमें कॉल कर सकते हैं इस तमाम डिटेल्स को लेने के लिए 905-275-3555
3: पे कॉल कर लीजिए। एक तो 15% सेल है, प्लस आप उम्रा भी कर सकते हैं उसी दौरान में, तो खुद ये कस्टमाइज पैकेज बना देते हैं, चाहे 2 लोग जा रहे हों चाहे 30 लोग जा रहे हों, आप इनसे रब्ता कर लीजिए। अच्छा, हज के हवाले से अभी आपका माशाल्लाह ग्रुप जो है वो जा रहा है, इसी महीने जा रहा है इंशाल्लाह, और सेमिनार भी आपका बड़ी अच्छी वहाँ मैं मौजूद था, लोगों तक आपने तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए हज के हवाले से, और जो लोग अगले साल हज करना चाहेंगे तो उनको भी थोड़ा एडवाइस कर दीजिए।
4: जी बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह ताला, शक नहीं, और खुशूस मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी शिरकत को। मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी की शिरकत समझता हूँ, और आपकी हौसला अफजाई हमारी कम्युनिटी की हौसला अफजाई होती है, और आपकी इज्जत अफजाई का शुक्रिया। और आपने हाजियों के लिए जो खूबसूरत तोहफा दिया एहराम अपनी तरफ से, मैं उसको भी कम्युनिटी की जानिब से तोहफा समझता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपकी मोहब्बत हमारे लिए एक बेशुमार के कहने के अनमोल तोहफा होती है, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। और शेबटी साहब बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये जो ग्रुप फाइनलाइज हुआ, लेकिन आगे आने वाले ग्रुप के लिए जरूरी है कि जो तब्दीलियां आई हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, बिलखसूस सऊदी हज कमीशन की जानिब से, तो पता चल रहा है कि इस हज के फौरन बाद नेक्स्ट ईयर का वो पोर्टल ओपन करेंगे, और इन एडवांस बुकिंग ओपन करने का मकसद यही है कि वो जल्द से जल्द क्लोज कर देते हैं. उनका सर्टेन कोटा है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोटा, प्राइवेट हजाज का कोटा जो है, उसमें आप अगर जाने का इरादा रखते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन यही होती है कि आप अपने आप ना नाम कम अज कम रजिस्टर्ड करवा लें. अगर आपके पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं बने हुए तो यही टाइम है आप अपने आप को जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के लिए हमारे से रब्ता कर लें. और सबसे खूबसूरत चीज जो मैं समझता हूँ वो ये कि हम जो बार बार इतनी एडवांस बात करते हैं, आप इस तरह से नियत कर लें कि मैं आज से ही अपने हज के लिए अपने खास एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में आप अपनी कमेटी डाल रहे हैं, पर मंथ $1,000 सेफ्टी कर सेव करते चले जाएं, और इंशाल्लाह मैं बड़ी उम्मीद रखता हूँ अल्लाह की बारगाह में कि सबसे बेस्ट रेट के साथ, और जिस तरह आपकी ख्वाहिश हो कि मैं इस बजट में जाना चाहता हूँ, कामरा भाई मैं आपके साथ या आपके साथ बैठ कर अपने बजट को डिस्कस करके अगले साल हज के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, तो मैं वेलकम करता हूँ. हमारे दरवाजे खुले हैं, आप तशरीफ लाएं, आप बैठे हमारे साथ, और आपके हज के लिए मैं इसको इबादत समझ कर ही आज आपको दावत दे रहा हूँ. आए बैठे डिस्कस करें, और उसमें हर चीज ओपनली डिस्कस हो जाने से आपका एक बोझ हल्का हो जाता है. आपको लगेगा कि यस कि मुझे मेरी जरूरत के मुताबिक, आपने कभी सुना नहीं होगा कि हज का पैकेज कस्टमाइज किया है, जब तक इस फील्ड में थे नहीं तो बात करते नहीं थे, अब हैं तो बताते हैं कि यस आपके बजट को भी देखते हुए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे तो उसको कस्टमाइज किया जाएगा. आप उसके लिए हमसे जरूरी है कि ऑन टाइम रब्ता कर लें. इंशाल्लाह 19 मई को हमारा डिपार्चर है इस साल अपना हज का काफिला लेकर. 19 मई से पहले मैं मौजूद हूँ, आप आए अगले साल के लिए प्लानिंग करें,
3: कामरान साहब
4: जी मैं बताता चलूं कि इसमें हज के लिए 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन मुख्तलिफ दिनों के पैकेज होते हैं, इसलिए मैंने आपको कहा आए बैठे और आपकी जरूरत के मुताबिक इसको किसको कस्टमाइज करें. और पाकिस्तानी कॉन्सल की तमाम ऑनलाइन सर्विसेज जिसमें आपका जरूरी है कि पासपोर्ट आपके हाथ में हो वो जरूर रखें, नाइको कार्ड को देखें वो एक्सपायर ना हो, कभी भी इमरजेंसी में सफर करना हो तो मुश्किल ना हो, क्योंकि आजकल पाकिस्तानी वीजा लेने में भी जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से 8 से 10 दिन लग जाते हैं. तो अपना रिक्वेस्ट है बीइंग अ पाकिस्तानी, अगर आपके पास अपने पाकिस्तानी डॉक्यूमेंट्स हैं तो उनको एक्सपायर मत होने दीजिएगा, उसको हमेशा अपनी जरूरत के लिए रेडी रखें. इसके साथ साथ कुर्बानी का टाइम आने वाला है, अपने प्यारों को पाकिस्तान रकम भेजनी हो या दुनिया के किसी भी हिस्से से मंगवानी हो, एतमाद के साथ आप हमें रब्ता कर सकते हैं. बेस्ट रेट के लिए नंबर है 905-275-3555.
3: थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, बहुत शुक्रिया. अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं. थैंक यू. नंबर नोट कर लीजिए 905-275-3555. अच्छा, एक रेस्टोरेंट की आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ. रिजवे प्लाजा में है चाय खाना, ये पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, फाइन ओरिजिनल पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड आपको मिलेगा, एक बार आप विजिट जरूर कीजिएगा. और ये तमाम क्वालिफाइड शेफ हैं, पाकिस्तान में PC लाहौर में ये शेफ थे और 14 साल से इनका तजर्बा है. और रिजवे प्लाजा में ग्रेट एडिशन है जनाब फूड लवर्स के लिए, स्पेशली चाइनीज़ खाने वालों के लिए. 100% हलाल फ्रेश एंड ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाला एट ऑल, अपने मसाले हैं और वेरी रीजनेबल प्राइस भी बहुत ज़बरदस्त हैं. स्पेशल डिस्काउंट है, रेडियो पाकिस्तान का वाला देंगे तो फॉर श्योर डिस्काउंट आपको देंगे. और 4 से 12 बजे वीकडेज में और 2 से 12 बजे रात तक वीकेंड्स पे आपके लिए ओपन है. 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है इसका, रिजवे प्लाजा में. और इस वीकेंड पे चाइनीज पाकिस्तानी ओरिजिनल पाकिस्तानी चाइनीज खाने खाने हैं तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन पे चले जाइए. नंबर मैं आपको बता देता हूँ, एडवांस बुक करवा लीजिए 905-514-7877. चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन. आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रबते के नंबर 4165930003. टोरंटो और इसके गिरदनवाह में मगरिब की आज़ान का वक्त हो गया है. दूसरे इलाकों के रहने वाले अपने मकामी निज़ाम उल औक़ात के मुताबिक मगरिब की नमाज अदा करें.

0: name since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
1: Uni Global Advisor Inc. आपके लिए लाए हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिसमें गवर्नमेंट आपके पूरे स्टडी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करती है, साथ ही लिविंग एक्सपेंसेस के लिए नॉन रिफंडेबल ग्रांट भी देती है जो 15,000 से $50,000 सालाना तक हो सकती है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं, सिटीजन हैं या फिर प्रोटेक्टेड पर्सन हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इनकी ज्यादातर क्लाइंट्स की एज 40 साल या उससे ज्यादा है। आप घर की कम्फर्ट से 2 से 3 घंटे फुली ऑनलाइन इजी टू पास कोर्सेज करें और नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स और लिविंग एक्सपेंसेस के हकदार बने। इनकी फीस सिर्फ $299 है, वो भी ग्रांट मिलने के बाद, कोई कमीशन नहीं। मजीद मालूमात और असेसमेंट के लिए अभी कॉल कर लें 4372643175। इट्स 4372643175। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
2: जी हाँ, 416-710-6777 पे आप कॉल कर लीजिए। शम्स रहमान साहब से रब्ता कीजिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंक्वेट हॉल, जो ईद मेलों के हवाले से मशहूर है। शम्स भाई मरसद मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। शम्स साहब अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू,
2: बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, मई आ गया और बस अब 3 हफ्ते बाकी हैं, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ प्रेजेंट हो रहा है इस ईद इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल में?
3: जी बेटी साहब, आपको पता है कि इनाम घर का मिशन है स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना और जो भी टैलेंट है उसको प्रमोट करना, तो इसी को देखते हुए हमने इनाम घर के बाद ये नया सिलसिला शुरू किया है इनाम घर ईद फेस्टिवल का। तो मकसद हमारा वही है कि टैलेंट को प्रमोट करना और स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करना। तो हमने अर्ली बर्ड रखा हुआ है। इस वक्त जो वेंडर हमें सुन रहे हैं उनके लिए जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसी अपॉर्चुनिटी आज तक उनको किसी ने नहीं दी होगी। वो जैसे ही हमारे साथ साइन अप करेंगे, आजकल डिस्काउंटेड प्राइसेस चल रही है, हम उनका वीडियो प्रोमो शूट करेंगे टोरंटो 360 टीवी में और उसके बाद हम सोशल मीडिया पे उसको वायरल कर देंगे और इंशाल्लाह ईद आने से पहले ये हमारा वादा है कि हम उस वेंडर को वायरल कर देंगे और वो मशहूर हो जाएंगे, वो और उनका बिजनेस जो भी है दे विल गेट फेमस।
2: ऑलराइट,
3: तो जल्दी से हमसे रابطہ करें क्योंकि लिमिटेड स्टॉल्स हैं, आपको पता है।
2: 416-710-6777 पे आप रابطہ कर लीजिए। इसके अलावा कुछ गोल्ड प्राइजेस और गिफ्ट्स वगैरह भी और इनाम घर भी एवरीडे हुआ करेगा?
3: जी बिल्कुल, एवरीडे इनाम घर है। पहले दिन हमारा फैशन शो है, उसमें मॉडल हमसे रابطہ कर सकती हैं, मेल फीमेल मॉडल दोनों रابطہ कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट डे हमारा सिंगिंग कंपटीशन है और थर्ड डे पे सीनियर्स कंपटीशन है, फोर्थ डे पे फैमिली और कपल्स का है। और एवरी डे गोल्ड का प्राइस दे रहे हैं अलकरम ज्वेलर्स वाले जो हमारे स्पॉन्सर हैं इनाम घर ईद फेस्टिवल के। तो जो जनरल पब्लिक है उनको भी बहुत मजा आने वाला है और इस दफा नया रंग जमेगा इंशाल्लाह कैपिटल बैंक्वेट हॉल में।
2: ऑलराइट जनाब, नंबर नोट कीजिए 416-710-6777, 416-710-6777 पे आप रابطہ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच शाम भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे फिर बात होती
3: है। शुक्रिया, थैंक यू।
2: और जनाब अलकरम ज्वेलर्स की तरफ से गोल्ड का प्राइस आपके लिए दिया जाएगा और केयर इंश्योरेंस की तरफ से भी स्पॉन्सरशिप है और भी बहुत से स्पॉन्सर्स हैं, उनके भी इंशाल्लाह डिटेल आपको बताएंगे। और ऐसा करते हैं, कमर्शियल ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे, फिर आपको पाकिस्तान लिए चलेंगे। 2-3 छोटे-छोटे इन्फॉर्मेशन है। लीजर्स कॉस्मेटिक्स वेयर हाउस सेल आप इस वीकेंड पर तशरीफ ले जाइए 135 कॉमर्स फेरी ड्राइव ईस्ट मार्कहम में और अप टू 80% सेविंग आपको हो सकती है। और प्रोफेशनल आपको हेयर कट प्रोडक्ट्स, हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स एंड स्किन ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स, ब्रांड नेम परफ्यूम्स मिलेंगे फ्री। इसके अलावा डिजाइनर सनग्लासेस हैं, फाइन चॉकलेट आपको मिलेगी और मदर्स डे के लिए स्पेशल स्पेशल गिफ्ट मिलेंगे। 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम या lizascosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन जो है इस हवाले से ले सकते हैं। और इसके अलावा चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है, आप वीकेंड पे तशरीफ़ ले जाइए। आप पीसी के यहाँ पे जो शेफ़ हैं जिनका 14 साल का तजर्बा है और बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस हैं। यूनिट इनका 3 है, 3920 ग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने आपको यहाँ पे मिलते हैं। जनाब एक कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद आप ले चलेंगे पाकिस्तान, जहाँ हमारे साथ होंगे बिलाल जमान साहब। स्टे ट्यून्ड।
1: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट है। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 6472714147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 6472714147।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhaniswits.ca।
1: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642। अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कॉर्पोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।

0: Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matana Khan at 416-825-9275.
1: Dr. Fayaz Ahmed Qureshi and Associates of Mississauga ke baad Scarborough Main 2155 Lawrence Avenue East, Lawrence or Richmond ka intersection 416-757-9999. Daanton ki koi bhi bimari ho, aap aitmaad ke saath Dr. Fayaz Ahmed Qureshi aur unki tajrubakar team ki professional services ka fayda uthaiye. Tamam insurance plan accept karte hain. Insurance na rakhne walon ke liye special discount. Root canal treatment aur retreatment ke specialist hain. Mississauga location 1110 Bloor Street East, Bloor or Dixie intersection 905-232-5678.
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
3: 416-904-2046 or 416-662-7861.
4: अगर आपकी कॉर्पोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉर्पोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आप कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922।
5: SSR ऑटो सर्विस 921 एप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टीमोर। हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे।
6: करम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009 905-828-0009। You log in ho alkaramjewelers.ca। Alkaram Jewelers, farmaish aapki, guarantee hamari।

0: मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बिखेरते रहें। अल्लाह ताला आपको सेहत की दौलत से माला माल रखे, आमीन। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने सिलसिलेवार सेगमेंट अल्लाह ताला के 99 नामों से।
1: ऐ कुदरत वाले, जो शख्स दो रकत नमाज पढ़कर 100 मर्तबा अल-क़ादिरो पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके दुश्मनों को जलील और रुस्वा फरमा देंगे अगर वो हक पर होगा। अगर किसी शख्स को कोई दुश्वार काम या किसी काम में दुश्वारी पेश आ जाए तो 41 बार या क़ादिरो पढ़े, इंशाअल्लाह वो दुश्वारी दूर हो जाएगी।
2: World Islamic Mission Canada is making history in the town of Oakville with the forthcoming construction of Masjid Nurul Haram, an architectural landmark. Come and help us build this mosque together that will benefit this generation and future ones as well. Please donate generously to this project by calling 905-257-1342 or online at wincanada.com.
0: अदाकारा संगीता 14 जून 1957 में कराची के इलाके नाजमाबाद में पैदा हुईं। इनका असल नाम परवीन रिजवी है। इनकी 3 बहनें और 1 भाई है। इनके वालिद का नाम सैयद तबीब रिजवी और वालदा का नाम महताब बानो है। इनकी वालदा भी एक अदाकारा थी। इनको फिल्मों में इनकी वालदा ने ही मुतारिफ करवाया। इनकी बहन कविता इन्हीं की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में मुतारिफ हुई, जबकि इनकी छोटी बहन हिना रिजवी भी अदाकारी के शोबे से मुंसलिक हैं और टीवी के कई ड्रामों में काम कर रही हैं। अदाकार रहमान फिल्म कंगन बना रहे थे जब उन्होंने संगीता को देखा, जो इस वक्त 8वीं क्लास की तालिबिल्म थी और उनकी उम्र सिर्फ 12 साल थी। रहमान ने इन्हें अपनी फिल्म कंगन में हीरोइन सेलेक्ट कर लिया। ये फिल्म 1969 में रिलीज हुई और नाकाम रही, लेकिन संगीता अपनी फैमिली के साथ लाहौर शिफ्ट हो गए। लाहौर शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन प्राइवेट तौर पर मुकम्मल की। तो अब हम आपको जो गाना दिखाने जा रहे हैं, मशहूर ज़माना गीत उमरिया बीती जाए कोई रिश्ता ना आए, इंजॉय कीजिए।

0: मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के जरिए आप पाकिस्तान के रेगिस्तान में प्यासों को पानी पिला सकते हैं, गरीब बच्चों की तालीम और माली परवरिश कर सकते हैं, बीमारों का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। ज़कात, सदकात या फिदिया देने के लिए आज ही हमें फोन करें 1-866-754-3111।
1: लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोएस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी, वीडियो एंड अप्लायंसेस, मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोविड ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828।
2: At Clinicare Discount Pharmacy, we accept all drug plans with easy prescription transfers and free medication management services. Located at 2250 Markham Road, Unit 3, Scarborough, Ontario. With free delivery in the GTA and halal vitamins available. For more info, visit www.clinicareddiscountpharmacy.com.

6th. लाहौर आने के बाद संगीता ने बहुत सी फिल्मों में काम किया जिसमें सलाम मोहब्बत, गृहस्थी, अफशा, इंसाफ और कानून, चिराग कहाँ रोशनी कहाँ और खलश जैसी फिल्में शामिल हैं। उर्दू फिल्मों के साथ साथ उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम शुरू कर दिया जिसमें वारिस, राजू, पन्नू और खुदा ते मुआ शामिल हैं। अदाकार संगीता ने अपनी फिल्मी कैरियर में एक कामयाब हीरोइन बनने के लिए बहुत मेहनत की। यह मैं इनकी कुछ फिल्मों का जिक्र जरूर करना चाहूंगी। 1972 में फिल्म बाजार, 1972 में ही दूसरी फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा, 1973 में फिल्म खुशियां, 1974 बात पहुंची तेरी जवानी तक, 1974 मंजी किथे डावा और 1984 नाम मेरा बदनाम शामिल है। इनके सुपरहिट गानों में जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, कोई करके बहाना सानू मिल माइया और राता आ गईया चाननिया शामिल है। मेरा एक काम कर दो ना, ये दिल मेरे नाम कर दो ना।

सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू अल्लाह। टोरंटो में रहते हुए अगर आपके पास मेडिकल कवरेज नहीं है तो आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर की फ्री क्लिनिक में कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बना सकते हैं। इनके डॉक्टर आपसे सिर्फ एक फ़ोन कॉल के फासले पर हैं। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर क्लिनिक की दो लोकेशन है, स्कार्बरो और मिसिसागा। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आप सबसे ये दिली दरख्वास्त है कि प्लीज़ आप दिल खोलकर मुस्लिम वेलफेयर सेंटर को डोनेट करें। जज़ाकअल्लाह खैर।

0: लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में, या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ, और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ, क्योंकि हमारे पास है लोवेस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी वीडियो एंड अप्लायंसेस मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज। सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोविड ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन, और कॉल 905-450-2828।
1: At Clinicare Discount Pharmacy, we accept all drug plans with easy prescription transfers and free medication management services. Located at 2250 Markham Road, Unit 3, Scarborough, Ontario, with free delivery in the GTA and halal vitamins available. For more info, visit www.clinicarediscountpharmacy.com.
2: घर खरीदना है या बेचना, या आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर, ऑनेस्ट एडवाइस के लिए मुझसे राब्ता कायम कीजिए। मेरा नंबर है 416-835-1997, या मेरी वेबसाइट विजिट कीजिए www.badar.ca.
3: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well or a hand pump, call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

हिदायतकार एस सुलेमान की फिल्म अन्नाड़ी में उन्होंने साइड हीरन का रोल किया और ये फिल्म कामयाब रही। 1972 में हिदायतकार सेवन रिजवी की फिल्म मेरी जिंदगी है नगमा में इन्हें अदाकार रंगीला के मुकाबले हीरन का रोल दिया गया। इस फिल्म ने गोल्डन जुबली बनाई। ये इनकी पहली सुपरहिट फिल्म थी जिसमें वो मरकजी किरदार में आई थी। 1975 में फिल्म तेरे मेरे सपने में मोहम्मद अली के साथ बतौर हीरोइन काम किया। ये फिल्म भी सुपरहिट फिल्म रही। संगीता ने पाकिस्तान के तमाम नामवर हीरोज के साथ काम किया जिनमें वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम और शाहिद के नाम काबिले जिक्र हैं। इसके अलावा मुनव्वर जरीफ और रंगीला के साथ भी हीरोइन के रूप में काम किया। चंद सजना वे नेड़े नेड़े हो, आइए देखते हैं ये गीत।

अदाकार संगीता ने अदाकारी के साथ साथ हिदायतकारी में भी दिलचस्पी लेना शुरू कर दी। उन्होंने PNR प्रोडक्शन के नाम से एक इदारा कायम किया और PNR के बैनर तले मुसन्निफ और हिदायतकार इकबाल रिज़ी के साथ फिल्म तेरे मेरे सपने बनाई, जिसमें इनकी छोटी बहन कविता ने भी अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। इस फिल्म के सुपरहिट होने के साथ साथ बहुत अच्छा बिजनेस भी किया। इस फिल्म में मोहम्मद अली और शाहिद ने हीरो के रोल अदा किए। बतौर हिदायतकार इनकी फिल्म सोसाइटी गर्ल एक कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म में आज के मशहूर डायरेक्टर सैयद नूर बतौर राइटर मुतारिफ हुए थे। इनकी ये पहली फिल्म थी जो कि 1976 में रिलीज हुई। इसी साल यानी 1976 में इनकी दूसरी फिल्म मुझे गले लगा लो रिलीज हुई, जिसमें उन्होंने खुद भी अदाकारी की। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। संगीता की वालदा मेहताब बानो ने PNR के बैनर तले फिल्म मोहब्बत और महंगाई बनाई। ये फिल्म भी हिदायतकार इकबाल के साथ मिलकर बनाई गई। तेरे कदमों में बिखर जाने को जी चाहता है।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
1: लेना हो एंटरटेनमेंट का चस्का टीवी एंड वीडियो अप्लायंसेस की सूरत में या बनाना हो जिंदगी को आसान और शानदार किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस के साथ और भरपूर नींद के मजे लीजिए ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस के साथ क्योंकि हमारे पास है लोवेस्ट प्राइसेस ऑफ ब्रांड न्यू टीवी वीडियो एंड अप्लायंसेस मैट्रेसेस एंड किचन एंड लॉन्ड्री अप्लायंसेस की मुकम्मल रेंज सो अभी विजिट करें ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव वेस्ट ब्रैम्पटन और कॉल 905-450-2828
2: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.

1978 में उन्होंने फिल्म मुट्ठी भर चावल बनाई, जो फिल्म सिख कल्चर और मजहब पर मबनी नावल एक चादर मैली से लिया गया था, जिसकी फिल्मी तश्कील में उन्होंने कमाल कर दिया। इस फिल्म में उन्होंने जबरदस्त अदाकारी और हदायतकारी की। फिल्म मुट्ठी भर चावल पाकिस्तान में इतनी कामयाबी हासिल ना कर सकी, मगर इस फिल्म को बैन अल-अक़वामी सतह पर काफी सराहा गया। इस फिल्म में इनकी अदाकारी को भी बेहद पसंद किया गया। इस फिल्म में इन्हें दो निगार अवार्ड मिले, जिसमें एक बेस्ट एक्ट्रेस और दूसरा बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड था। उन्होंने चार निगार अवार्ड और 2020 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी हासिल किया। अपने 50 साल फिल्मी कैरियर में तकरीबन 150 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जिसमें उर्दू और पंजाबी दोनों जुबानों की फिल्में शामिल हैं। इनकी डायरेक्शन में रिलीज होने वाली फिल्में 1976 में फिल्म सोसाइटी गर्ल और मुझे गले लगा लो, 1977 इश्क इश्क, 1978 मुट्ठी भर चावल, 1982 मियां बीवी राजी, 1996 खिलौना, 1998 निकाह और 2019 में फिल्म सिर्फ तुम ही हो रिलीज हुई। कुछ बोलिए हुजूर, ये लब खोलिए हुजूर।

संगीता ने हुमायूं कुरैशी से शादी की। इनकी इस शादी से इनके घर वाले खुश नहीं थे, लेकिन तमाम घर वालों की मुखालफत के बावजूद संगीता ने हुमायूं कुरैशी से शादी की, जो ज़्यादा देर तक ना चल सकी। इनकी दूसरी शादी नवीद भट्ट से हुई। इनकी तीन बेटियां थीं, तीनों की शादी हो चुकी है और वो नानी भी बन चुकी हैं। इनकी कोई भी बेटी शोबिज से वाबस्ता नहीं। संगीता ने इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री शदीद बहरान का शिकार थी और बहुत से फिल्म मेकर सरमाया डूब जाने के डर से फिल्में बनाने से डरते थे। वो संगीता ही थी जिन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने बहुत से टीवी ड्रामों में भी अपने फन के जोहर दिखाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला संगीता जी को सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप इंजॉय कीजिए शाहिद और संगीता पर फिल्माया ये खूबसूरत संगीत, और मुझे दीजिए इजाज़त इस याद आने के साथ कि मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। जेमी को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।

0: FM
1: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी और ईरानी फौज के एक दूसरे पर हमले के बाद आबनाए हुरमुज में जंगबंदी की सूरत हाल नाजुक हो गई है। ईरान ने आबनाए हुरमुज में एक अमरीकी जहाज पर हमला किया है, जिसके बाद यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज पसपाई पर मजबूर हो गया। सेंटकॉम का कहना है कि उसने 7 छोटी ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। मुतहदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई है। उधर आबनाए हुरमुज में जनूबी कोरिया के एक जहाज में धमाके के बाद आग लग गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी जहाज या फ्रीडम प्रोजेक्ट में रुकावट डाली गई तो ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। उधर सेंटकॉम ने 2 अमरीकी जहाज आबनाए हुरमुज से निकालने का दावा किया है, जबकि पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता चंद घंटों में कोई तिजारती जहाज या ऑयल टैंकर आबनाए हुरमुज से नहीं गुजरा। अमरीकी जहाज को निशाना बनाने के ईरानी दावे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी। अमरीका ने अपने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज और उसके अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तमाम पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं को मंगल के रोज अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत की है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में फौज की पोस्ट पर एक नाकाम खुदकुश हमले के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक PIA 25 मई तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल में पेशावर जिल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से हराकर

बेहतरीन वक्त है इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से رابطہ कीजिए सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861

0: मॉर्टगेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
3: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
3: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
3: दैट्स वंडरफुल।
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
5: अलकरम ज्वेलर्स। अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। इट्स 9058280009। योर लॉगिन हो अलकरम ज्वेलर्स.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।

0: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड, मिसिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden और Shepherd का intersection, 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. तमाम major repair work करते हैं, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service, 24/7 towing service भी available है. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Avais Chaudhary और Munir Hussain, 647-321-7444. It's 647-321-7444. क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200.
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते के नंबर है। खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, कॉल कर लीजिए। फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में हैं, बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ ये काम करते हैं। मैक्सिमम कंपनसेशन आपको मिल जाएगी, और हमेशा जब केस सेटल होता है फीस एक्सीडेंट क्लेम की, उसके बाद ली जाती है। 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते का नंबर है। एक्सीडेंट क्लेम का नाम आए तो साथ अंजुम कुरैशी साहब का नाम आता है। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आप दिन कहेंगे। अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम, और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमेशा बात करते हैं एक्सीडेंट की, अवेयरनेस देते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन जिस तरह दिन रात हम एक्सीडेंट की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अवेयरनेस क्या है, इसी तरह से जब आपको ट्रैफिक टिकट मिल जाते हैं तो उसकी अवेयरनेस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब टिकट मिलता है तो लोग कहते हैं कौन कोर्ट जाएगा, उसके पर लिखा हुआ $560 या $400 देने, तो कौन इस सारे हैसल में पड़े, सीधा सीधा जाके फाइन पे कर देते हैं। जब आपने फाइन पे कर दिया, इसका मकसद हुआ कि आपने एक तो गिल्टी ले ली, उसके बाद फर्ज कीजिए कि अगर आपको केयरलेस का टिकट मिला है तो राइट अवे आपके 6 पॉइंट जो है आपके लाइसेंस से कट गए, और वो 3 साल तक आपके एब्स्ट्रैक्ट पे आते रहेंगे कि आपको आपको केयरलेस का टिकट मिला था। इसी तरीके से मुख्तलिफ सेक्शंस के हिसाब से मुख्तलिफ आपके पॉइंट जाते हैं, और अगर आपको जो टिकट मिलती है आपने पैसे पे कर दिए, इसका मकसद हुआ कि मैंने इसको कबूल कर लिया कि ये मेरा जो चार्ज था वो सही था और मैं गिल्टी करता हूँ, जब आप पैसे पे करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आपके रिकॉर्ड पे रहता है, आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है, अल्लाह ना करे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और टिकट मिल जाए, तो पिछला रिकॉर्ड निकाला जाता है कि आपके रिकॉर्ड पे तो दो टिकट पहले से ही हैं। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको जब टिकट दी जाती है तो आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप गिल्टी कर लें, एक ऑप्शन है अर्ली रिजर्वेशन, एक ऑप्शन है आपके पास ट्रायल एंड आप उसको जो है नॉट गिल्टी करते हो। हमेशा आपको ट्रायल और नॉट गिल्टी करना चाहिए ताकि आपका अपना वर्जन भी आप बयान कर सको, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से टिकट मिला, ऑफिसर ने ये कहा, जाहिर है आप ऑफिसर से तो आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तो वो आपको टिकट दे के चले जाते हैं, लेकिन आपका एक अपना वर्जन होता है कि ऐसा नहीं था ऐसा था, तो वो आपको बताने का एक मौका मिलता है आपके रिप्रेजेंटेटिव को। नॉर्मली टिकट जो है वो पैरालीगल्स करते हैं, हमारी टीम में लॉयर मौजूद हैं जो आपके टिकट को डील करते हैं, जो कि बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो ना सिर्फ आपको हम उन टिकट से निजात दिला देते हैं या कोई बेहतर तौर से आपको कोई फैसला लेकर देते हैं जो कि आप खुद नहीं ले सकते, और आपको कम से कम आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्लीन रहता है या कम से कम आपकी इंश्योरेंस बिलावजह नहीं बढ़ जाती। लेकिन जहां हम हमेशा रेडियो पे बताते हैं कि कार एक्सीडेंट जब भी होता है आपको कंटिजेंसी फीस होती है, और आपको इन द एंड ऑफ द डे आपको अपनी टिकट के पैसे, आपको अपने जो सेटलमेंट के पैसे हैं वो आपको लॉयर की फीस जो है इन द एंड ऑफ द डे देनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं टिकट की तो आपको टिकट में अप फ्रंट पैसे देने होते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जाके आपकी टिकट को नॉट गिल्टी करके फाइट करता है, और इसका तरीकेकार बिल्कुल डिफरेंट है और ये कंटिजेंसी फीस नहीं होती। हमेशा की तरह अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, जमाना बीत गया, क्या मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, 3 डकैत हो गए, आपका हमारा साथ है, आवाज सुनते रहते हैं, प्लीज मुझे कॉल करें 416-570-0157। कोई कार एक्सीडेंट हुआ हो, कोई आपको टिकट मिली हो, आप जरूर कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी साहब, फ्राइडे आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, नंबर नोट कीजिए मतलब सामीन 416-570-0157। पेशावर जलमी PSL 11 की चैंपियन बन गई है, बाबर आजम ने ट्रॉफी उठाई है, अंडर 19 की ट्रॉफी ने उठाई, तो उसके बाद शायद बड़ा इंतजार करना पड़ा उन्हें एक ट्रॉफी उठाने के लिए। हैदराबाद को उन्होंने शिकस्त दी, हैदराबाद की टीम अब वन साइड एक वक्त में हो गया था क्योंकि हैदराबाद की टीम 129 रन पर आउट हो गई थी। तफसील हम बताएंगे थोड़ी ही देर में, और इस वक्त आपके लिए पहले पेश कर रहे हैं आज की शायरी।
5: शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। अपने आप से आंख चुराए फिरती हूं मैं, आईने में किसका चेहरा देख लिया है। अब भी सपने बोए तो ईमान है उसका, उसने इन आंखों में सहरा देख लिया है। उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, खुद को देखकर ये भी धोखा देख लिया है। उससे मिलते वक्त रोना कुछ फितरी था, उससे बिछड़ जाने का नतीजा देख लिया है। रुखसत करने के आदाब निभाने ही थे, बंद आंखों से उसको जाता देख लिया है। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है।

0: चाहिए
1: तो तलाबट्टी को कॉल मिला।
2: तलाबट 6472957861। रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज, स्पेशल पैकेजेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स। अ मेंबर ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल टीम तलाबट 6472957861।
1: तलाबट्टी को कॉल मिला।
2: 6472957861।
3: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
4: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
5: हांडी मसाले, बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
6: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550 7465550।
7: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 4168559464। शहबाज अकबर साहब के रबते के नंबर 4168559464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड। पीसी लाहौर के शेफ जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है, रिजवे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब। नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल। हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रिजनेबल। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन, 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30, रिजवे प्लाजा, मिसिसागा। For booking information, call 905-514-7877. वही जायका, वही लज्जत और वही मेहमानदारी। चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन। कर्ज इंसान का ज़हनी सुकून छीन लेता है। अगर आप कर्ज के बोझ से परेशान हैं, तो ऑल डेट सॉल्यूशन के एम सिद्दीक से राबिता कीजिए 4166710577। GTA भर में चार

0: है और फिर सूद से पाक आसान अकसात में आप अदायगी कर सकेंगे। कलेक्शन कॉल आना हो जाएंगी बंद और आपकी परेशानियां हो जाएंगी खत्म। अभी एतमाद के साथ कॉल कीजिए 416-671-0577।
1: The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga.
2: कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपनी सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट, या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147। लोग तो मॉर्गेज का वादा करते हैं लेकिन हम आपसे किया हुआ वादा पूरा करते हैं। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147।
3: 647-271-4147 शिराज हुसैन साहब के रास्ते का नंबर है। रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप, ईस्ट और वेस्ट दोनों लोकेशंस हैं इनकी, आप कहीं भी इनसे मिल सकते हैं और कहीं से मॉर्गेज नहीं हो रही है एक बार आप इनसे ज़रूर रब्ता कीजिए। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज भी आपको ऑन द फ़ोन ही बता देंगे कि क्या मुमकिन है क्या नहीं है। इसके अलावा रियल एस्टेट की सर्विसेज भी आपके लिए प्रोवाइड करते हैं, रेजिडेंशियल कमर्शियल मॉर्गेजेस हों, लाइन ऑफ क्रेडिट लोन। 647-271-4147 इनके रब्ते के नंबर है। हमारे साथ मौजूद है खुश आमदीद कहेंगे शिराज भाई, अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम।
3: अच्छा, अभी पिछले दिनों अभी जाहिर है लास्ट वीक इंटरेस्ट रेट जो है वो होल्ड किया, कम नहीं हुआ, बास लोग तो कहते शायद कहीं बढ़ा ही ना दें, तो ऐसी सूरत हाल में मॉर्गेज की अब फिर क्या, किस तरह से देख रहे हैं, इजी है या अभी मुश्किल है मॉर्गेज?
4: मॉर्गेज तो एक टाइम पे ये 1.29 पे भी हमने मॉर्गेजेस कराई हैं और एक टाइम ऐसा आया कि ये 7 तक भी जा चुका है जो बैंक ने इंक्रीज कर दिया था।
3: जी बिल्कुल,
4: मॉर्गेजेस तो होती है, ठीक है ना, वो मेन चीज ये है कि मॉर्गेज का ताल्लुक इंटरेस्ट रेट से उनसे नहीं है, मॉर्गेज का ताल्लुक है कि आपकी क्रेडिट सही है या नहीं, आपकी अपने इंफॉर्मेशन, आपके अपना जो बैकग्राउंड है वो क्लियर है या नहीं। मॉर्गेज तो होती है, इंटरेस्ट रेट जिस, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैंने कुछ लोग देखे हैं जो लोग प्रॉपर्टी इसलिए नहीं लेते कि वो इंटरेस्ट रेट ज्यादा या कम है, वो लेते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, वो लेते हैं फ्यूचर के लिए। आप कुछ भी कर लेना तो आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं आज 5 साल बाद ना, उसमें आपको प्रॉफिट होती ही होती है कुछ भी आप कर लो, और वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं वो आपके काम आ ही जाती है। मेरे बहुत ऐसे क्लाइंट है जिन्होंने प्रॉपर्टीज ली हैं और बुरे टाइम पे वो प्रॉपर्टीज ही उनके काम
3: बचाए उन्होंने।
4: तो इंटरेस्ट रेट से अगर फर्क पड़ता है ना, अगर $100, $200, $300, तो वो बेसिकली फ्यूचर में समझे वो $200-$300 आपको ना वापिस ही आना है, वो नुकसान में नहीं जाएगा।
3: बिल्कुल ठीक है, मतलब सामीन किस सूरत हाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 647-271-4147। जी आप कंटिन्यू कीजिए, कुछ कह रहे थे बात।
4: जी बहुत ऐसे लोग हैं जो आज भी मेरे क्लाइंट है, लाइक लोग हैं जो कॉल करते हैं, वो यही कहते हैं यार इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, हम प्रॉपर्टी ले लेंगे। 20-20 साल हो गए उनको कनाडा में यही सोचते हुए कि रिसेशन आने वाला है, रिसेशन आ गया है, चला गया है, इंटरेस्ट रेट कम। 1.9 तक मैंने मॉर्गेज कराई है, तब भी उन्होंने यही कहा कि नहीं ये इससे ज्यादा नीचे गिरेगा, तो तब भी कर लिया है, जब वो ऊपर चला गया तो फिर भी। तो प्रॉपर्टी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट है आपकी, आप इसको लें, बुरा टाइम है अच्छा टाइम है, ये वो चीज है जो आपको फ्यूचर में काम देगी।
3: बिल्कुल ठीक है, ड्यू डिलिजेंस करें, जो पसंद आती है तो बस ले लें, क्योंकि मतलब रहें वहीं जहां आपका दिल खुश हो, उसी में इंसान जो है रहे। अच्छा अभी इस हवाले से फर्स्ट टाइम होम बायर के लिए काफ़ी गवर्नमेंट ने सहूलतें दी हैं, तो फर्स्ट टाइम मैं हमेशा ये सवाल आपसे करता हूँ क्योंकि लोग हमसे बहुत सवाल करते हैं, क्या आप फर्स्ट टाइम होम बायर 5% 10% पे क्वालिफाई कर लेते हैं?
4: आराम से 5% पे हम क्वालिफाई करा रहे हैं, 10% पे हम कर रहे हैं, अपने मल्टीपल प्रॉपर्टीज हैं उस पे हम करा रहे हैं। मॉर्गेज अगेन मैं वही बात करता हूँ कि मॉर्गेज घर जो है ना लेना चाहिए, वो 5% आप दे रहे हो, 25,000 दे रहे हो या 30,000 दे के आपको अगर घर मिल रहा है तो खुद देखिए कि इतना तो रेंट है जितना आप 2,000-2,500 रेंट पे कर रहे हो, मॉर्गेज बनती है आपकी $1,700-1,800। तो आप जो ओनली रेंट पे कर रहे हो जो आपके फ्यूचर में आपके काम नहीं आ रहा, लेकिन मॉर्गेज में यह है कि आपका प्रिंसिपल इकट्ठा होता जा रहा है, आपको थर्ड ईयर अमोर्टाइजेशन मिलती जा रही है, बैंक ने बहुत अभी भी इंटरेस्ट रेट नॉट बैड 3.99 इतना बुरा नहीं है जो कि एक टाइम पे ये जा चुका था। अगर आप कोविड से पहले देखें ना 2019 पे, तो उससे पहले भी ये 3.6 3.7 पे ही चल रहा था, कोई कम नहीं था। तो उसके बाद ये ड्रॉप हुआ, फिर ये ऊपर आया, फिर बहुत ऊपर चला गया, अब ये फिर नॉर्मल पे आ चुका हुआ है। अगर ड्रॉप हुआ भी तो 0.25 होगा, इससे ज्यादा अब ये इससे नीचे लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हर चीज बढ़ती जा रही है ना, प्राइजेस बढ़ती जा रही है ग्रोसरी की, ये वो इंटरेस्ट रेट भी इतना ही रहेगा, ये मेंटेन रहेगा इतने में।
3: बिल्कुल ठीक है। 6472714147 पे आप रब्ता कर लीजिए, कोई भी मॉर्गेज का मसला हो आप इनसे रब्ता कर लीजिए। अच्छा, लोन्स के वाले से और लाइन ऑफ क्रेडिट के वाले से बताइएगा, क्योंकि बिजनेस जो है आपको बताया थोड़ा सा सफर कर रहे हैं, तो उस किस तरह से हेल्प उनकी हो सकती
4: है? जब भी आपने बात की ना कि बिजनेसेस सफर कर रहे हैं, ये बेस्ट टाइम होता है बिजनेस बाय करने का।
3: अच्छा, वेरी गुड।
4: क्योंकि ये वो चीज है कि जो जब चीज की प्राइस ड्रॉप होती है ना, प्राइस कभी भी आप भी देख लें कि रिसेशन आया 2007 में आया, फिर 12 में आया, फिर 18 में आया, ये टेम्परेरी आता है, ये टेम्परेरी 6 महीने साल के लिए डेढ़ साल के लिए तंग करता है, लेकिन जो प्राइसेस ड्रॉप होती है ना, जैसे यही घर अभी आप देख लें कि जो 1.5 में बिक रहे थे आज वो मिलियन डॉलर के हुए हैं, और ये सदाबहार मिलियन के नहीं रहने, ये आने वाले टाइम पे ये वापस जहां पे हालात अच्छे होने शुरू हो जाते हैं ना, फिर एकदम प्राइसेस ऊपर चले जाती हैं। अभी आप देखिए, आपको फ्रेंचाइजेस जो है ना, आपको 100,000 में जो कि ₹2.5-3 लाख की थी, आज ₹1 लाख में मिल रही है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि यार ये लाख से भी नीचे जाएगी, तो वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसको बनाने में उससे ज्यादा कास्ट आनी है।
3: बिल्कुल ठीक।
4: तो अगर पैसे हैं, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप ये टाइम है, आपको बैकअप है आपका, तो आप इसको 6 महीने साल हम आपको बैकअप भी करा के देते हैं साथ में, कि यार आपको ये ना हो कि आप मॉर्गेज ना पे कर सको, रेंट ना दे सको, तो हम आपको बैकअप में भी हेल्प करते हैं। तो बिजनेसेस अपना करें। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि सोच रहे हैं बस, और वो सोचते हैं और वो सोचते ही रह जाते हैं, तो उसको स्टेप उठाना पड़ता है। एक वो कंफर्ट जोन में आ चुके है ना, कि यार चलो इधर से इतने पैसे आ रहे हैं, वेरी गुड। नहीं, वो डरते हैं कि यार मैं भी ये छोड़ूंगा तो नया काम करूंगा तो मे भी मैं रोड पे आ जाऊंगा। कभी ऐसा नहीं होता। तो आप जरूर कॉल करें, फ्यूचर के लिए देखें कि आप क्या कर सकते हैं, हम आपके साथ मिलके आपको हेल्प करेंगे उसमें।
3: 6472714147 पे आप अभी रब्ता कर सकते हैं। कुछ और ऐड करना चाहेंगे शिराज साहब?
4: बिल्कुल, वही मॉर्गेजेस, लाइन ऑफ क्रेडिट, बिजनेस लोन, कमर्शियल लोन्स, फर्स्ट टाइम बायर हैं आप, सेकंड टाइम बायर हैं, ईस्ट हो या वेस्ट हो, आप जरूर हमें एक मरतबा कॉल करें।
3: नंबर कॉल है 6472714147 6472714147। थैंक यू वेरी मच शिराज भाई, बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। नंबर नोट कीजिए 6472714147 6472714147। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो, CMR 101.3 FM। ईरान और अमरीका एक दूसरे के खिलाफ धमकियां भी दे रहे हैं, कुछ कहा जा रहा है कि कुछ मिसाइल वगैरह चले भी हैं। UAE का कहना है कि ईरान ने उन पर फिर हमला किया है, 4 मिसाइल जो हैं वो फायर किए गए हैं, 3 जो हैं वो नाकारा कर दिए गए, 1 जो हैं वो समंदर में गिरा है, और ईरान इसको डिनाई कर रहा है। अमरीकी सदर कहते हैं कि ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत जहाज़ों पर हमले किए तो उसे दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात में काफ़ी लचक का मुजाहरा किया है, खत्ते में अमरीका की फौजी तैयारी जारी है, हमारे पास आला मयार के हथियार, गोला बारूद और साजो सामान मौजूद है, हमारे दुनिया भर में अड्डे हैं, वह सब साजो सामान से जदीद साजो सामान से लैस हैं। उन्होंने कहा कि इस तमाम सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ी तो करेंगे भी। प्रोजेक्ट फ्रीडम के तनाजर में बाज़ गैर मुतलका ममालिक पर भी ईरान ने हमले किए हैं, इनमें एक जनूबी कोरिया का माल बर्दार जहाज़ भी शामिल है। शायद अब वक्त आ गया कि जनूबी कोरिया भी आकर इस मिशन में शामिल हो जाएं। हमने 7 छोटी ईरान की कश्तियों को तबाह किया है, उन्हें तेज़ रफ्तार कश्तियाँ कहते हैं, अब इनके पास यही कुछ बचा रह गया है। इस वक्त तक अपना हरमत से गुजरने वाले किसी और जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचा है। दूसरी तरफ एक और ख़बर जो है वो भी आ रही है, और अमरीकी मीडिया के सर्वे में कहा गया कि ट्रंप ज़हनी जिस्मानी तौर पर मौसर खिदमत अंजाम देने के अहल नहीं हैं, और बड़ी तादाद में शहरियों का कहना है कि अमरीकी सदर ज़हनी जिस्मानी तौर पर मौसर खिदमत अंजाम देने के अहल नहीं हैं। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि हालिया सर्वे में ज़्यादातर अमरीकियों का ख्याल है कि अमरीकी सदर जो हैं अब ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मौसर तरीके से बतौर कमांडर इन चीफ खिदमत अंजाम देने के अहल नहीं हैं। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज़ और एप्सॉस के सर्वे के मुताबिक 59% लोगों की राय में موجودہ صدر کی ذہنی صلاحیت ملک کی قیادت کے قابل نہیں ہے. 40% کی رائے میں ڈونلڈ ٹرمپ ملک کی قیادت کے لیے مکمل طور پر اہل ہیں. 1% نے اس کا جواب نہیں دیا. 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورنٹو سی ایم آر 101.3 ایف ایم میں آپ کو ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں.

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
2: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001 लाइसेंस नंबर 12374।
3: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेड लाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922।
4: जी हाँ, 905-783-1922 अहमद मलिक साहब के रबते के नंबर है। अहमद मलिक करता माफ 20 साल से ज़्यादा अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उनको उनका कर्ज माफ़ करवा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी आसान करा चुके हैं। आप भी किसी वजह से, अपनी गलती से, किसी गलती से अगर कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, आप एक बार रबता ज़रूर करें 905-783-1922। हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद के मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
5: बहुत बहुत शुक्रिया अक्षर भाई, आपको और रेडियो पाकिस्तान सुन रहे तमाम लिसनर्स को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम को बोलो।
4: बहुत शुक्रिया आपका। जो सिचुएशन है, आपने पिछली दफ़ा जो मॉर्गेज डेलिक्वेंसी के हवाले से भी बात की थी, आज रेस्टोरेंट्स 36% जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि ब्रेक इवन या नुकसान में जा रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन मईशत की जिस तरह से है, सीबा लोन लोगों ने कईयों ने पे नहीं किया और बहुत से मसाइल हैं, ओवरऑल किस तरह से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को और आप किस तरह से मदद कर सकते हैं लोगों की?
5: आखिर में गुज़िश्ता जब से जिस दिन से कोविड आया है, उस दिन से जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल जियोग्राफी है, वो चेंज हो गई है तकरीबन हर इंसान की। पिछले 6-7 साल में वही लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके लाखों डॉलर कमाए, और फिर वही लोग हैं जो दोबारा उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके स्टक हो गए, मजीद आगे प्रॉपर्टीज लेके स्टक हो गए।
4: बिल्कुल।
5: तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा टाइट चल रही है। काफी सिचुएशन जो है कैश फ्लो का जो है वो हर बंदे को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि कैश फ्लो बहुत ज्यादा मुतासर हो गया है। आपने पैसे देने तो हैं, लेकिन जहां से आपने पैसे देने हैं वहां से आपको पैसे मिल नहीं रहे, तो सिचुएशन ऐसी चल रही है इस टाइम। बहरहाल हमारे तमाम वो लिसनर जो कर्जे के बोझ में आए हुए हैं, तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर कंज्यूमर सिस्टम चलता है और ये सिचुएशन यहाँ पर चलती रहती है। तो इसलिए अगर आप किसी वजह से भी कर्जे के बोझ में आ गए हैं, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर दिए हैं, आपने कोई लोन लिया था जिसकी अब आपसे पेमेंट नहीं की पा जा रही, या आपको रेवेन्यू कैनेडा ने किसी तरह की आपसे पैसे की डिमांड कर ली है जो आप नहीं पे कर सकते, तो फिर इस कानून को इस्तेमाल करने में कोई मजायका नहीं है। जो कानून हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कानून को हम प्रैक्टिस करने की आपको एडवाइस कर रहे हैं, जिसके तहत आप कर्जे से निजात हासिल कर सकते हैं, फिर इस कानून को अर्शद भाई यूज करने में कोई मजायका नहीं है। तो हमारा ऐसा कोई लिसनर है जो अगर कर्जों के बोझ में आया हुआ है, तो हम आपके कर्जों को 75% तक माफ कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी के रहते कर्जे पर एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट लगवा के आपको एक नई जिंदगी शुरू करने में आपकी मदद की जा सकती है। तो हमारा कोई लिसनर है अगर आप कर्जे के बोझ में आए हुए हैं, तो 905 7831922 पर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इन कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं।
4: थैंक यू वेरी मच अमित साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच,
5: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
4: नंबर नोट कीजिए आप अहमद मलिक साहब का, और अभी कॉल कर लें, खुदा खास साहब कर्ज के बोझ तले आ गए हों। 9057831922 9057831922। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से हमारे 101.3 एफएम, हमारे स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को कैपिटल बैंकुट हॉल में होने जा रहा है। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, बेशुमार इनामात हैं, और एवरी डे सोने के गिफ्ट दिए जाएंगे। एवरी डे इनाम घर इनका होता है, उसमें मुख्तलिफ इनामात दिए जाएंगे। फैशन शो होगा, मदर्स डे के हवाले से प्रोग्राम है, सिंगिंग कॉम्पटिशन हैं, कपल्स प्रोग्राम, बेशुमार इंटरटेनमेंट हैं, बच्चों बड़ों सभी के लिए बेशुमार तहफ़ भी होंगे। स्टॉल बुकिंग अभी स्टॉल्स अवेलेबल हैं।